FM बैंड 101.9 MHz पर ये विविध भारती का उदयपुर केंद्र है FM रेडियो लेक सिटी। आज गुरुवार है, शक संवत 1948, ज्येष्ठ मास की 14वीं तिथि, तदनुसार 4 जून सन 2026। इस समय सवेरे के 5:57 हुए हैं। हमारे प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

0: आपने ट्यून किया है एफएम रेडियो लेक सिटी। सवेरे के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेस के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, दवा उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेस 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के मुद्दों पर मजबूत सहयोग है। ये यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगी। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भारत की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। आज शाम वे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगी। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा तथा हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श होगा। इसके बाद गृहमंत्री त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पश्चिम बंगाल में विभिन्न रेल परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए शनिवार को कोलकाता पहुंचेंगे। पूर्वी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवाजी माझी ने आकाशवाणी को बताया कि रेल मंत्री मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ नबन्ना सभागार में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि योजना के अंतर्गत लगभग 2,00,000 ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
1: नई दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में कल एक गेस्ट हाउस में आग लग

0: ने की घटना में 21 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। उसने बताया कि इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में ले लिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि घटना के मजिस्ट्रेट जाँच के आदेश दे दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाली प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। भारत ने सैफ फुटबॉल महिला चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 5 बार के विजेता भारत का फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से मुकाबला होगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती
2: वंदन वार,
3: भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन वार।

आज का चिंतन। आचार्य चाणक्य का कथन है, अच्छे और ज्ञानी लोगों के साथ रहें, क्योंकि संगति का असर हमारे व्यक्तित्व पर पड़ता है। अब लीजिए सुनिए भक्ति रचनाएं।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। झरोखा के अंतर्गत अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:35 पर श्री रामचरित मानस गान सुनेगा भाग 209। 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिए श्रृंखला सिने संगीत में तबले का दौर भाग 4। कलाकार हैं तबला वादक रविंद्र खसनीस, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। सुबह 7 बजे भूले बिसरे गीत। 7:30 पर हम है राही प्यार के। 8:15 पर सुनिए त्रिवेणी, प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।

सुबह 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा पार्श्व गायक एसपी बाल सुब्रमण्यम पर। 10 बजे पिटारा के अंतर्गत आज के मेहमान 10 बजे आज के मेहमान के अंतर्गत सुनिए डॉक्टर गायत्री आहूजा से ममता सिंह की बातचीत। प्रस्तुतकर्ता सुबैर खान। 11 बजे रंग तरंग। 12:05 पर यादों की महफिल। 1 बजे सुनिए सुरीला सफर। दो बजे त्रिवेणी। 2:30 पर सदाबहार नक में। 3 बजे सखी सहेली के अंतर्गत सुनेगा बढ़ती उम्र के साथ पीछे छूटता स्नेहिल स्पर्श कहानी पद्मश्री की दुलारी देवी मधुबनी पेंटिंग। मुझे कुछ कहना है गर्मी की छुट्टियां और आम के मजे उपयोगी टिप्स वजन कैसे घटाएं। 4:00 हेलो फरमाइश प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। 5:00 छाये गीत। 5:30 पर तराने नए पुराने। 6:35 शाम सुनिए संध्या रंजन। 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम में आप सुनेंगे श्रृंखला सिने संगीत में तबले का दौर भाग 4। कलाकार हैं तबला वादक रविंद्र खसनीस। 7:00 फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत इनसे मिलिए निर्देशक इकबाल अली से यूनुस खान की बातचीत। इनसे मिले कार्यक्रम में सुनिएगा भाग 1। प्रस्तुतकर्ता सुबैर खान। हवा महल में रात 8:00 सुनिए झलकी स्टिन केस लेखन राजकुमार दाग का निर्देशन दीनानाथ का। 8:15 पर चित्रलोक। 9:00 आपके लिए। 9:30 पर आज के फनकार। रात 9:30 आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेत्री नूतन पर।

रात 10 बजे छाया गीत प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। 10:30 पर ढलती जाए रात और 11 बजे सुनेगा कार्यक्रम रंग तरंग। आप सुन रहे थे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण झरोखा के अंतर्गत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान भाग 209।

भारत का दल बल समेत और विशेषकर चतुरंगिनी सेना के साथ पर्णकुटी आने का समाचार सुन लक्ष्मण का क्रोध जाग उठा था और उन्होंने भरत का वध करने की सौगंध ले ली। तभी आकाशवाणी हुई कि कोई भी काम उचित अनुचित जानकर तथा खूब सोच समझ कर करना चाहिए। देववाणी सुनकर लक्ष्मण सकुचा गए। श्री राम ने तब उन्हें समझाया कि भरत सरीखा श्रेष्ठ पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में न तो कहीं सुना गया न ही देखा गया। अंधकार चाहे तरुण सूर्य को निगल जाए, आकाश भले ही बादलों में सिमट जाए, गोखुर जितने जल में अगस्त्य ऋषि डूब जाएं, पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक सहनशीलता छोड़ दे, किंतु भरत को राजमद हो ही नहीं सकता। श्री राम के वचन सुनकर देवलोक में उनकी जय जयकार होने लगी। यदि जगत में भरत का जन्म नहीं होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता।

0: श्रोताओं नमस्कार। सिने संगीत में तबले का दौर, संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं ये श्रृंखला। इस श्रृंखला के लिए हमारे मेहमान हैं आकाशवाणी के संगीतकार श्री रविंद्र खासनीस। इनसे बातचीत कर रहे हैं जयंत पात्रीकर। प्रस्तुत है इस श्रृंखला की चौथी कड़ी।
1: नमस्कार श्रोताओ। रविंद्र जी, हम त्रिताल की बात कर रहे थे पिछली कड़ी में
2: जी,
1: और तबले के दौर की बात चल रही है, तो नृत्य के जो बोल है वो हाँ। अनायास ही याद आ जाते हैं
2: हाँ।
1: कैसे होता है फिल्म संगीत में तबला और नृत्य का संयोग?
2: नृत्य की तो हमारे भारत में बहुत उज्ज्वल परंपरा रही है
1: जी जी,
2: और उत्तर हिंदुस्तान में कथक नृत्य पेश किया जाता है, तो फिल्मों में भी उसका आना बिल्कुल स्वाभाविक था, और उसी तरह वो फिल्मों में कई गीतों में नृत्य का आविष्कार लिया गया है
1: जी।
2: जो मतलब नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, कथक नृत्य
1: जी,
2: उसका आविष्कार फिल्मों में शुरुआती दौर में बहुत अच्छा था। तबला और नृत्य का वैसे तो बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि तबले के बोल और घुंघरू के बोल बिल्कुल एक से होने के वजह से तबला और उसके साथ में वो नृत्य, तो वो सारे परण वगैरह जो चलते हैं फिल्मों में जो लिए गए हैं
1: जी,
2: तो वो काफ़ी हद तक मतलब लोगों ने पसंद किया उसको, और वो जो हमारे भारत की उज्ज्वल शैली है नृत्य की
1: जी,
2: तो उसका आविष्कार तो लोगों ने हमेशा देखना पसंद किया है उसको। एक उदाहरण के तौर पर जो कथक के जो प्रोग्राम होते हैं
1: जी,
2: जिसमें कार्यक्रम में तो कथक का तो पूरा मतलब जैसे तबला सोलो, तो तबला सोलो में जैसे पूरा हम तबले का एक किसी एक ताल में
1: जी,
2: उसका पेशकार, कायदा, रेला, परण वगैरह सब कुछ उसमें होता है, तो वैसे ही नृत्य का जब स्वतंत्र कार्यक्रम होता है तो उसमें सब आता है, लेकिन फिल्मों में उसमें से कुछ हिस्सा दिखाया जाता है, और जो छोटा सा होता है लेकिन हमेशा के लिए याद रहे इस तरह का वो होता है
1: जी, जी,
2: बहुत उच्च कोटि का आविष्कार जिसे हम लोग कह सकते हैं।
1: और बहुत से नृत्य गीत हैं फिल्मों में।
2: बिल्कुल है,
1: जो अनायास ही याद आ रहा है वो मधुबन
2: में
1: राधिका नाचे रे, ये जो कोहिनूर फिल्म का गीत है
2: जी हाँ, इसमें तो तराना भी लिया गया है
1: जी जी,
2: तो तराना भी नृत्य में भी करते हैं तराना,
1: तो ये गीत अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं
2: जी।

0: कोहिनूर फिल्म का ये गीत हमने सुना मोहम्मद रफी साहब की आवाज में, और संगीतकार नौशाद साहब ने कितनी खूबसूरती से तीन ताल का इसमें प्रयोग किया है। रविंद्र जी, फिल्म संगीत में तबले का दौर, इस विषय पर हम बात कर रहे हैं, और तबले की बात हो और मूर्धन्य कलाकार पंडित सामता प्रसाद जी की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता।
1: बिल्कुल, पंडित सामता प्रसाद जी ने फिल्मों में जो योगदान दिया है वो हमेशा के लिए लोग उसको याद करते रहेंगे। आरडी बर्मन जो है
0: जी,
1: संगीतकार आरडी बर्मन सामता प्रसाद जी को अपने गुरु स्थान पर मानते थे
0: जी।
1: मेरे ख्याल से पंडित सामता प्रसाद जी का जो गाना है नाचे मन मोरा मगन तिगदा दिगी दिगी, सचिंदा का संगीत दिया हुआ ये गीत जो है, तो ये गाना जो है वो अपने आप में बेमिसाल है, क्योंकि उसमें जो है ना वो पंडित सामता प्रसाद जी की खासियत है कि वो तिगदा दिगी दिगी, तो वो दिगी दिगी बजा के धिन, ये उन्होंने उसमें रेला का भी जो आविष्कार किया है।
0: सचिन देव बर्मन की जिस संगीत रचना की बात हो रही है उसकी एक झलक सुनकर आगे बढ़ते हैं रविंद्र जी।
1: बिल्कुल,

0: शांता प्रसाद जी का ये जो तबला है वो हमेशा सब लोग उसको याद करते हैं। आरडी बर्मन जी ने भी शोले फिल्म में, किनारा फिल्म में
1: जी,
0: उसमें भी पंडित शांता प्रसाद जी का तबला हमें सुनने को मिलता है। और शोले फिल्म में तो पार्श्व संगीत जो होता है,
1: बैकग्राउंड स्कोर
0: में भी उन्होंने उसको लिया है। आरडी बर्मन साहब ने वो जो सीन है शोले का, सबको मालूम है वो, चल बसंती धन्नों को वो बोलती है।
1: हाँ।
0: तब वो जो घोड़ा दौड़ता है तो बैकग्राउंड में जो बजता है तबला, वो तबला वो सीन को बहुत ऊपर उठाता है।
1: जी जी।
0: तो ऐसे महान कलाकार हमारे फिल्मों में उनका जो योगदान है, उस वजह से वो सारी चीज़ें अमर हो गई है।
1: तो क्यों ना फिर किनारा फिल्म का गीत सुन लिया जाए, जिसमें पंडित शांता प्रसाद जी ने बहुत ही सुंदर तबला बजाया है और तबले की बोल भी गायक के स्वर में यानी भूपेंद्र सिंह की आवाज़ में हमें सुनने को मिलते हैं। बड़ा ही खूबसूरत गीत।

0: किनारा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे श्रोताओं, जो राग भैरवी पर आधारित है और इसमें अद्धा तीन ताल का उपयोग हुआ है। संगीतकार राहुल देव बर्मन। इसी के साथ फिल्म संगीत में तबले का दौर श्रृंखला की ये कड़ी अब संपन्न हो रही है।
1: सिने संगीत में तबले का दौर, संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं ये श्रृंखला। अभी आपने सुनी इस श्रृंखला की चौथी कड़ी। इस श्रृंखला में हमारे अतिथि थे श्री रविंद्र खासनीस। इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने।
0: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीष

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, भूले बिसरे गीत कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।
1: 101.9 मेगाहर्ट्ज पर यह एफएम रेडियो लेक सिटी। सुबह के 7 बजे हैं, आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम की प्रायोजक है वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: वीको टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक।

बोले बिसरे गीत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी सुनने वालों को सविता सिंह का नमस्कार। आज सशक्त अभिनेत्री नूतन का जन्मदिन है, उनकी पुण्य स्मृति को नमन करते हुए सुनते हैं उन्हीं का गाया ये गीत।

छबीली फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाज नूतन की थी, एस रतन ने इस गीत को लिखा था और स्नेहल भाटकर का संगीत था। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में अब हम आपको सुना रहे हैं सीमा फिल्म का ये गीत। लता मंगेशकर की आवाज है, हसरत जयपुरी के बोल हैं और शंकर जयकिशन की धुन।

0: के बाद
1: सुनो छोटी सी गुड़िया की ये लंबी कहानी, बहुत ही सुंदर सा गीत आप सुन रहे थे। सीमा फिल्म से लता मंगेशकर की ये आवाज़ थी, हसरत जयपुरी के बोल थे और शंकर जयकिशन की तर्ज थी। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए शबाब फिल्म का गाना। लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाज़ें हैं, शकील बदायूनी के बोल हैं और नौशाद की तर्ज।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। भूले बिसरे गीत में एक बहुत छोटा सा अंतराल लेते हैं।

0: नगीना फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे। शब्दकार थे शैलेंद्र और संगीतकार थे शंकर जयकिशन।
1: सुनिए
2: कहिए
3: सुनिए एक खुशखबरी
2: कहिए ना।
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 0224002।

0: हेलो सहेली, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
1: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली
0: गलियां। आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
4: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

लैला मजनू फिल्म का गीत तलत महमूद की आवाज़ में आप सुन रहे थे। शकील बदायूनी ने इस गीत को लिखा था और सरदार मलिक का संगीत था। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए दिल्ली का ठग फिल्म का गाना। आशा भोसले की आवाज़ है, SH बिहारी की रचना और रवि की

0: ठंडी प्यार की हवाएं, काली रात की घटाएं, आ जा।
1: कभी अंधेरा कभी उजाला, इस फिल्म का गाना आप आशा भोसले मन्ना डे की आवाज़ों में सुन रहे थे। शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार थे ओपी नैयर। इसी गीत के साथ ही आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम समाप्त करने की आज्ञा दीजिए सविता सिंह को। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। हम है राही प्यार के इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

अभी जो गीत आपने सुना था, इसे लिखा था आनंद बख्शी ने और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने धुन बनाई थी। अब लीजिए सुनिए मोहम्मद रफी, आशा भोसले की आवाजों में ही।

दिल ने फिर याद किया। इस फिल्म का गीत आप मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले की आवाज़ों में सुन रहे थे। इस गाने के पहले आपने मिलन फिल्म का गाना सुना था। लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की आवाज़ें थी। आनंद बख्शी ने उस गीत को लिखा था और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने धुन बनाई थी। लीजिए अब सुनिए तेरे घर के सामने, इस फिल्म का ये गाना।

0: दुनिया बसाऊंगा तेरे घर के सामने, एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने,
1: तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में आपने ये गीत सुना। और इस फिल्म का नाम था तेरे घर के सामने। हसरत जयपुरी ने इस गीत को लिखा था और एस टी बर्मन ने इस गीत की धुन बनाई थी।
2: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
3: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
2: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
3: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
4: सखी सहेली।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हम हेरा ही प्यार के ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। इस कार्यक्रम में चलिए लेते हैं एक बहुत छोटा सा अंतराल।

0: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
1: हाय यार।
2: अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
0: अरे वही अपना 60 रुपया।
2: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
0: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
2: और दूसरा?
0: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
2: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
0: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
5: नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
6: रुक जा बुड्ढू।
7: व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
5: तो समझ गई ना, रिलैक्स।
8: पर कार्ड जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
7: RBI कहता है, स्मार्ट बनो, कूल रहो।

0: लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में इंदिवर का लिखा हुआ ये गीत अभी आप सुन रहे थे। संगीत निर्देशन कल्याण जी आनंद जी का था। फिल्म का नाम था सरस्वती चंद्र।
1: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के आवाज़ों में फिल्म देवी का ये गीत अभी आपने सुना। आनंद बख्शी ने इसे लिखा था और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने धुन बनाई थी। लीजिए अब सुनिए पेइंग गेस्ट फिल्म का गाना। किशोर कुमार, आशा भोसले की आवाज़ें हैं, बोल मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे हैं, तर्ज एस टी बर्मन ने बनाई है।

0: कहेगा,
1: जमाना क्या कहेगा,
0: दीवाना क्या कहेगा।
2: किशोर कुमार, आशा भोसले की आवाजों में पेइंग गेस्ट फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। इसे मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा था और एस डी बर्मन ने धुन बनाई थी। इसी गीत के साथ ही आज का हमें राही प्यार के कार्यक्रम अब समाप्त करने की इजाजत सविता सिंह को दीजिए। नमस्कार।

0: रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा
1: 101.9 मेगाहर्ट्ज पर। यह है एफएम रेडियो लेक सिटी। सवेरे के 8 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे पहले समाचार।

0: राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
0: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
0: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका और भारत बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से कुछ सप्ताह दूर। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज से अहमदाबाद में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, औषधि उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। डेल्सी रोड्रिगेज 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। हमारी संवाददाता की ये रिपोर्ट।
4: राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है। वह इससे पहले 2015 में विदेश मंत्री और 2019, 2023, 2024 तथा 2025 में उपराष्ट्रपति के रूप में भारत का दौरा कर चुकी हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल भारत के ऊर्जा, औषधि और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी कई प्रतिष्ठानों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं को समझना तथा सहयोग की नई संभावनाओं की तलाश करना है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर आधारित सौहार्दपूर्ण संबंध है। मंत्रालय के अनुसार इस यात्रा से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध और अधिक मजबूत होंगे तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को नई गति मिलेगी। अनुपम मिश्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से इशिका शाह।
3: ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री येवेट कूपर 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी ये यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
5: बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उत्तर पूर्वी परिषद सदस्य और केंद्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। अनुमेदिता और ऋषो की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: इस सम्मेलन के दौरान काशी के विश्व प्रसिद्ध GI टैग प्राप्त और ODOP यानी एक जिला एक उत्पाद की एक विशेष प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। प्रदर्शनी में 6 कारीगर वाराणसी की समृद्ध शिल्प परंपराओं का

0: प्रतिनिधित्व करने वाले 6 अनूठे उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। ये उत्पाद काशी की सदियों पुरानी कला, शिल्प कौशल और सांस्कृतिक विरासत के जीवंत प्रतीक हैं। प्रदर्शनी के माध्यम से विदेशी प्रतिनिधियों को न केवल इन उत्पादों की विशिष्टता से परिचित कराया जाएगा, बल्कि स्थानीय कलाकारों और कारीगरों को भी वैश्विक बाजार में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम कारोबार करने में सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
2: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सके। इसके अलावा 2017 में जीएसटी लागू किया गया, जिसे अलग अलग कर व्यवस्थाओं की जगह एक सरल कर प्रणाली लागू हुई, जिसे कारोबार करना आसान हो गया। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
3: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष करके ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। स्टेबिलिटी के लिए अप्रत्यक्ष करके रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है। लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
2: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। जेम से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जेम की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुँच प्रदान करता है।
4: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जेम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता रहता है। एमएसएमई, स्टार्टअप, महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
2: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी, जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। भारत में कारोबार के लिए बेहतर माहौल, मजबूत डिजिटल व्यवस्था और पारदर्शी शासन से व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिल रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इसका मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिताओं में योग को शामिल करना है।
5: इस 5 दिवसीय वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका सहित 60 देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी 12 विभिन्न स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। इस चैंपियनशिप के दौरान खिलाड़ी आत्मक और लयबद्ध योग डिवीजनों के साथ साथ 7 आधिकारिक योग श्रेणियों में हिस्सा लेंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। ये घटना ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में कल रात हुई। घटना की जांच जारी है।

0: इधर नई दिल्ली के मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में लिया है। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत और अमरीका लंबे समय से प्रस्तावित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से बेहद करीब हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ये समझौता अगले कुछ सप्ताह में पूरा हो सकता है। रूबियो ने कहा कि हाल ही में भारत यात्रा के दौरान क्वाड देशों के प्रतिनिधियों के साथ इस संबंध में चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि क्वाड देश अब केवल बातचीत तक सीमित नहीं है, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग सहित कई ठोस परियोजनाओं पर मिलकर काम कर रहे हैं।
1: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्यवाही कर सकते हैं।
0: भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। गोवा के मडगांव में कल भारतीय महिला फुटबॉल टीम 6 साल बाद सैफ महिला चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची। 5 बार के विजेता भारत का फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से सामना होगा। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, कर्नाटक, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तराखंड में भी बारिश की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी की आशंका है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित मुख्य समाचार पत्रों ने आज मालवीय नगर के होटल में लगी भीषण आग की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, दिल्ली में भयावह अग्निकांड। दैनिक जागरण के शब्द हैं, अवैध होटल में 21 की मौत, 11 विदेशियों सहित 21 जिंदा जले। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, घटना के बाद अग्नि सुरक्षा संबंधी व्यापक अभियान चलाने पर सख्ती। शीर्षक से हिंदुस्तान ने लिखा है, नियम तोड़ने वाले प्रतिष्ठान सील होंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए अनुग्रह राशि देने की खबर भी अधिकतम समाचार पत्रों में है। अमर उजाला ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के 2 गुटों में बंटने की खबर को शीर्षक दिया है। तृणमूल में टूट, 58 बागी विधायकों ने ऋत व्रत को चुना नेता, मिली मान्यता। इसी खबर पर राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, टूट गई टीएमसी, 58 विधायकों ने स्पीकर को सौंपा समर्थन पत्र। अमेरिका द्वारा भारत सहित 50 से अधिक देशों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने के प्रस्ताव पर नवभारत टाइम्स ने बॉक्स में लिखा है, अमेरिका ट्रेड डील पर बातचीत के बीच 12.5% की एक्स्ट्रा ड्यूटी का पेच, अमर उजाला ने छापा है। ट्रंप प्रशासन का आरोप, इन देशों ने बंधुआ मजदूरी रोकने के लिए नहीं उठाए कदम, इसलिए लगाया जा रहा है शुल्क, भारत ने जताई कड़ी आपत्ति। वैश्विक तापमान में हो रही वृद्धि पर अमर उजाला ने संपादकीय लेख में संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के हवाले से चिंता व्यक्त करते हुए टिप्पणी की है, जून से अगस्त 2026 के बीच अल नीनो सक्रिय होने की 80% और नवंबर तक बने रहने की आशंका है। मेघालय के चेरापूंजी में 7 सिस्टर्स और किनरेम वाटरफॉल में लगातार हो रही बारिश की मनमोहक तस्वीर दैनिक भास्कर में है। पौष्टिक आहार के फायदों की याद दिलाते हुए लोकसत्ते ने टिप्पणी की है, याददाश्त बढ़ाने में सहायक पौष्टिक आहार।
0: धन्यवाद सरफिरोजी। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज शिलोंग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका और भारत बहुप्रतीक्षित

0: ग्रीन एंड गेटवे थर्सडे के प्रोग्राम नमस्कार उदयपुर के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत अभिनंदन। उठकर देखिए सुबह का नज़ारा, हवा भी है ठंडी, मौसम भी है प्यारा। सो गया चांद और छुप गया हर एक सितारा, तो कबूल हो आपको हमारा ये सुबह का सलाम।
1: जी हाँ, बिल्कुल सही। इन्हीं प्यारी सी पंक्तियों के साथ आज के नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम का आगाज। आज इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ अनीता, और मेरे साथ हैं
0: मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त कामिनी।
1: तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा
0: नमस्कार।
1: और कामिनी नमस्कार के साथ ही हम अपने श्रोताओं को बता देते हैं कि ग्रीन एंड गेट अवे गुरुवार में क्या है खास।
0: जी हाँ, आज हम मॉर्निंग ब्रीफ में बात करेंगे आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर बातचीत करेंगे। साथ ही इको टॉक में हम वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान पर बात करेंगे,
1: और ट्रैवल टॉक में हम श्रोताओं को जानकारी देंगे उदयपुर की प्रकृति के बीच बसा शिव मंदिर कुकड़ेश्वर महादेव की, और जागरूकता में बात करेंगे एआई और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में। और अब एक प्यारा सा गीत।

0: तो आज के इस प्रोग्राम में हमारे सलाम के साथ साथ कार्यक्रम का आगाज, और आगाज में आज ग्रीन एंड गेटवे थर्सडे में हम मॉर्निंग ब्रीफ में बात करेंगे आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर बातचीत।
1: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, बच्चे देश का भविष्य होते हैं कामिनी, इसलिए हम सभी की ये जिम्मेदारी हो जाती है कि बच्चों को भयमुक्त और प्यार भरा माहौल दें। आज का 4 जून का दिन आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, और यह दिन उन बच्चों के दर्द, पीड़ा और आंसुओं को समर्पित होता है जो किसी भी प्रकार की हिंसा या शोषण का शिकार बन जाते हैं।
0: बिल्कुल, इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 19 अगस्त 1982 को की गई थी। दुनिया भर में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण के शिकार बच्चों द्वारा झेले गए दर्द और पीड़ा को पहचानना और कम करना इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य है।
1: बिल्कुल, और इस दिन को मनाने के पीछे कई उद्देश्य हैं। कई बार बच्चे शारीरिक और मानसिक और भावनात्मक रूप से पीड़ित हो जाते हैं और किसी से कुछ कह नहीं पाते, तो उनके दर्द को, तकलीफ को पहचानना और समाज के सामने लाना, बच्चों को ऐसा माहौल दें कि वे अपनी परेशानी बिना किसी डर से अपनी बात कह सकें, पढ़ सकें और अपना भविष्य संवार सकें।
0: बिल्कुल, इन बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना, उनके शोषण को रोकना ही सबसे महत्वपूर्ण बात है। साथ ही इस दिन की स्थापना मूल रूप से 1982 के लेबनान युद्ध के मासूम बाल पीड़ितों को उनकी जो पीड़ा थी उसे देखते हुए की गई थी। समय के साथ इसका दायरा बढ़ा, दुनिया भर में उन सभी बच्चों को शामिल कर लिया गया जो युद्ध, सशस्त्र संघर्ष और किसी भी प्रकार की हिंसा का शिकार हो रहे थे।
1: और कामिनी, देखो, कई बार युद्ध के कारण, पारिवारिक कलह के कारण बच्चे अपना घर, अपने माता पिता खो देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें मानसिक ट्रोमा से भी गुजरना पड़ता है। बच्चे घर में होने वाले झगड़े, मारपीट, दुर्व्यवहार के कारण भी मानसिक रूप से टूट जाते हैं। तो जो उम्र उनके खेलने कूदने की, मौज मस्ती की होती है, उसमें वे मजदूरी में लग जाते हैं। मासूम मन जिम्मेदारियों और काम के बोझ के तले दब जाता है, जिसकी वजह से बच्चे थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं और काम उनके जो उम्र के हिसाब से उनके अच्छे लगते हैं, जो खेलने कूदने की उम्र में वो मजदूरी करने लगते हैं। अपने आसपास हो रहे बाल शोषण या बाल श्रम के खिलाफ आवाज़ उठाएं और बच्चों के लिए हेल्पलाइन नंबर 1098 पर कॉल करें, क्योंकि बच्चों के हाथों में औजार नहीं, किताबें और खिलौने ही अच्छे लगते हैं।
0: तो इन तारों को, जो हमारे साथ सितारे बने हुए हैं, ऐसे ही हमेशा ये चहकते और चमकते रहें, ये हम चाहेंगे।

0: तो अनीता जी, मॉर्निंग ब्रीफ में हम और क्या हमारे श्रोताओं तक पहुंचाने वाले हैं?
1: जी बिल्कुल सही बात है। वैसे तो अब ये देखा जाए कि लेक सिटी में हर रोज़ हज़ारों की तादाद में पर्यटक उदयपुर की खूबसूरती को निहारने के लिए आते हैं, लेकिन इन दिनों कुछ ट्रेंड बदल रहा है। पर्यटन के क्षेत्र में एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र सहित दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों से बाइक राइडर्स के ग्रुप उदयपुर पहुँचने लगे हैं। ये पर्यटक उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख तक की लंबी यात्रा पर निकलते हैं और अपने रूट में उदयपुर को भी शामिल कर लेते हैं। और लोगों का ये भी मानना है कि बेहतर हाईवे कनेक्टिविटी और प्राकृतिक सौंदर्य के कारण उदयपुर बाइकर्स की पसंद बनता जा रहा है। आने वाले बाइकर्स के ग्रुप उदयापोल और गुलाबबाग क्षेत्र के आसपास ठहरते हैं। यहाँ से वे पुरानी शहर की गलियों, ऐतिहासिक स्थलों और स्थानीय कला संस्कृति का अनुभव लेते हैं। और कई पर्यटक सोलो ट्रिप पर भी आते हैं और कुछ समूह में भी उदयपुर आते हैं। और अधिकांश बाइकर्स उदयपुर में एक या दो दिन रुकते हैं और इसमें होटल, रेस्टोरेंट, स्थानीय पर्यटक गतिविधियों का भी वे लाभ लेते हैं।
0: और जो लोकल न्यूज़ है उसमें हम ये बता दें कि प्रदेश भर में चल रहे विशेष अभियान के तहत उदयपुर परिवहन विभाग ने कल बड़ी कार्रवाई की। शहर के विभिन्न इलाकों में नाकाबंदी कर नियम तोड़ने वाले 30 वाहनों को ब्लैक फिल्म और लाउड हॉर्न होने पर जब्त किया। तो इन सभी बातों का भी सभी ध्यान रखें। और साथ ही कल स्कूल लेक्चरर परीक्षा जीके का पेपर रहा चुनौतीपूर्ण, जिसमें 53% विद्यार्थी परीक्षार्थी उपस्थित रहे।

0: जल है तो कल है, इसी सोच के साथ शुरू हुआ वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान 2026। और पर्यावरण संवाद में आज हम बात कर रहे हैं वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की। राजस्थान को जल आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। पारंपरिक प्रणालियों को आधुनिक तकनीक और जन भागीदारी से जोड़कर मरुधरा की प्यास बुझाने का एक बेहतरीन प्रयास। और ये अभियान 25 मई 2026 से 5 जून 2026 तक चलेगा।
1: जी बिल्कुल, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान राजस्थान सरकार द्वारा चलाया जा रहा एक वृहद जल और पर्यावरण संरक्षण अभियान है, जो राज्य में जल संकट से निपटने और भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए चलाया गया एक व्यापक जन आंदोलन है।
0: इस अभियान में कई सारे लक्ष्य रखे गए हैं। एक तो ये है कि जितने भी जलाशय हैं, बांध है, उनमें पानी की क्षमता को 20% तक बढ़ाना मानसून से पहले, और कुओं, बावड़ियों, तालाबों, झीलों से मिट्टी को निकालना, उनकी सफाई करना, मरम्मत करना, और इसके अंदर किसी भी तरह का कोई अवरोध हो, बाधा हो या कोई अतिक्रमण हो तो उसे दूर करना, और इस काम में लोगों को अपने साथ जोड़कर श्रमदान कराना।
1: बिल्कुल, वर्षा जल का संचयन करना, जन जागरूकता रैलियां, चौपालें और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से लोगों को पानी बचाने हेतु जागरूक करना,
0: छतों पर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को भी सही करना ताकि बारिश का पानी इकट्ठा हो सके, और इसके अलावा किसानों को ड्रिप इरिगेशन स्प्रिंकलर यानी फव्वारा पद्धति और फार्म पॉन्ड के बारे में जानकारी और प्रदर्शन दिए जा रहे हैं।
1: जी बिल्कुल, आप श्रमदान करके इन गतिविधियों में शामिल होकर के अपना योगदान दे सकते हैं।
0: और इसके अलावा और भी कार्यक्रमों के जरिए लोगों को जागरूक करना है, जैसे कि पर्यावरण और जल चेतना के लिए जिलों में दौड़ का आयोजन किया जा रहा है, हरियालो राजस्थान अभियान में बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जा रहा है, पौधों का वितरण किया जा रहा है। इस अभियान को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए जल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों, सामाजिक संस्थाओं, ग्राम पंचायतों और जल योद्धाओं को जिला स्तर पर जल गौरव सम्मान से पुरस्कृत भी किया जाएगा। हम सभी को भी इस अभियान का हिस्सा बनकर अपना फर्ज पूरा करना चाहिए।
1: जी बिल्कुल, जागरूकता सिर्फ बाकी सब में नहीं, हमसे शुरू होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम इस कार्य को शुरू नहीं करेंगे, जब तक हम जल का जो इम्पोर्टेंस है उसे नहीं समझेंगे, तब तक ये काम संभव नहीं है।

तो ये कार्यक्रम आप यूं ही सुनते रहेंगे 9:10 पर भी, पर फिलहाल सवेरे के 9 बज रहे हैं और ये वक्त है हिंदी में प्रादेशिक समाचारों का, आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से।

0: योगासन खेल चैंपियनशिप आज से अहमदाबाद में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने किसानों से परंपरागत खेती की ओर लौटने का आह्वान किया। राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं भर्ती परीक्षा 2026 के 607 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू हुए। और प्रदेश के ज्यादातर हिस्से तेज अंधड़ और बारिश से प्रभावित, आज 16 जिलों के लिए आंधी बारिश का अलर्ट। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन और अब समाचार विस्तार से। प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज से अहमदाबाद में शुरू हो रही है। 5 दिन के इस आयोजन में 70 से अधिक देशों के लगभग 500 एथलीट भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा है कि योग दुनिया भर में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। उन्होंने इस आयोजन को योगासन के वैश्विक खेल विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया और आयोजनकर्ताओं तथा प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी हैं। गौरतलब है कि प्रतियोगिता में पारंपरिक कलात्मक योगासन और लयबद्ध युगल सहित कई विधाएं शामिल होंगी। चैंपियनशिप में सब जूनियर, जूनियर और सीनियर वर्गों में पुरुष और महिला एथलीटों के लिए कई तरह की प्रतियोगिताएं होंगी। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा है कि सरकार ने 16वें वित्त आयोग के अंतर्गत स्थानीय निकायों के लिए 4,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया है। उन्होंने इसे जमीन स्तर पर विकास के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया। नई दिल्ली में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने आधुनिक शासन में तकनीक की भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि पंचायत प्रशासन में AI, डिजिटल उपकरणों और नवाचारों को अधिक अपनाने की आवश्यकता है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये सोच है कि ग्रामोदय से ही भारत का उदय हो सकता है। जब तक गांव सशक्त नहीं होगा तब तक इस देश को हम विकसित भारत नहीं बना सकते। हम पंचायत के प्रतिनिधियों से आग्रह करें कि आप अपने पंचायत के आय के स्रोत में भी वृद्धि करिए, आप उसके लिए भी योजना बनाइए और उसको कार्यान्वित करने का काम कीजिए, तभी आप विकसित पंचायत के रूप में आपकी गिनती हो सके।
0: इस अवसर पर दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार श्रेणी में 34 ग्राम पंचायतों को सम्मानित किया गया। साथ ही नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार श्रेणी में 8 पंचायतों को पुरस्कार प्रदान किए गए। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने कल अलवर जिले के बगड़ राजपूत गांव में खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर आयोजित कृषि गोष्ठी में उन्होंने किसानों को रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करते हुए परंपरागत खेती पद्धति की ओर लौटने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि खेत का स्वास्थ्य सीधे तौर पर मानव स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। रासायनिक उर्वरकों के बहुत अधिक उपयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति प्रभावित हो रही है। इस दौरान मंत्री ने कृषि प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल अपने आवास पर महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम कर रही महिलाओं से संवाद किया। इसमें संबल सखी तथा माय भारत के माध्यम से समाज सेवा, कौशल विकास और राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रही महिलाएं शामिल हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार के क्षेत्र में उन्होंने प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस अवसर पर महिलाओं ने अपने विचार, अनुभव और समाज हित में किए जा रहे प्रयासों को मुख्यमंत्री से साझा किया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं भर्ती परीक्षा 2026 के 607 पदों के लिए आवेदन आज से शुरू हो रहे हैं। अभ्यर्थी 3 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन

0: आयोजन इस वर्ष 29 नवंबर को किया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि शैक्षणिक योग्यता, आवेदन प्रक्रिया, पाठ्यक्रम और अन्य जानकारी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। गौरतलब है कि इसमें राज्य सेवा के 192 और अधीनस्थ सेवा के 415 पदों पर भर्ती की जानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत देश में उल्लेखनीय बदलाव आया है। केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं जीएसटी ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाई है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। वहीं आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही हैं। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में एसओजी ने उप निरीक्षक दिनेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। एसओजी के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विशाल बंसल ने बताया कि अदालत ने दिनेश कुमार को 8 जून तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। उन्होंने बताया कि आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था। मामले में उसकी बहन निर्मा कुमारी की तलाश भी अभी जारी है। दोनों ने परीक्षा से पहले हल किया हुआ प्रश्न पत्र हासिल किया और उसी के आधार पर 15 सितंबर 2021 को आयोजित एसआई भर्ती परीक्षा दी। और अब मौसम। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में तेज अंधड़ और बारिश की गतिविधियां जारी हैं। आज भी कई स्थानों पर बारिश होने के समाचार हैं। सवाई माधोपुर में सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है और बरसात हो रही है। बारा में शाम से शुरू हुआ बूंदाबांदी का दौर रुक रुक कर आज भी चल रहा है। हमारे भीलवाड़ा संवाददाता ने बताया कि जिला मुख्यालय सहित आसपास के इलाकों में तेज रफ्तार हवा के साथ कुछ देर झमाझम बरसात हुई।
1: बुधवार रात्रि को मौसम में पुनः परिवर्तन हुआ और गुरुवार सुबह भीलवाड़ा जिले के आसीन समूहगढ़ और गुलाबरा क्षेत्र में कुछ समय के लिए तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हुई है, जिसके कारण आम जन को गर्मी से राहत मिली है। आज हुई बारिश के बाद अब किसान आगामी दिनों खरीफ की फसल की बुआई के लिए अपने खलिहानों की हकाई जुताई में जुट जाएंगे। लगातार 3 दिन पूर्व हुई बारिश से तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। सोमदत्त त्रिपाठी, आकाशवाणी समाचार, भीलवाड़ा।
0: मौसम में आए इस बदलाव से तेज गर्मी से लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार कई स्थानों पर कल भी दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। ज्यादातर हिस्सों में तापमान 40 डिग्री के आसपास बना हुआ है। 43.7 डिग्री सेल्सियस के साथ जैसलमेर सबसे गर्म स्थान रहा। इस बीच रात का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने आज भी 16 जिलों के लिए आंधी बारिश का येलो और 16 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कहीं कहीं तेज रफ्तार हवाओं के साथ मध्यम से तेज बरसात हो सकती है। वहीं पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं ओले गिरने की भी संभावना है। पाली में आज से 16वीं राज्य स्तरीय जूनियर पुरुष हॉकी प्रतियोगिता शुरू हो रही है। पुलिस लाइन हॉकी मैदान पर शाम को इसका उद्घाटन किया जाएगा। इससे पहले जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने टीम के टी शर्ट्स का विमोचन किया और मैदान का निरीक्षण किया। इस प्रतियोगिता में राज्य के विभिन्न जिलों की 25 टीमें भाग लेंगी। 3 दिन चलने वाली ये स्पर्धा नॉकआउट पद्धति से होगी। वहीं पाली की निलंजना चौधरी ने जकार्ता में आयोजित इंटरनेशनल रोलर स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण और कांस्य पदक जीता है। जीत के बाद उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतना उनके निरंतर अभ्यास का परिणाम है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज से अहमदाबाद में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने किसानों से परंपरागत खेती की ओर लौटने का आह्वान किया। राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं भर्ती परीक्षा 2026 के 607 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन

0: सीजन आज से शुरू हुए और प्रदेश के ज्यादातर हिस्से तेज अंधड़ और बारिश से प्रभावित, आज 16 जिलों के लिए आंधी बारिश का अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र। सवेरे के 9:10 हो रहे हैं और आप एक बार फिर से शामिल हैं हमारे कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर में। आइए सुनते हैं एक खूबसूरत सा गीत।

0: तो जी हाँ, जग घूमने की बात हो रही है और जब घूमने की बात आती है तब हम कहीं ना कहीं यात्रा पर निकल जाते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और हमारा जो उदयपुर है बहुत ही खूबसूरत सा है, अरावली पर्वतों के बीच में बना हुआ है और इतनी प्रकृति है, सब तरफ से हरियाली है, लेकिन प्रकृति की गोद में स्थित होने वाले श्रद्धालुओं के साथ प्रकृति प्रेमियों के लिए एक पसंदीदा जगह भी है।
0: बिल्कुल, उदयपुर की अरावली पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा कुकड़ेश्वर महादेव मंदिर, आज इसकी हम बात कर रहे हैं। एक बेहद ही प्राचीन, रहस्यमय और अलौकिक धार्मिक स्थल है ये। प्रकृति की गोद में स्थित होने के कारण यह स्थान श्रद्धालुओं के साथ साथ प्रकृति प्रेमियों की भी एक पसंदीदा जगह बन गई।
1: बिल्कुल सही का काम है नहीं आपने। ये जो कुकड़ेश्वर का जो मंदिर है और इसको स्थापित शिवलिंग स्वयंभू माना जाता है, यानी किसी इंसान द्वारा बनाया या स्थापित किया हुआ ये नहीं है, बल्कि आदि काल से यहाँ प्रकट हुए थे
0: जी।

0: के पीछे एक अनोखा रहस्य भी है कि कुकड़ेश्वर नाम कैसे पड़ा। कहा जाता है कि इस घने जंगल में बहुत सारे जंगली मुर्गे यानी स्थानीय भाषा में अगर कहा जाए तो कुकड़े जो बोलते हैं ना उसे वे रहा करते थे। मान्यताओं के अनुसार एक बार जब मुगल सेना महाराणा प्रताप को ढूंढते हुए इस तरफ बढ़ रही थी तब इन जंगली मुर्गों की तेज आवाज़ों के कारण मुगलों का ध्यान भटक गया, वे सतर्क हो गए जिससे महाराणा प्रताप की जान बच गई।
1: और मंदिर के मुख्य गर्भगृह में प्राचीन शिवलिंग स्थापित है। इसके साथ ही भगवान गणेश, माता पार्वती और नंदी जी की सुंदर मूर्तियां भी विराजमान हैं। साधु संतों की तपस्या के लिए एक यज्ञ वेदी और एक हॉल भी बना हुआ है। यहां वर्तमान में रहने वाले महंत इस पूरे स्थान की देखभाल करते हैं। मंदिर के ठीक बगल में एक प्राचीन प्राकृतिक जलधारा बहती है जिसे स्थानीय लोग अमर गंगा के नाम से भी जानते हैं। इसका पानी इतना साफ है कि क्रिस्टल क्लियर होता है और इसके अंदर मछलियाँ भी साफ दिखाई देती हैं। यहाँ का पानी वाकई में इतना साफ है और इतना बहता हुआ जल है कि आप उसको पी सकते हैं।
0: और अगर यहाँ जाने का हम समय की बात करें कि किस समय हम जाएं तो सबसे अच्छा समय यहाँ जाने के लिए है मानसून का समय, और उसके ठीक बाद में जो बारिश का जो मौसम होता है ना, इस वक्त जब आप जाएंगे तब वहाँ का जो प्राकृतिक जो सुंदरता है उसे आप देखकर दिल आपका गदगद हो जाएगा। बारिश के दिनों में अरावली की पहाड़ियाँ पूरी तरह से यहाँ पे हरी भरी हो जाती हैं, झरने बहने लगते हैं, मंदिर के पास का नाला पूरे वेग से बहता है जिससे जगह जन्नत जैसी लगती है।
1: बिल्कुल सही कहा। और इसकी दूरी की अगर बात करें तो ये स्टेशन से या सेंटर से 15 से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर लखावली पंचायत समिति के अंतर्गत डागियों का गुड़ा क्षेत्र में पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है। उदयपुर से बड़गाम होते हुए हाईवे पार करके पराया की भागल वाले रास्ते से यहाँ पहुँचा जा सकता है, और मुख्य सड़क या वाहन पार्किंग से मंदिर पद तक पहुँचने के लिए 500 से 700 मीटर तक एक छोटा सा थोड़ा सा कच्चा सा पथरीला रास्ता है। घने पेड़ों के नीचे और प्राकृतिक पत्थरों के बीच से गुजरने वाला यह रास्ता बेहद रोमांचक है।
0: बिल्कुल, अगर आप शांति, अध्यात्म और एडवेंचर का एक साथ अनुभव करना चाहते हैं तो उदयपुर यात्रा के दौरान इस कुकड़ेश्वर महादेव के दर्शन जरूर करें और इस जगह को देखें और समझें और जाएं जरूर, हम यही कहेंगे। और साथ ही साथ जो हमारे जो महादेव जी हैं उन्हें जरूर नमन करें।

0: कामिनी, आपसे एक बात पूछूं?
1: बिल्कुल।
0: कि आप सबसे उठते ही सबसे पहला काम क्या करते हैं?
1: देखिए कि आजकल सुबह उठने की बात हो या रात को सोने की बात हो या कभी भी आप जब खाली बैठे हों, तब जब भी आपका मन या हाथ है ना, वो मोबाइल की तरफ जाता है कि मोबाइल में क्या चल रहा है, मोबाइल में क्या मैसेज आया है, मोबाइल में कौन सी रील देखें, कौन सा फिल्म हम चुनें या कौन सा सीरियल देखें।
0: कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हमारे को मतलब ये सब चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन क्या करें, आदत पड़ गई है मोबाइल की। लेकिन इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। आज का समय वो समय है जब कुछ भी किसी भी काम को लेकर अब परेशानी नहीं आती। छुट्टियों में कहीं जाना है, अनजान जगह के बारे में, वहाँ के मौसम के बारे में, वहाँ जाने का रास्ता, होटल, कैब, पेमेंट, ऑनलाइन शॉपिंग, हर तरह की जानकारी अब बहुत आसान हो चुकी है। हर तरह से हमारी मदद करता है AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज के समय में ये हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है। तो जागरूकता सेगमेंट में हम बात करेंगे AI और हमारी रोज़मर्रा की जिंदगी के बारे में।
1: बिल्कुल, AI जो है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक अभिन्न अंग बन चुका है। सुबह उठकर मोबाइल में फेस लॉक खोलने से लेकर रात को सोने से पहले तक हम अपनी हर चीज़ें चुनना और उसमें देखना यही करते हैं।
0: और AI की वजह से हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या क्या आसान हुआ है, अलेक्सा है या सिरी, सुबह 5 बजे का अलार्म लगा और यह AI की नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग तकनीक पर काम करता है। गीज़र, AC, स्मार्ट लाइट्स, इनके तापमान को और रोशनी को भी एडजस्ट करता है।
1: बिल्कुल, साथ ही साथ वॉइस असिस्टेंट जो है, गूगल असिस्टेंट या सीरी, जो बोलकर काम करने में हमें बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं आजकल।
0: और जब हम टाइप करते हैं तो कोई कीबोर्ड पहले से अनुमान लगा लेता है कि हम अगला शब्द क्या लिखने वाले हैं और स्पेलिंग को भी ये सही कर देता है। आप जो भी वीडियो या पोस्ट देखना पसंद करते हैं, उसी तरह की कई चीज़ें आपके स्क्रीन पर दिखाई देती रहती हैं। जैसे आप मेकअप करना सीखना चाहती हैं या कोई रेसिपी देखना चाहती हैं या लेटेस्ट फैशन की जानकारी चाहती हैं, तो अपने आप की जो अपने आप जो अपना देखना चाहती हैं वो आपको उसमें स्क्रीन पर दिखती रहेगी। इसे इंकैप्सुलेटेड सिस्टम भी कहते हैं।
1: साथ ही जब हमें कहीं जाना हो तो सबसे छोटा और तेज़ रास्ता गूगल मैप्स की मदद से हमें AI दे देता है।
0: और स्टूडेंट्स कठिन विषयों को आसान भाषा में समझ रहे हैं। कोडिंग या निबंध लिखने में अपनी पूरी पढ़ाई इसके माध्यम से ही कर रहे हैं। हाथों में बंधी स्मार्ट वॉच से हार्ट रेट, नींद के पैटर्न और बर्न की कैलोरी के बारे में भी आप जान सकते हैं। आप सारे दिन में कितने कदम चले, ये भी जानकारी आपको मिल सकती है।
1: जी, साथ ही AI की मदद से हमें ईमेल कंटेंट राइटिंग, ड्राफ्ट करना, लेख लिखना या कोई रिपोर्ट तैयार करना, ये भी हम बहुत आसानी से AI की मदद से कर लेते हैं।
0: पुरानी कोई फिल्म देखना चाहते हो या पुराने गीत सुनना चाहते हो, ऑनलाइन शॉपिंग, कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हो, आपको उस शहर के मौसम में घूमने की जगह और रहने के सस्ते महंगे होटल्स, कैब बुकिंग, टिकट्स बुकिंग, सब सुविधाएं आपको इसके माध्यम से मिल जाती हैं। लेकिन हर चीज़ के फ़ायदे के साथ साथ कुछ सावधानियाँ भी रखनी

0: ज़रूरी होती है। किसी भी आने वाले फर्जी फोन या लिंक मैसेज पर विश्वास न करें। AI हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन इसके गुलाम न बने। इसे एक समझदार टूल की तरह इस्तेमाल करें ताकि उत्पादकता बढ़े और जीवन बेहतर बन सके।
1: जी, स्वास्थ्य और फिटनेस में भी स्मार्ट वॉचेज AI की जो होती हैं वो हमें सटीक जानकारी देती हैं। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में भी AI हमें बहुत मदद करता है। तो AI के जो हम साथ चल रहे हैं या AI जो हमारे साथ चल रहा है, वो हमारी रोज़मर्रा की जो जीवन शैली है उसमें एक हमारा साथी सा बन गया है। तो ऐसा लगता है कि AI के लिए तो हम ये कहें कि कोई तुम सा नहीं।
0: और इसके साथ ही अपने श्रोताओं से लेते हैं इजाज़त और प्रोग्राम का आखिरी गीत सुनवाते हैं श्रोताओं को। तो इस कार्यक्रम में मैं थी आपके साथ अनीता, और मेरे साथ थी
1: मैं थी कामिनी।
0: तो दीजिए इजाज़त।
1: नमस्कार।

0: Lake City. Non-stop music, non-stop fun. It's cool as fun.
1: जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज पर यह है विविध भारती का उदयपुर केंद्र एफएम रेडियो लेक सिटी। हमारी मॉर्निंग लोकल विंडो में आप सभी का बहुत सारा स्वागत। आज के सफर में मैं हूं आपके साथ अनीता। सबसे पहले प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लेक सिटी और आगाज इस गीत के साथ।

आप एंजॉय कर रहे हैं हमारी मॉर्निंग लोकल विंडो के प्रोग्राम्स। फिलहाल आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लेक सिटी। 10 बजे वो भूली दास्तां और 11 बजे वो प्रोग्राम जिसका आपको रहता है इंतज़ार, तराने हमारे व्हाट्सएप आपके, और 12:05 से हम जुड़ जाएंगे विविध भारती मुंबई से। तो सुनते रहिए FM रेडियो लेक सिटी।

लेक सिटी में कल विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। विश्व साइकिल दिवस पर कल शहर में संगीत, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण का अनूठा संगम देखने को मिला। चलो चलें साइकिल चलाते हैं, प्रकृति से संवाद करके आते हैं। इस थीम पर आयोजित साइक्लोथोन यात्रा में 27 साइकिलिस्टों ने भाग लेकर पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता और स्वस्थ जीवन शैली का संदेश दिया। गीत संगीत की स्वर लहरियों के बीच साइकिल चलाते हुए लोगों को वृक्षारोपण, प्लास्टिक मुक्त वातावरण और नियमित साइकिलिंग के लिए जागरूक करते हुए दूधतलाई पहुंचने पर साइकिलिस्टों ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए स्वच्छता अभियान चलाया।

0: साइकिल चल, चभी आगे चभी पीछे।
1: और अब बात करते हैं लेक सिटी के मौसम की। तो लेक सिटी में मौसम का मिजाज तेजी से हर रोज बदल रहा है। कल दिन भर सूरज के तीखे तेवर और शाम को बादलों की आवाजाही रही। शाम करीब 4 बजे आसमान पर घने बादल छा गए और कई इलाकों में तेज तो कहीं मध्यम तो कहीं खंड वर्षा हुई। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अगले 4 दिनों तक उदयपुर व आसपास के इलाकों में मौसम का यही हाल रहने वाला है। हवाओं की रफ्तार अचानक बढ़कर 20 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है और कहीं कहीं खंड वर्षा भी हो सकती है।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: दादी कौन सा प्लांट है?
2: टैंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
3: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
1: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
3: क्यों?
1: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
3: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
4: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
5: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी।
6: ये राशन के 15,000, सब्जी

0: जियो के 2000
1: और लाइट बिल के
0: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
0: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आज ही के दिन 4 जून 1936 में हिंदी सिनेमा की सबसे महान और प्रतिष्ठित अभिनेत्रियों में से एक नूतन का जन्म हुआ था। उन्होंने अपने सशक्त अभिनय और सादगी से 60 के दशक में नायिकाओं को महज शोपीस समझने की परंपरा को बदल दिया। उन्होंने अपने बेहतरीन करियर से 6 बार फिल्मफेयर पुरस्कार जीते और 1974 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था।

उली दास्तां पुरानी फिल्मों की कुछ बातें जो सिर्फ पुरानी ही फिल्मों में हुआ करती थी, कुछ ऐसे वाद्य यंत्र जो पुरानी फिल्मों में ही नज़र आया करते थे और कुछ अभिनेताओं की तो वो पहचान भी बन चुके थे। तो चलिए कुछ ऐसे ही वाद्य यंत्रों की बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में, भूली हुई दास्तां में। तो सबसे पहले बात करेंगे हारमोनियम की। पहली बार 19वीं शताब्दी में वियना में प्रदर्शित आसानी से पोर्टेबल हाथ में पकड़ने वाला हारमोनियम ने ब्लूज़ और जैज़ शैलियों के कलाकारों को प्रभावित किया था।

गुड मॉर्निंग लेक सिटी प्रोग्राम बस यहीं तक आपने ट्यून किया है एफएम रेडियो लेक सिटी। सवेरे के ठीक 10 बजे हैं, मैं हूं आपके साथ अनीता। अब प्रोग्राम वो

वो भूली दास्तां। इस प्रोग्राम में आज हम बात कर रहे हैं ऐसे वाद्य यंत्रों की जो सिर्फ पुरानी फिल्मों में ही नजर आया करते थे। अब बात करते हैं तबले की। इसे कौन नहीं जानता, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में आम

0: AIR at 90।
1: चलिए प्रोग्राम में अब बात करते हैं वेस्टर्न ड्रम किट की। वाद्य यंत्रों का एक संग्रह जिसमें अक्सर एक बांस ड्रम, एक स्नेयर ड्रम और एक या एक से अधिक झांझ शामिल होते थे, जो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जैज बैंड के साथ लोकप्रिय हुए और रॉक एंड रोल की शुरुआत हुई। रॉक एंड रोल नाइट क्लब बैंड लंबे समय तक हिंदी फिल्मों की परंपरा का हिस्सा बने रहे।

चलिए अब बात करते हैं अकॉर्डियन वाद्य यंत्र की। इस यंत्र के बारे में माना जाता है कि 19वीं शताब्दी की शुरुआत में बर्लिन में इसका आविष्कार हुआ था। अकॉर्डियन हारमोनियम की तरह ही होता है, कई गीतों में इसका इस्तेमाल भी आपने देखा होगा, और ख़ास तौर से राज कपूर की बात करें तो इनके हाथ में तो ज़्यादातर आपने देखा ही होगा।

पुरानी फिल्मों में आपने सबसे ज्यादा पियानो को देखा होगा। दुनिया के सबसे परिचित संगीत वाद्य यंत्रों में से एक है पियानो, जो पुरानी हिंदी फिल्मों की दुनिया में एक अपनी अलग ही पहचान बनाए हुए है।

0: नई कार जीतने का मौका। वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
1: रुक जा बुड्ढू।
2: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
0: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
2: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
3: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वो भूली दास्तां। इस प्रोग्राम में आज हम ऐसे वाद्य यंत्रों की बात कर रहे हैं जो पुरानी फिल्मों में ज़्यादा दिखाई देते थे। अब बात करते हैं पुरानी फिल्मों के गीतों की। बात करें तो गिटार अक्सर हीरो के हाथ में नज़र आया करता था। 6 तार वाला यह वाद्य यंत्र होता है जिसमें ध्वनि से लेकर इलेक्ट्रिक तक के कई अवतार मौजूद हैं। 50 से 60 के दशक में ये काफ़ी प्रचलन में था। उस समय गिटार बॉलीवुड फिल्म संगीत में एक क्रांति पैदा करता था।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
2: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
1: अरे वही अपना 60 रुपया।
2: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
1: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
2: और दूसरा?
1: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
2: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
1: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।

नागरिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

चलिए अब बात करते हैं मैंडोलिन की, जो पुरानी फिल्मों से लेकर अभी तक अपनी पहचान बनाए हुए है। 17वीं सदी के इटली के आसपास के ल्यूट परिवार में पारंपरिक रूप से डबल स्ट्रिंग के चार कोर्ड्स के साथ एक विकास जो शास्त्रीय यूरोपीय संगीत में खास तौर में शामिल है। CID फिल्म से लेकर बाजीराव मस्तानी तक ये अपनी पहचान बनाए हुए है।

चलिए बात करते हैं संतूर की। 72 तार का एक प्राचीन कश्मीरी वाद्य यंत्र जिसे पारंपरिक सूफी भजनों और लोक संगीत में सुना जाता है। सिलसिला फिल्म में पंडित शिवराज कुमार शर्मा ने इस गीत में संतूर बजाया है। वही गीत आप तक पहुंचाते हैं।

अब बात करते हैं वायलिन की। बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय चार तारों वाला वाद्य यंत्र जिसका वैश्विक प्रभाव रहा है। वायलिन फिल्म संगीत के ऑर्केस्ट्रा का एक खास हिस्सा है। 1950 के दशक के बाद ये कई हिंदी फिल्मों में देखा गया।

बांसुरी जिसे भला कौन नहीं जानता, इसका इतिहास श्री भगवान श्री कृष्ण और राधा से जुड़ा हुआ है। अकेली बांसुरी हिंदी फिल्मों का एक सामान्य वाद्य यंत्र है जो किसी त्रासदी या शांत गांव के दृश्य को दर्शाती है।

अब बात करते हैं सितार की, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत का सबसे लोकप्रिय और प्रमुख तंत्र वाद्य यंत्र है, जिसका लंबा गूंजदार और मधुर संगीत मन को मोह लेता है। सितार शब्द फारसी भाषा के शब्द सेह और तार से बना है, जिसका अर्थ होता है तीन तारों वाला।

और अब बात करते हैं माउथ ऑर्गन की। ये एक छोटा बेहद सुगम और पोर्टेबल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। इसे अक्सर हारमोनियम या माउथ पियानो भी कहा जाता है। यह फूंक मारकर और हवा अंदर खींचकर बजाया जाता है और बॉलीवुड की कई फिल्मों में आपने इसे देखा भी होगा।

वो भूली दास्तां। ये प्रोग्राम बस यहीं तक। एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज पर ये एफएम रेडियो लेक सिटी। आपके साथ हूँ मैं अनीता। अब प्रोग्राम तराने हमारे, व्हाट्सएप आपके। इसमें गीत होंगे हमारे और पसंद होगी आपकी, जो हम तक पहुँचेगी व्हाट्सएप मैसेज के जरिए। आपको बता दें कि इस प्रोग्राम में आप किसी भी गीत की फरमाइश ना करें और एक साथ बहुत ज़्यादा नाम भी ना भेजें। हमारे फ़ोन नंबर है 9462697568। और अब बताते हैं फिल्मों के नाम जिनके गीत आज आप इस प्रोग्राम में सुनने वाले हैं। तो फिल्में हैं इंतकाम, ताजमहल, चिराग, हसीना मान जाएगी, तेरे घर के सामने, नीलकमल, जंगली और पगला कहीं का। चलिए शुरुआत करते हैं इंतकाम फिल्म के इस गीत के साथ।

लता मंगेशकर के साथ मोहम्मद रफ़ी को अभी आप सुन रहे थे इंतकाम फिल्म में, और इस गीत को पसंद करने वाले श्रोता हैं बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सूरत रमेश साहू, डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम आदिबा और दानिश अंसारी, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य और परमानंद आर्य, सारिमपुरा बक्सर से राज एमसी अंसारी और आसमा खातून अंसारी, जैसे ये जिन्हें ये गीत अच्छा लगा है। और उसके बाद है मिस्टर एंड मिसेस 55 बजाज नगर उदयपुर के श्रोता, इसी गीत को पसंद करने वाले श्रोता हैं धनवंतरी नगर जबलपुर मध्य प्रदेश, अशोक सिंह, सुनीता सिंह, प्रीति सिंह, ऋतु सिंह, प्यारी गुड़िया, वेदा सिंह। उसके बाद हैं ये हैं कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहार बालोद छत्तीसगढ़ से, देवशंकर तामुड़िया, अजय देव तामुड़िया, तुषार देव तामुड़िया, डॉली बेबी पूजा तामुड़िया, राधिका और प्रभा देवी तामुड़िया और मास्टर अल कबीर भी इनके साथ हैं। उसके बाद हैं प्रकाश कनौजिया, ऋषि कनौजिया, मलय कनौजिया अपोजिट आयुर्वेद कॉलेज से, गणेश नगर महावीर जैन चित्तौड़ा। उसके बाद हैं नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, खुशनसीब अब्दुल डक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कटारा। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं सोहन जोशी और पायल जोशी, तहे दिल से शुक्रिया के साथ। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा, कपिल चीपा, ईशान चीपा और पूजा परिहार। और उसके बाद हैं ये हैं नरगोड़ा सीपत छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी, गोस्वामी लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी, जिन्हें ये गीत अच्छा लगा है। और उसके बाद हैं अहमद भाई फूल वाले, दुखना सनद, जुई इकबाल, इमरान अहमद फूल वाले, कापस हेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से हैं आमना नसरीन बागवान, आसमा परी, राबिया और आशु अहमद फूल वाले, शुक्रिया के साथ इनका मैसेज हम तक पहुंचा है। और उसके बाद है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित राय, हैप्पी राय, दुविधा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय है। उसके बाद है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नवाकर, निर्मला विशाल और सोपान ताइड़े, मलकापुर

सेन नारायण इंगली, राजकुमार इंगली, राजकुमार इंगले और आशीष मुढ़लेकर हैं। संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया बागपत उत्तर प्रदेश के श्रोता हैं। सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, प्रीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह नेपा नगर मध्य प्रदेश के श्रोता हैं। बिहारी कॉलोनी दिल्ली से हैं। तुलसी मस्किन, चैतन्य मस्किन, रचिता मस्किन, आशीष रजा। उसके बाद ग्राम पंचायत बठेड़ा पाटनपुर जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, प्रहलाद, राजेंद्र वर्मा, पूरा वर्मा परिवार। महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर से रमेश नाचानी, भारती नाचानी, विनीत नाचानी, मिथिल नाचानी और प्रगति नाचानी। गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार ड्यूटी, प्रमोद कुमार ड्यूटी, सौरभ ड्यूटी, जिन्हें यह गीत बहुत अच्छा लगा है। उसके बाद है विजय व्यास, उषा व्यास, जयेश व्यास, विनीत व्यास, पूनम व्यास, आशीर्वाद नगर यूनिवर्सिटी रोड से। और गुड मॉर्निंग के साथ ये संदेश हम तक पहुंचा है शिव पार्क दुर्गा नर्सरी से एडवोकेट कुमार राजेश नागौरी, वीना नागौरी, एडवोकेट वैभव नागौरी, दिव्या नागौरी और नन्ना सा प्यारा सा मास्टर अधिराज नागौरी, शुक्रिया के साथ। लेवाई छत्तीसगढ़ से हैं गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी, रानी मानिकपुरी और उज्जवल दास मानिकपुरी, जिन्हें गीत अच्छा लगा है। और उसके बाद हैं लेक सिटी बरगाकाना से अफजल ताज, शाइन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निपिसानी, मोहम्मद अफजल मलिक, उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती बघेल, ये हैं लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ के श्रोता। दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवान शर्मा, ये हैं पीपर रोड सरगांव छत्तीसगढ़ से। और लोसिंग से बंटी भाई, नारायण, उर्मिला, हीना और सुमन, थैंक्स के साथ और नाइस प्रोग्राम। नमस्कार के साथ अगला संदेश हम तक पहुंचा है वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। और उसके बाद है गोवर्धन बिहारी कॉलोनी से वीना मस्किन, तुलसी मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेघा मस्किन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना और रजित खुराना, जिन्हें यह गीत बहुत अच्छा लगा है। और उसके बाद हैं जवाहरनगर उदयपुर से बाबू भाई और भारती देवी, फाजिलका पंजाब से हैं भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाड़ी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, टिवांशी खेड़ा और धन्यवाद के साथ हैं जगदीश धाकड़, नायमा, श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़, शिवांगी धाकड़, ये हैं जिला रतलाम एमपी मध्य प्रदेश के श्रोता। और उसके बाद हैं रोशन लाल सालवी, राजकुमार सालवी, ललित, जमुना, मधु, ज्योति, पूनम, सचिन, विवांश, शैतविक और पूरा सालवी परिवार, चौकीदार आवास, मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर से, धन्यवाद। और उसके बाद है ये है नजमुद्दीन और ये हैं केसर उद्दीन, कश्मीर के हमारे श्रोता। कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश सिंह चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी और बेबी बॉय हिमांश, जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस डागला, शोभा डागला, शोभा नायक, समस्त डागला परिवार रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ के श्रोता हैं। और उसके बाद हैं ये हैं मधुसूदन जी सुहाल का, मधुकर साहब, संपत जी सुहाल का भीलवाड़ा से, राजू जी मांडवा ये भी भीलवाड़ा से हैं और हितेश सुहाल का इनके साथ हैं। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से हैं मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊ नगर उत्तर प्रदेश के श्रोता हैं राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा और कार्तिक आर्यन वर्मा। चलिए अगला गीत आपको सुनवाते हैं, उसके बाद बाकी नाम आपको पढ़कर सुनाएंगे। फिल्म है ताजमहल।

ताजमहल फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, और उसके पहले सुना आपने इंतकाम फिल्म का गीत। और ये मिले जुले नाम हम आपको पढ़कर सुना रहे हैं। अशोक विहार से संजू मेहता हैं, और सेक्टर 9 से हरीश जिंगर, मंजू जिंगर, जय जिंगर और माधवी जिंगर, छुटकी और कीटू, और इन्हें सभी गीत अच्छे लग रहे हैं, तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत। चेतक सर्कल से मुकेश जिंगर, रेणु जिंगर, प्रेमपुरी गोस्वामी, सहेलियों की बाड़ी से अजय जिंगर, प्रिंस जिंगर, कुलदीप सज्जन, कॉम्प्लेक्स नगर आज़ाद के हैं ये श्रोता। और उसके बाद हैं सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़ जिन्हें गीत अच्छा लगा है। सदर बाजार मारवाड़ बिलारा राजस्थान से हैं रमेश चंद्र चौहान, जयनारायण चौहान, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान। और राजकुमार माथुर, स्मिता माथुर, निलय माथुर, अक्षिता माथुर, आलंद माथुर, ये हैं बोरा गणेश जी के श्रोता। उसके बाद हैं रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से हैं विजय महोबिया, कविता महोबिया, विशाल विवेक, सोनू मोनू रानू, सपना शिवी सलोनी और पेंटर बाबू धन्यवाद के साथ। और उसके बाद है छत्तीसगढ़ मदनपुर से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू और राहुल साहू। उसके बाद का संदेश हम तक पहुंचा है ये है नागपुर महाराष्ट्र से कमल सहानी, मिसेस पिंकी सहानी, डॉक्टर अफजल मलिक, संदीप मक्कड़ और बेगम अफजल जिन्हें गीत अच्छा लगा है। और इसी गीत को पसंद करने वाले श्रोता हैं सवीना उदयपुर से, जैनब फातिमा और रहमत फातिमा, नेमत फातिमा, अबूकर और ऑन है ये, विक्रम शर्मा, नरेंद्र नाहटा, उमंग नाहटा, राहुल शर्मा, अक्षय शर्मा, अमर सिंह, दिलीप चित्तौड़ा, सुनीता वशिता, भंवर वशिता, गौतम वशिता, राहुल अगरबत्ती, राम द्वारा चौक, धौली बावड़ी उदयपुर के श्रोता हैं। सिसारमा से कैलाश नाथ, राजू देवी, हिम्मत, दिव्या, राहुल जिन्हें यह गीत अच्छा लगा है। और उसके बाद का संदेश है ये है लाल सिंह कुमावत, मीना कुमावत, मोहित कुमावत, मीनाक्षी कोमल, ये खैरादीवाड़ा रंगीला भैरू चौक से हैं, और शिव लालजी कुमावत, छगन देवी, राजकुमार मोहित, चारभुजा मंदिर खैरातीवाड़ा से हैं, विनोद जी कुमावत, नीलम कुमावत, गजेंद्र जी कुमावत, जया कुमावत, कुशल जी, कोमल कुमावत, हिरण मगरी सेक्टर 5 के श्रोता हैं, मनीष टेलर और बाबू लाल धाबाई सीमेंट फैक्ट्री उदयपुर से। और बहुत अच्छे सॉन्ग है और अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, और इन्होंने ये हैं सुरेंद्र सोलंकी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और उसके बाद है रहमान कॉलोनी से अब्दुल समद, फिरदोस बानो, मोहम्मद असलम और मोहम्मद रजा जिन्होंने गीत अच्छा लगा है, और हेमा कनौजिया, लता कनौजिया अपोजिट आयुर्वेद कॉलेज से हैं, रामपुरा से नारायण सिंह, नारायण सेन और

और गुड मॉर्निंग के साथ इनका संदेश हम तक पहुंचा है। जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो, विलिस डिकेस्ट्रो, तहे दिल से शुक्रिया के साथ। जनकपुरी सहारनपुर के श्रोता हैं और जमशेदपुर झारखंड से हैं। सुपाही साही गांव से देवेंद्र ताती, राकेश ताती, प्रकाश, निशा, रेशमा कुमारी, दीपाली कुमारी और देवेन जी, जिन्हें गीत अच्छा लगा है। और उसके बाद का संदेश हम तक पहुंचा है, ये हैं मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति और प्रतिभा शर्मा। एमबी कॉलेज कुमारों का भट्टा से मांगीलाल पूर्बिया, पुष्पा रानी पूर्बिया, जिन्हें गीत अच्छा लगा है। मोती चौट्टा करजाली हाउस से माधव लाल सितलीगर और कुमारों का भट्टा से प्रजापत जॉनी भाई कुल्लड़ वाले, इन्हें भी गीत अच्छा लगा है। और इसी गीत को पसंद करने वाले श्रोता हैं हरिशंकर शर्मा, जीत शर्मा, रीना शर्मा, काजल शर्मा, मारवाड़ी स्ट्रीट, रविंद्र सरनी, कोलकाता पश्चिम बंगाल के ही श्रोता। इंतकाम फिल्म के गीत को पसंद किया है संदीप मकड़, ज्योति मकड़, मन्नत मकड़, भरत मकड़, कमल सानी, पिंगावाला चौक, गोरिया जालंधर के ही श्रोता। जी कृष्ण आर्ट दिवाली से ख्याली लाल कुमावत, सुप्रिया कुमावत, रजन कुमावत और नन्ना टीपू। उसके बाद हैं गांधीनगर बाड़मेर से हैं बबलेश पंवार, डैनी पंवार, मनीष पंवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान और ये हैं डांगरी से बाबू राम जयपाल। और उसके बाद का संदेश हम तक पहुंचा है जबलपुर मध्य प्रदेश से कमल सिंह, संकल्प, विमल सिंह, कृष्वित और समर सिंह। नमस्कार के साथ एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता कांगड़ा, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट, अंकित कांगड़ा। ये है सेक्टर 5 से कन्हैया लाल जी चित्रकार, डॉक्टर चंद्र प्रकाश चित्तौड़ा, मिनिएचर आर्ट आर्टिस्ट धोली बावड़ी से रमेश चंद्र जी कुमावत और साथ में गोविंद जी, भक्ति शक्ति संस्कृति चैनल के सभी सदस्य। गौतम प्रकाश गांधी, मंजू गांधी, रुद्रांश गांधी, केशव नगर उदयपुर से, साथ में सुरेश जी मेघवाल और विश्वविद्यालय मार्ग से हैं। कालका माता रोड से धन्य कुमार चित्तौड़ा, नवनीत कुमार चित्तौड़ा, मनीष कुमार चित्तौड़ा, डॉक्टर इकबाल शका साहब जी और ये हैं इकबाल, शैलेंद्र पालीवाल, कालू जी मिस्त्री, हितेश जी मेघवाल और ये सभी श्रोता जो इनके पास बैठे हैं उन्हें भी गीत अच्छे लग रहे हैं। और उसके बाद जय जीनेन्द्र के साथ 330 चित्तौड़ा हाउस से विश्वविद्यालय मार्ग से डॉक्टर चंद्र प्रकाश चित्तौड़ा, शारदा चित्तौड़ा, रॉबिन चित्तौड़ा, विकास चित्तौड़ा, भावेश, सोनाली और विनीता चित्तौड़ा, कृतिका, दिया, प्रियांश, तनिष्क चित्तौड़ा। उसके बाद है अगला संदेश हम तक पहुंचा है उदयपुर वारियों की घाटी से सत्यनारायण वारी, शांति वारी, जगदीश चौक से सीमा वारी और नाहर सिंह वारी, शक्तिनगर उदयपुर से संतोष खतुड़िया, काम्या खतुड़िया, विकास खतुड़िया और भानु खतुड़िया, हितांश खतुड़िया, राजेश भंडारी, नम्रता भंडारी, एडवोकेट लक्ष्य राज भंडारी और पृथ्वीराज भंडारी। ताजमहल फिल्म के गीत को पसंद करने वाले श्रोता हैं जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और नमिशा। उसके बाद है हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी भाटिया, स्टेशन रोड जमशेदपुर के हमारे श्रोता हैं। जवाहर नर्गदुर से आरसी कामड़े, करुणा मीना, अश्विनी और विपुल कामड़े। ये है अडार नांद घाट छत्तीसगढ़ से हैं माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी, भूपेश और दिवेश वर्मा। और प्रोग्राम शानदार चल रहा है ये लिखने वाले हैं मुकेश जी चेतक सर्किल से। उसके बाद हैं रघुनाथपुरा ज़िला गंगानगर से हैं लाल गिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी, जयश्री रामचंद्र, चेतन दीक्षित, ये उदयपुर के श्रोता हैं। स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर, गुरलाल और अविराज सिंह, ये हैं गांव लोहगड़ा ठाकुर वाला। और उसके बाद हैं अगला संदेश जो हम तक पहुंचा है ये हैं दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा नमस्ते के साथ हैं। सलमान अहमद टेलर, भरत भाई टेलर, छतरी वाला चौक दहली गेट से हैं। मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसनार, नरगिस खातून, जिन्हें गीत अच्छा लगा है। और उसके बाद हैं नरोत्तम गौड़, कमल सुहालका, विष्णु जी सुभाष चंद्र सुहालका, पद्मा सुहालका, धारावती जी सुहालका, कमल सुहालका, जिन्हें गीत अच्छा लगा है। और उसके बाद हैं

श्याम मठपाल जी ने ये गीत अच्छा लगा है। चलिए, सबका तहे दिल से शुक्रिया जिन्होंने हमारे गीत को पसंद किया और हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं। चलिए, अगला गीत फिल्म चिराग से और आवाज़ लता मंगेशकर की।

आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर को फिल्म चिराग में, और इस गीत को पसंद करने वाले श्रोता हैं भावना रावत, नितिन रावत, जगदीश चौक से उमा वारी और साक्षी वारी, और उसके बाद हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह। ये हैं मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के श्रोता। और उसके बाद टैगोर नगर नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत और छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा। उसके बाद हैं ये हैं तीज का चौक से राजकमल खंडेलवाल, शैलेंद्र खंडेलवाल, इंदरलाल और दीपक। सही वालों की हवेली से जगत सिंह चौहान, सविता चौहान, मोना और धीरज चौहान। ताजमहल फिल्म के गीत को पसंद करने वाले श्रोता हैं खानजीपी उदयपुर से जब्बार मोहम्मद, फरीदा शबनम, नीदा इरम कलीम। प्रताप नगर से नरेश दवे, रंजना दवे और अंशुल दवे। राजस्थान रेडियो श्रोता संघ के सभी सदस्य हैं और इन्हें सभी गीत अच्छे लग रहे हैं, तो तमाम श्रोताओं का शुक्रिया जो गीत को पसंद कर रहे हैं। उदयपुर हिरण मगरी सेक्टर 5 शांति नगर से घनश्याम लाल बडारिया और नानी बडारिया, नंदनी पल्लवी, कुसुम और बाबू भैया हैं इनके साथ, और इसी फिल्म के गीत को पसंद करने वाले श्रोता हैं रहमान कॉलोनी उदयपुर से मोहम्मद इदरिश, रुखसाना बानू और मुस्तफ़ा रजा। भोपालपुरा उदयपुर से भगवंती चौहान, सत्येंद्र चौहान, तरुणा चौहान, एडवोकेट कमलेश चौहान, मधुकांता चौहान, नव्याश्री, नित्याश्री, और हम सभी ने चिराग मूवी देखी और गीत काफ़ी पसंद आया, तो शुक्रिया आपका। बड़ी जेठी फार्म हाउस से हैं विनोद, उमा, नम्रता, वामिका और ये हैं अनायरा, जिन्हें ये गीत अच्छा लगा है। और उसके बाद हैं भरत जायसवाल, सोनी गरासिया गांव, ये हैं डूंगरपुर राजस्थान के श्रोता। और अगला गीत है, ये हैं दिल्ली गेट से एडवोकेट राज बोस और लेक सिटी लिसनर्स क्लब के सभी मेंबर, जिन्हें चिराग फिल्म का गीत अच्छा लगा है। और उसके बाद हैं हफ्जा मिठाई, नफीसा, फकरुद्दीन, यूनुस असगर, सकीना पटवा, जकिया गिरिया, बस्ती राम जी की बाड़ी, उदयपुर के श्रोता। उसके बाद हैं भाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नौखेलाल वर्मा। और अगला संदेश जो हम तक पहुँचा है वो है खोजेफा अतारी, सुरगा अतारी, संजीदा, तबस्सुम, आलिशा, ये हैं खारोल कॉलोनी उदयपुर के श्रोता। डॉक्टर मनीषा, भुवनेश, पूरा खत्री परिवार, कल्लड़वास, सांची ग्रुप के श्रोता हैं। और खमागणी अनीता जी के साथ जो अगला संदेश है वो है, ये हैं रामदेव जी मंदिर से, मनोज जी कुमावत, सुंदर देवी कुमावत, ललित जी, किरण, अजय जी, भावना, विनायक जी, हेमलता, यशस्वी, सिद्धि, निष्ठा, प्रतिष्ठा, चिराग पिक्चर का गाना इन्हें अच्छा लगा है। और उसके बाद

0: काष्ठकला मार्ग से अमृतलाल जी, रेणु और रविंद्र शंकर और हनुमान जी, मंदिर से अशोक जी, सीता देवी सूरज, ताशु हेनु और लाल मंगरी, सेक्टर 7 से शांता देवी, मनोज सुनील और इनका पूरा परिवार जो ये गीत सुन रहे हैं। अशोक आनंद, मीनू नैनानी, प्रभात नगर, हिरण मगरी, सेक्टर 5 के श्रोता, सैयद मंसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम, अदीप और ये हैं कुमार हेड़ा सहारनपुर के श्रोता, रमेश टेलर, अंजू मयंक, तनिषा, लक्षिता टेलर परिवार घारियावास के श्रोता और चिराग फिल्म के गीत को पसंद किया है सैफी कॉलोनी खांजीपीर से डॉक्टर निदा अनाबिया, रेहाना बानू, मिफ्ता हुसैन, फरीदा जब्बार सुल्तान, डॉक्टर नाहिदा। और उसके बाद हैं ये हैं जयपुर से राजेंद्र अरुणा वैद्य, मुंबई से विनोद रंजना जी राजावत, हरिगढ़ से मनोज मनीषा जैन, संभाजी नगर से हैं संजय सपना जैन, उदयपुर से राजकुमार रेणु जैन, बौरवाड़ी उदयपुर से बसंतलाल चंदा, जागृति सौम्या और सुदीक्षा, जिला गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति भूमिका अरोड़ा, ताजमहल फिल्म के गीत के लिए इन्होंने अपना मैसेज भेजा है। जितेंद्र मंजू मासी, पुष्पा मासी, चिराग मौनी, न्यू भोपालपुरा उदयपुर से, निर्मला जी, मनीष जी, हेमंत जी, तारा मौली, सोनिया माली, मोहित और रमेश न्यू भोपालपुरा से हैं, प्रदीप माली, रीना भाभी जी, डॉली माली न्यू भोपालपुरा से, जमुना भाई, रूपलाल जी माली न्यू भोपालपुरा से, नन्ना मुन्ना युगू, मदन मंजू माहिर ये भी न्यू भोपालपुरा के श्रोता हैं, चंद्रशेखर भावसार, संगीता भावसार, कपिल भावसार, दामिनी भावसार, लविशा भावसार, 3 मोहाली चौटा उदयपुर के श्रोता हैं। और अगला जो संदेशा और सचिन कड़वासरा, सतीश कड़वासरा, योगेश कड़वासरा और युधव है इनके साथ, टैगोर नगर नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा और पूरा छाबड़ा परिवार तहे दिल से शुक्रिया के साथ इनका संदेश हम तक पहुंचा है। और उसके बाद हैं कौशल जी सुहालका, श्वेता सुहालका, पद्मा सुहालका जी, नरेंद्र जी सुहालका चित्तौड़गढ़ से हैं, संपत जी सुहालका, श्वेता सुहालका, कमल सुहालका और चिराग मूवी के गाने के लिए इन्होंने लिखा है, डिम्पी सुहालका इन्हें भी गीत अच्छा लगा है और दीप्ति सुहालका इनके साथ हैं। अगला संदेश है ये हैं गारियावास मेन रोड से महालक्ष्मी साड़ीज वाले हैं, अब अपनी दुकान का नाम मत लिखिए, आप अपना नाम लिखिए अगली बार से। नसीराबाद से हैं महेंद्र डाबी, ममता डाबी, हनी गुना और गाने इनको सभी अच्छे लग रहे हैं जो भी हम बजा रहे हैं। और ये हैं आबिदा खानम, सलमान अहमद, कुंदन नगर, अजमेर राजस्थान के श्रोता हैं। तो तमाम श्रोताओं का शुक्रिया जो हमारे गीतों को पसंद कर रहे हैं और हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
0: आइए अब सुनते हैं प्रोग्राम का अगला गीत, फिल्म का नाम है हसीना मान जाएगी। जिन श्रोताओं ने अभी तक मैसेज नहीं किया और जो गीत उनको पसंद आता है तो वो मैसेज कर सकते हैं 9462697568 पर।

हसीना मान जाएगी इस फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं। और कुछ संदेश धीरे धीरे आ रहे हैं। तो चिराग फिल्म के गीत को पसंद किया है उदयपुर प्रताप नगर से अशोक जी ने, और उसके बाद हैं चिराग फिल्म के गीत को पसंद करने वाले और भी हमारे श्रोता हैं, मल्ला तलाई से फयाज हुसैन रसिया, फरीदा बानू, मोहम्मद सैफ और रुबीना। हसीना मान जाएगी के लिए धान मंडी से कृष्ण कुमार हरिव्यासी, सरोज वाला हरिव्यासी, मेगा और गीत हरिव्यासी, राजस्थान रेडियो श्रोता संघ के सभी सदस्य, और सभी गीत इन्हें बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत। और गुड मॉर्निंग के साथ अगला संदेश हम तक पहुँचाए राम चंद्र टेलर, लीला देवी टेलर, कल्पेश पंवार, पिंकी, मनस्वी, चैतन्य और कार्तिकेय, प्रभात नगर, हिरण मगरी, सेक्टर 5 के हमारे ये श्रोता हैं। और उसके बाद है ये बड़गांव रंगास्वामी कॉलोनी से शिवदास रंगास्वामी, श्रीमती दोपती, साधना, पूजा, भानु प्रताप, महिमा, भास्कर, चित्रांशी, शांति भाभी जी, कमला भाभी जी, भगवान दास जी रंगास्वामी और पूरा खुबानी परिवार है इनके साथ। संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू, सीमा साहू, ये हैं पोटिया कला दुर्ग के श्रोता। और उसके बाद हैं आयुर्वेद चौराहा से अशोक चौहान, मंजू चौहान, उषा चौहान, पनिहारी वारियों की घाटी से दीपक रावत, किरण रावत और नक्ष रावत, राजकुमारी और विपिन गोस्वामी, चंदनवाड़ी प्रेम नगर के श्रोता हैं। और अगला संदेश है ये है एक से बढ़कर एक सभी ओल्ड सॉन्ग्स जो गुनगुनाते रहते हैं सभी की पसंद के हैं। सही बात है, पुराने गीतों का खैर मुकाबला ही नहीं है, ये सदाबहार गीत हैं जो हमेशा कभी भी सुनिए अच्छे ही लगते हैं। और ये हैं मोहम्मद सलीम शाह, रजिया बानो, इनाया टेलर, इक्सा इकरा, मुस्तफ़ा कॉलोनी सलुम्बर के ये श्रोता हैं। और उसके बाद हैं राधे राधे के साथ हैं मावली से सुरेश जी, प्रकाश जी और लक्ष्मण जी हैं इनके साथ जिन्हें ये गीत अच्छा लगा है। और उसके बाद हैं धरनई सरगांव छत्तीसगढ़ के श्रोता चंदूलाल पटवा, श्रीमती सुनीता पटवा, हर्ष कुमार पटवा, विनीत कुमार पटवा, कुमारी कृष्टि पटवा हैं। और अगला संदेश है वो है धनोरी तेलीवाड़ा से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू। और उसके बाद हैं ये हैं हसीना मान जाएगी के लिए कमल और परमानंद जी कुमावत, मोहन जी कुमावत और भूपेंद्र जी मलारा, दीपक जी मेहता और दीपक सुहाल का, ये हैं सुहाल का समाज के सभी सदस्य। और उसके बाद हैं शांतिलाल जी सुहाल का जिन्हें गीत अच्छा लगा है, बाबूलाल जी, दिनेश टांक, मुकेश टांक और पुष्कर टांक सूरजपोल रेगर कॉलोनी से हैं, और दिनेश जिंगर, मोहित जिंगर, इंदु जिंगर, भूत महल के श्रोता। उसके बाद है हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता जिन्हें गीत अच्छा लगा है, हरजिंदर छिंदा और जसवीर छिंदा। ये बार बार मैसेज आप न करें। और इसी गीत को पसंद किया है बोहरा गणेश जी से चंद्र प्रकाश अग्रवाल, चंदा अग्रवाल, हर्ष और भरत अग्रवाल। और हसीना मान जाएगी इसी गीत को पसंद किया है कृष्ण कुमावत, मिट्टू और

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थी और फिल्म का नाम था तेरे घर के सामने। और इस गीत को पसंद करने वाले हमारे बहुत सारे श्रोता हैं, उदयपुर धानमंडी से परमानंद कुमावत, मंजू कुमावत, विकास, मोनिका और लक्ष्य कुमावत, लेक सिटी रेडियो श्रोता संघ के सभी सदस्य इनके साथ हैं, और बेंगलोर से निकलेश, दीपिका और रिधान कुमावत, बेंगलोर से ही हैं वर्षा, सुरेंद्र और लावण्य कुमावत, दुष्यंत और जिज्ञासा, 55 बजाज नगर उदयपुर के श्रोता, और नीरज, ध्रुवेश, प्रेम शंकर, दिव्यांश, खारोल कॉलोनी फतेहपुरा के श्रोता हैं, सिंधी कॉलोनी डूंगरपुर से हैं खतूरिया निकिता, और ये हैं कशिश, हसीजा, दीपक, हसीजा, मीर, हसीजा आर क्यू हैं, और उसके बाद हैं प्रकाश कनौजिया, मलय कनौजिया, ऋषि कनौजिया, अपोजिट आयुर्वेद चौराहा के श्रोता हैं। और अगला संदेश वो है बहरवाड़ी से आशिक आलम, शब्बीर टेलर, ताहिर लड्डू, सिराज हबीब, चमनपुरा से जहरा अहदर और फातिमा आसिफ पटवा जी ने ये गीत अच्छा लगा है। त्रिलोक पूर्विया, उषा पूर्विया, हीरल पूर्विया, हिमांश पलक, मांगीलाल जी, भगवंती देवी, हाथीपोल उदयपुर के श्रोता हैं। सुप्रभात के साथ अगला संदेश जो हम तक पहुँचा है वो है तरुणा झमक पूर्विया, सोहन देवी पूर्विया और पूर्व पूर्विया, लक्ष्मी लक्षराज पूर्विया, हाथीपोल उदयपुर के श्रोता हैं। धन्यवाद के साथ गुलाबबाग उदयपुर से घनश्याम लाल, सत्यनारायण मालवी, वीरेंद्र सानी और राठौड़, और हमारे

सभी दोस्त इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गांव हांडी खेड़ा जिला सिरसा से हैं राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा और सार्थक शर्मा। तेरे घर के सामने इस फिल्म के गीत को और भी श्रोताओं ने पसंद किया है, और वो हैं कोलपोल उदयपुर से गोपाल तंबोली, कांता तंबोली, तिलक तंबोली, और ये लिख रहे हैं कि क्या शानदार गीत चल रहे हैं आज, और थैंक्स के साथ इन्होंने हम तक संदेश पहुंचाया है। उसके बाद हैं अम्बा जी से, ये हैं लकी दास रंगास्वामी, पूजा रंगास्वामी, निकुंज नक्श, नया गांव पाली से जगदीश दास रंगास्वामी, साधना भास्कर और इनका पूरा परिवार इस गीत को सुन रहा है। अगला संदेश है वो है रामचंद्र पंवार, तुलसी राम दैया, डी के चौहान, अशोक कुमार सोलंकी, कैलाश माहेश्वरी, कृष्णकांत कनेरिया और आस्था संस्थान के उदयपुर के ये श्रोता हैं। गुड मॉर्निंग मैडम जी के साथ ये हैं मुन्नू जी पेंटर साहेब, सुंदर देवी, किरण, अंजू, हेमा और याची सिद्धि, नील, छोटू, और आगे है ये हैं आर के पुरम से हैं ये अजय जी कुमावत और भावना कुमावत, निष्ठा और प्रतीक्षा जिन्हें गीत अच्छा लगा है। उसके बाद हैं बेबी शालिया डावर, बेबी हालिमा डावर, बेबी जिक्रा डावर, बेबी आयशा खत्री, संजय कुमावत, कविता कुमावत, राकेश मीना, आर के पुरम उदयपुर के श्रोता, गोविंद जी राजकुमार, कैलाश नवीन, लाल जी श्रीनाथ मार खैरातीवाड़ा उदयपुर के, शशांक कुमावत, कार्तिक मोहित, पुल्लू यूवी कुमावत, हिरण मगरी सेक्टर 5 के श्रोता, बंटी, तरुणा, दीपिका, रेखा, चांदनी पवार, भतीजा कार्तिकेय, भतीजी मनस्वी और साथ में मम्मी पापा। उदयपुर वारियों की घाटी से हरीश रावत, मीना रावत, एसएन रावत, भोपाल वाड़ी से रवि भाई, सत्तू भाई, दिलीप खत्री, वारियों की घाटी से गुनगुन, और इन्हें सभी गीत अच्छे लग रहे हैं दिल से शुक्रिया के साथ। फिल्म तेरे घर के सामने इस गीत को पसंद करने वाले श्रोता हैं प्रेस कॉलोनी खांजी पीर से रियासत अली जाहिदा बानो, इमरान अली, जाकिरा बानो, इरफान अली और इनके सभी परिवार के सदस्य, सत्येंद्र भावसार, ऋतु भावसार, राहुल भावसार, दामिनी भावसार, गला मंडी सैर मध्य प्रदेश के ये श्रोता हैं। चलिए तमाम श्रोताओं का शुक्रिया। अगला गीत फिल्म नील कमल से।

0: नील कमल फिल्म के गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं आदर्श नगर मलोट पंजाब से, राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंटी शर्मा, सौरव शर्मा, साइना शर्मा और साथ में है निवांश शर्मा, लाल मंगरी सेक्टर 7 से शांता देवी, मनोज, सुनील कुमावत जिन्हें ये गीत अच्छा लगा है। और उसके बाद संदेश हम तक पहुंचा है नफीसा, फरीदा, फलासिया, नईवाड़ा, उदयपुर के ये श्रोता हैं, दीपिका, दक्ष और मेरा पूरा परिवार नीलकमल के गीत को पसंद कर रहा है। नीलकमल फिल्म के गीत को पसंद करने वाले हमारे और भी बहुत सारे श्रोता हैं, वो हैं पीलम नील, ये हैं पिलादर रोड से नाथूलाल देवड़ा और गोपाल देवड़ा, जगदी लाजली, पुष्पा टेलर, श्री रामचंद्र जी, लीला देवी पंवार, दिलीप कुमार, जमुना चौहान, श्री प्रकाश, विद्या कनेरिया, बड़ी सादड़ी के ये हमारे श्रोता हैं। और उसके बाद हैं कमल बाल कृष्ण जी, मामा जी सुहाल का, सुनील सुहाल का, योगेश जी सुहाल का, कमल सुहाल का, राजकुमार जी और राजेंद्र मार्ग गारियावास उदयपुर के ये हमारे श्रोता हैं। चलिए अगला गीत आप तक पहुँचाते हैं और फिल्म का नाम है जंगली।
1: दादी कौन सा प्लांट है?
2: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
3: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
1: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
3: क्यों?
1: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
3: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
4: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।

दुत तलाई उदयपुर के ये हमारे श्रोता हैं, निशा गरासिया, सोनिया ठाकुर और सोनी गरासिया गांव मंडवा डूंगरपुर के श्रोता। और अगला संदेश जब तक पहुंचा है अंबेरी से हेमा वेन्यू और उनके मम्मी पापा, प्रोग्राम बहुत ही अच्छा शानदार चल रहा है मैडम जी और आपके सारे गाने अच्छे लग रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि हम वो गीत आपके लिए लेकर आते हैं जो हमारे श्रोता पसंद करते हैं और जो सदाबहार गीत होते हैं और आपको पसंद भी आते हैं, बहुत ही शुक्रिया आपका। परमानंद जी कुमावत, लाल जी कुमावत और सभी साथी धानमंडी उदयपुर से, किंजू कुमावत, शौर्य कार्तिक, दादाजी दादी जी हिरण मगरी सेक्टर 5 उदय पार्क से, तुलसीराम कुमावत, कांता कुमावत, तौसिक रवि, महादेव मंदिर खैरादीवाड़ा उदयपुर के श्रोता। चलिए प्रोग्राम का आखिरी गीत फिल्म पगला कहीं का से और आवाज लता मंगेशकर की।

जंगली फिल्म के गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं नागा नगरी से अब्दुल भाई, बाबू भाई, टिंकू भाई, सोनू भाई और सैफन भाई, जिन्हें गीत अच्छा लगा। और उसके बाद जय सालवी, संतोष खतोड़िया, यज्ञ सालवी और

लता मंगेशकर को अभी आप सुन रही थी पगला कहीं का फिल्म में, और अब बताते हैं उनके नाम जिन्होंने इस गीत को पसंद किया है। तो टेकरी लिंक रोड से मिस्टर एंड मिसेस के और उनकी प्यारी सी बिटिया, और सारे गाने बहुत ही अच्छे चल रहे हैं। तो शुक्रिया आपका, और आज सभी गाने अच्छे लगे, बहुत बहुत धन्यवाद। और किस किस का नाम लूँ, सभी गाने बहुत अच्छे लगे हैं। ये लिखने वाले हैं सुधा रानी वैष्णव रामपुरा से। अगला संदेश हम तक पहुंचा है लाल जी, गोविंद जी, कुशल जी, खैरातीवाड़ा रंगीला भैरव चौक से, और किशोर टेलर जयंत राठौड़ मालदास की सहरी से। इसी गीत को पसंद किया है खांजी पीर उदयपुर से, मुनव्वर अशरफ, मन्नू मोहम्मद, अशफाक आसिफ, अदा आलिया, आसमिना, शानदार गीतों के लिए बधाई। कमल सोनिया, हरीश, मोनिका, भाविक, मीनाक्षी, आयुष, मंथन, प्रशा, हर्षल, रोनित जैन, तुलसीनगर भुआना की श्रोता। तो तमाम श्रोताओं का शुक्रिया जिन्होंने हमारे गीत को पसंद किया और हमारे प्रोग्राम को सराहा। अब अपनी दोस्त अनीता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है एफएम रेडियो लेक सिटी। अब तक आप आनंद ले रहे थे लोकल विंडो के प्रोग्राम्स का। स्टूडियो की घड़ी में इस समय 12 बजने को है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। समाचारों की प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच नई दिल्ली में वार्ता हो रही है। बातचीत में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार तथा निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की नई संभावनाएं तलाशी जाएंगी। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। इससे पहले राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़े कई स्थलों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत के तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं का जायजा लेना और सहयोग के अवसरों का पता लगाना है। भारत ऊर्जा और निवेश के क्षेत्रों में वेनेजुएला का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। वे 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उनकी यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिश्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन का दौरा करेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत और अमरीका लंबे समय से प्रस्तावित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के बेहद करीब हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ये समझौता अगले कुछ सप्ताह में पूरा हो सकता है। अमरीकी संसद की विदेश मामलों की समिति के समक्ष सुनवाई के दौरान श्री रूबियो ने

0: भारत को हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका का महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बताया। उन्होंने कहा कि हाल ही में भारत यात्रा के दौरान क्वाड देशों के प्रतिनिधियों के बीच चर्चा हुई। श्री रूबियो ने कहा कि क्वाड देश केवल बातचीत तक सीमित नहीं है बल्कि समुद्री सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर मिलकर काम कर रहे हैं।
1: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्रवाई कर सकते हैं।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और लाओस के बीच गहरे सभ्यतागत संबंध हैं और ये बौद्ध धर्म तथा रामायण की साझा विरासत में दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देश राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं जो द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ आगे की सैन्य कार्रवाई से रोकने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। ये चौथी बार है जब प्रतिनिधि सभा ने ट्रंप की युद्ध संबंधी शक्तियों को सीमित करने की कोशिश की है। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: यह है FM रेडियो लेक सिटी, विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से कार्यक्रमों की श्रृंखला में आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।
3: आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती। आपको करना है थोड़ा सा इंतजार, हम अभी हाजिर होते हैं लेकर यादों की

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर हम हाजिर हैं लेकर कार्यक्रम यादों की महफिल। और इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं।

यादों की महफिल कार्यक्रम में हमने आज सबसे पहला जो गाना शामिल किया वो 100 डेज फिल्म से था। एसपी बालासुब्रमण्यम के साथ लता मंगेशकर की आवाज, दिलीप ताहिर ने इसे लिखा था, राम लक्ष्मण का मचलता संगीत। और मेरे ख्याल से आपने ये गाना सुना और आप जान ही गए होंगे कि आज यादों की महफिल में वो गाने शामिल हो रहे हैं जिनमें गायक आवाज़ है एसपी बालासुब्रमण्यम की। जी हाँ, आज उनका जन्मदिन है तो हम उनको उनके गीतों के जरिए याद करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले गाने की ओर।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखिया ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: यादों की महफिल कार्यक्रम में साजन और मैंने प्यार किया, इन दो फिल्मों के बाद अब बारी आ रही है वंश फिल्म के इस गाने की।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

सागर फिल्म का ये गाना आपने सुना। साथियों, एसपी बालासुब्रमण्यम की गायकी का एक अलग ही अंदाज रहा है। हर भाव के गीतों को कितनी सहजता से समेट लेते थे। अब ये गीत ही सुनिए ना। गीत संगीत बोल आवाज सब कुछ कमाल।

दिल को छू लेने वाले सच्चे बोल, जावेद अख्तर के सुरीला संगीत, राहुल देव बर्मन का गर्दिश फिल्म में, इस गाने में आवाज एसपी बालसुब्रमण्यम की। चलिए यादों की महफिल कार्यक्रम के अगले गाने की ओर बढ़ते हैं।

एसपी बाला सुब्रमण्यम के साथ अलका याग्निक की आवाज में आपने मझधार फिल्म का गाना सुना। यादों की महफिल कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक एसपी बाला सुब्रमण्यम के गाए कुछ बेमिसाल गाने। और अब बारी है लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों वाले उस गाने की जिसकी फिल्म का नाम है पत्थर के फूल।

हाँ तो भाई, पत्थर के फूल फिल्म का ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर और एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाज़ों में, और यही गाना बना आज के यादों की महफिल कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

श्रोताओं नमस्कार, शुभ दोपहरिया, शुभ नमन। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के कार्यक्रम सुरीला सफर में आप सभी का स्वागत। तो साथियों, आज का टेक्स्ट, आज की इबारत आप तक पहुंच चुकी है और आप जान भी चुके हैं कि आज के टेक्स्ट में क्या है खास। तो चलिए हम आपको वो टेक्स्ट, वो इबारत पढ़कर सुना देते हैं। आज का टेक्स्ट है, आज भी जब पुराने गीत रेडियो पर गूंजते हैं तब श्वेत श्याम यादें आंखों में रंग भरती हैं। ऐसे में कोई खास सिर्फ याद नहीं आता, वो फिर से जी उठता है। वो भोली सी सूरत, गहरी आंखों वाली छबीली सुजाता ने भावनाओं का एक पूरा मौसम खुद में समेट रखा था। जाने कब वो बंदिनी बनकर छलिया, अनाड़ी, सौदागर, महाराजा सरस्वती चंद्र को छोड़कर सावन के महीने में कन्हैया की बांसुरी के रंग में अपनी चुनरिया रंग बैठी। कहाँ तक सुनाऊं साहेब, इस छोटी सी गुड़िया की तो लंबी कहानी है, लेकिन आप खानदान की राधा से पेइंग गेस्ट का वादा तो सुनिए जरा। एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने। तो ये तो थी आज की इबारत और आप सभी जान चुके हैं कि आज इसमें क्या है खास और आज दिन कौन सा है, इसलिए हमने ये इबारत जो है वो इस तरह से आप तक पहुंचाई है। तो बहरहाल इस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूं मैं, शिफाली कपूर।

Very good afternoon. साथियों, आज है 4 जून का दिन और आज जन्मदिन है अभिनेत्री नूतन का, तो ये इबारत उन्हीं के लिए है। वैसे आपको बता दें कि नूतन सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थी साथियों, बल्कि भारतीय सिनेमा की गरिमा और शालीनता की मिसाल थी। वो उन गीतों की रूह भी थीं जो रेडियो से निकलकर दिलों में बस गए। उन पर फिल्माए गीतों को सुनकर यूं लगता है जैसे पुराने दौर का एक दरवाज़ा फिर से खुल गया है। इनकी फिल्में बीता हुआ वक्त नहीं साथियों, यादों की जीवित धरोहर हैं। अभिनेत्री नूतन जी को लेकर ढेर सारे कमेंट्स हमारे सामने हैं इस समय, और बहरहाल हमारे साथी क्या लिख रहे हैं। हाँ, देखिए हमारे एक साथी लिखते हैं कि सुरीला सफर के इस सुनहरे सफर में आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हूँ, आज के गाने अवश्य यादगार होंगे। जी हाँ बिल्कुल, और आप सबका साथ इस कार्यक्रम को और भी खूबसूरत बनाएगा। तो वहीं हमारे एक दूसरे साथी ने क्या लिखा है कि 1 माह 5 दिन हो चुके हैं कार्यक्रम सुरीला सफर में, आप आज आई हैं शायद पहली बार। अरे वाह, क्या बात है, इन्होंने दिन महीना सब कुछ याद रखा। बहरहाल आज हम आ गए आपके साथ। और एक कमेंट में हमारे साथी ने लिखा है कि ये है सुरीली सफर की सही इबादत, इबारत नूतन जी के जन्मदिन पर उनके ही गानों पर परफेक्ट इबारत। वैसे भी हमेशा से ही आपने सही इबारत दी है और तहे दिल से शुक्रिया किया है, तो शुक्रिया आप सभी का भी हमारे इस कार्यक्रम के साथ दिल से जुड़ने के लिए। तो दूसरे साथी लिख पड़े हैं कि आज गद्यांश को पढ़कर सुखद आश्चर्य हुआ, वाकई में हम जो सोच रहे थे वही यहाँ शब्द निरूपित हुआ, यानी एक अनन्य लाजवाब हुस्न मलिका पूर्णतः अभिजात अभिनेत्री नूतन जी की कहानी को सुंदर तरीके से शब्दों में पिरोया गया है। कई दिन बाद शायद ये प्रयोग हुआ है। इन्होंने ढेर सारा धन्यवाद दिया है और लिखा है कि आज बेहतरीन गीतों की माला सजाई जाएगी। गानों का सिलसिला शुरू हो उससे पहले कुछ कमेंट्स ले लेते हैं। हमारे एक साथी ने लिखा है कि आज गुजरे जमाने की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री नूतन जी की जन्म जयंती है, लिहाजा छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी है उन्हीं की फिल्मों के गीत हैं। जी हाँ बिल्कुल। आगे लिखा है कि नूतन के सौंदर्य को मिस इंडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया और वो इस पुरस्कार को पाने वाली पहली महिला थी, ऐसी जानकारी इन्होंने दी है। तो दूसरे साथी क्या लिखते हैं कि कार्यक्रम में फिर से शामिल होने वाले इस गद्यमयी इबारत में एक छोटी सी गुड़िया के मन की गुदगुदी भरी बड़ी सी कहानी चित्रण बंदिनी सुजाता छलिया अनाड़ी महाराजा आदि के माध्यम से भली भांति उकेरा गया है, और इस दृष्टिकोण से गुड़िया की कहानी जो वादे तक आती है तो हर हृदय को स्पर्श करने में पूरी तरह समर्थ है। और फिर तो भाई गीतों का सिलसिला शुरू करना ही पड़ेगा। और साथियों, चूंकि आज के टेक्स्ट में जिक्र है एक छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी का, तो भाई आज के सुरीला सफर की कहानी का आगाज भी इसी गाने के साथ होना चाहिए। क्या कहते हैं आप, इस गाने को सुनकर बताइएगा क्या राय है आपकी।

दुबई सीमा फिल्म के इस गाने के साथ कार्यक्रम सुरीला सफर का आगाज हो गया है और हमारे साथी ने भी लिखा है कि बहुत ही साफ सुथरे गीत से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। तो और दूसरे साथी लिख रहे हैं कि फिल्म सीमा का ये गीत मेरी लिस्ट का यानी उनकी लिस्ट का पहला गीत बच गया। तो आप सब भी अपनी अपनी लिस्ट में गाने टिक करते चलिएगा कि कौन कौन सा गाना हमारी लिस्ट के साथ मेल कर रहा है। वैसे आप गाने लिख कर भेजिए हमें, हो सकता है कि आप वाला गाना बज ही जाए। वैसे एक साथी ने लिखा है कि इस गाने में सरोद का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है, फिल्म सीमा लता जी शंकर जयकिशन का संगीत। जी हाँ। और आगे एक साथी लिखते हैं कि नमस्कार किया है, लिखते हैं अगर आज की इबारत को देखा जाए तो लगता है कि आज तो गाने बहुत ही सुंदर और सुनने को मिलेंगे, आज तो बहुत आनंद आएगा। और दूसरे साथी ने लिख दिया है कि नूतन ने बिना ज़्यादा बोले सिर्फ अपनी आँखों और चेहरे के भावों से भावनाओं को व्यक्त किया, फिल्म सुजाता 1959 और बंदिनी 1963 जैसी फिल्म में उनका संवेदनशील अभिनय इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यकीनन साथियों, उनकी सादगी में एक अनोखा आकर्षण था जो बिना किसी दिखावे के सीधे दिल को छू जाता था। और उनकी खूबसूरती केवल चेहरे तक सीमित नहीं थी बल्कि उनके व्यक्तित्व, विनम्रता और संस्कारों में भी झलकती थी। जैसा कि हमारे एक साथी ने उनकी आंखों के लिए लिखा है कि अपनी आंखों और चेहरे के भावों से भावनाएं व्यक्त करती थीं। तो

यकीनन उनकी आंखें भावनाओं की ऐसी भाषा बोलती थीं जिसे शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। प्रतिभा, सौम्यता और आत्मविश्वास का जो सुंदर संगम अभिनेत्री नूतन में था, वो उन्हें अपने दौर की सबसे विशिष्ट अभिनेत्रियों में शामिल करता है। एक और कमेंट आया है हमारे पास कि ऐ मेरे हमसफर, रोक अपनी नजर, ये दिल है बड़ा बेअसर, बचपन के दिन भी क्या दिन थे उड़ते फिरते, ऐसा गाना लिखा है इन्होंने। बहुत सारे गाने लिख भेजे हैं और लिखा है कि युग युग से गीत मिलन के गाते हैं, गाते रहेंगे, यानी इन्होंने नूतन जी के बहुत सारे गानों को यहाँ तक भेज दिया है। और एक साथी ने लिखा है कि मैं तो यही कहूंगी कि ब्लैक एंड वाइट का जो दौर था वो बहुत ही सुंदर था। एक श्वेत शाम दौर की फिल्मों में जो सादगी, आंखों की भाषा और ठहराव था, वो आज के शोर शराबे में कहीं खो सा गया है। उस दौर की भोली सी सूरत और गहरी आंखें बिन कुछ कहे भी सब कुछ कह जाती थीं। बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप। वैसे आप बताइएगा, आप सब साथी, कि आपको ब्लैक एंड वाइट फिल्मों में ज्यादा अच्छा लगता है फिल्में देखना या रंगीन, और नूतन जी की कौन सी फिल्म है जो आपके दिल के बेहद करीब है। एक कमेंट में हमारे साथी ने लिखा है, ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा के स्वर्णिम युग में नूतन भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बेहतरीन और प्रभावशाली अभिनेत्रियों में से एक थीं। उनकी सादगी, प्राकृतिक अभिनय और सशक्त किरदारों ने उन्हें उस दौर के दर्शकों के दिलों की धड़कन बना दिया था। वो सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा नहीं थीं, बल्कि उन्होंने अपनी आवाज और आंखों के भावों से हर किरदार में जान डाल दी। उन्होंने बिना किसी लाउड मेकअप या ड्रामे के केवल अपने संजीदा अभिनय से ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के पर्दे पर अपनी एक अमित छाप छोड़ी। बिल्कुल सही बात है। और उदाहरण है उनकी क्लासिक फिल्मों में उनका क्लास, अभिनय, बंदिनी, सुजाता, तमाम फिल्में हैं साथियों। ढेर सारी कमेंट्स मेरा शामिल करने का इरादा है गीतों के साथ। बहरहाल अगला गीत प्ले हो उससे पहले मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ ढेर सारे कमेंट्स ले लूँ। उन्होंने मेरे साथी लिखते हैं एक कि इन्होंने लिखा है कि अभिनेत्री नूतन हिंदी सिनेमा की सबसे प्रतिभाशाली और सम्मानित अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं। अपनी सहज अभिनय शैली, प्रभावशाली आंखों की अभिव्यक्ति और भावनाओं को जीवंत रूप से पर्दे पर प्रस्तुत करने की उनकी अद्भुत क्षमता के कारण उन्हें दर्शकों के दिलों में विशेष उन्होंने स्थान बनाया। तो वहीं दूसरे साथी ने लिखा है कि मधुर गीत से आगाज हुआ आज के इस कार्यक्रम का। तो एक दूसरे हमारी एक साथी हैं लिख रही हैं कि तब मैं बहुत छोटी थी, नूतन की फिल्म लगी थी तेरे घर के सामने। मेरे पापा नूतन जी के अभिनय वाली कोई भी फिल्म लगी हो तो हम सबको जरूर देखने जाते थे। उन्हीं दिनों में नूतन की सरस्वती चंद्र, खानदान और दुल्हन एक रात की देखी थी। उस समय नूतन के अभिनय में क्या खासियत है ये नहीं पता था, मगर जब थोड़े बड़े हुए तो सुजाता और बंदिनी देखने के बाद जाना कि अभिनेत्री नूतन में क्या खास है। धीर गंभीर चेहरे के पीछे भाव प्रवण अभिनय, मैंने लगभग नूतन के अभिनय की सारी फिल्में देखी हैं और मेरे पापा की तरह वो मेरी भी पसंदीदा अभिनेत्रियों में शुमार है। शायद ही कोई होगा ऐसा साथियों जिसे अभिनेत्री नूतन पसंद ना हो और उनका अभिनय पसंद ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सहज अभिनय बहुत कम देखने को मिलता है। तो वहीं एक और कमेंट में लिखते हैं साथी कि नूतन जी भारतीय सिनेमा की पहली अभिनेत्री थीं जिन्होंने शादी और करने और मां बनने के बाद भी बतौर लीड एक्ट्रेस बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट फिल्में दीं। अपनी सजल आंखों और स्वाभाविक अभिनय के लिए मशहूर नूतन थीं। जिस लड़की को रूप रंग के लिए ताने मिले, उसी नूतन ने 1952 में महज 16 साल की उम्र में मिस इंडिया, मिस मसूरी का खिताब जीतकर सबको चौंका दिया था। तो चलिए, कमेंट बहुत सारे हैं, गाना बजने के लिए बिल्कुल तैयार है। जैसा कि आप सबने कहा है कि नूतन जी गाती भी थीं, हमारे बहुत सारे कमेंट्स में मुझे पढ़ने को मिला है, तो जी हाँ, वो गाती भी थीं। तो जब छोटी सी गुड़िया की कहानी का आगाज हुआ है तो देखें वो गुड़िया आगे क्या कहती है।

तो ये वही फिल्म थी, वही गाना था जिसका आपको इंतजार था। छबीली फिल्म का गाना था और आवाज अभिनेत्री नूतन की थी। जैसा कि हमने आपसे पूछा था कि आपको अभिनेत्री नूतन की कौन सी फिल्म सबसे अच्छी लगती है, आपके दिल के करीब है, तो हमारी एक साथी लिख रही हैं कि उनकी किसी एक फिल्म को चुनना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिल्म सौदागर में उनका अभिनय मेरे दिल को छू गया। तो वहीं दूसरी सखी ने भी लिखा है कि नूतन की सौदागर मुझे बहुत अच्छी लगी, एक बेबस बेवा की शक्ति रूप का शानदार प्रदर्शन है। सच में साथियों, उनकी हर फिल्म में उनका क्लास अभिनय हम सभी के दिलों में आज भी बसा है। एक साथी ने लिखा है कि नूतन जी मेरे जन्म से पहले की अदाकारा हैं, परंतु उनकी कई पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में मैंने दूरदर्शन पर, ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन पर देखी हैं और उनकी नई फिल्में सिनेमा हॉल में भी देखी हैं। वे सदाबहार अदाकारा हैं। एक साथी ने लिखा है कि बिमल रॉय की फिल्म बंदिनी भारतीय सिनेमा की एक मील का पत्थर है। और आगे लिखा है कि इस फिल्म में नूतन द्वारा निभाया गया कल्याणी का किरदार हिंदी सिनेमा के इतिहास में अभिनेत्रियों द्वारा दिए गए सर्वश्रेष्ठ और सबसे सशक्त अभिनय में से एक माना जाता है। कल्याणी का चरित्र एक ऐसी शांत महिला का है जिसके भीतर जुनून और वेदना का ज्वालामुखी उबल रहा है। उन्होंने बिना किसी लाउड ड्रामे का अभिनय बहुत ही कोमलता और गरिमा के साथ इस भूमिका को जिया। उनकी संवाद के बजाय अपनी आंखों से उन्होंने सूक्ष्म के भावों से अपनी पीड़ा और असमंजस को पर्दे पर उतारा। वो प्यार, त्याग और अपराध बोध के द्वंद्व को केवल एक नजर से बयां कर देती थीं। फिल्म के क्लाइमेक्स में जिस तरह अपने प्यार, अपनी जिंदगी त्याग कर अपने पुराने प्यार की तरफ लौटती हैं, क्या कोई सिने प्रेमी उनके इस किरदार और को अदाकारी को भूल सकता है? कोई नहीं भूल सकता साथियों, कोई भी नहीं। और इतने भावों को अपनी आंखों से बयां करना कोई आसान काम नहीं है। तो एक साथी ने लिखा है कि नूतन की फिल्मों के गानों, विशेष रूप से लता मंगेशकर जी द्वारा गाए, में उनका जो लिप सिंक होता है इतना सटीक और स्वाभाविक होता था कि वे गीत सीधे उनके किरदार का हिस्सा लगते थे। तो दूसरे साथी लिखते हैं कि उनकी सारी फिल्में, नूतन जी की सारी फिल्में सुपरहिट रही हैं। सुनील दत्त के साथ उनकी फिल्म खानदान बचपन में दो आना टिकट दर पर देखी थी, पारिवारिक फिल्म सपरिवार देखी थी। नूतन जी की फिल्मों से जुड़ी आपकी कोई याद हो तो जरूर साझा कीजिए साथियों। और हाँ, अपनी लिस्ट के गाने टिक करना मत भूलिएगा और हमें बताना मत भूलिएगा कि आपके कौन कौन से गाने मेल खा

रहे हैं। एक कमेंट आया है कि नूतन महज एक अभिनेत्री नहीं थी बल्कि भारतीय सिनेमा के कैनवास पर उकेरी गई एक ऐसी जीवंत कविता थी जो बिना किसी शोर के सीधे दिलों को छू लेती हैं। चेहरे पर सादगी, अभिनय में सहजता और कैमरे के सामने हमेशा ईमानदारी रहने वाली नूतन की अभिनय शैली, संवाद अदायगी और उनकी भावभंगिमाओं में दर्शक बन जाते हैं। नूतन अपने किरदार में इतनी गहराई से उतर जाती थी कि सिनेमा घर से बाहर निकलने के बहुत बाद भी उनकी हर हरकत, हाव भाव, नजर और संवाद मन में बसे रहते हैं। उनकी आंखें शब्दों से अधिक

तो वहीं दूसरे साथी ने लिखा है कि मैंने भी आज की इबारत से एक पैराग्राफ बनाया है और पुराने रेडियो गीतों की मधुर धुनें जब श्वेत श्याम यादों को फिर से जीवंत कर देती हैं तब मन अनायास ही उन सुनहरे पलों में खो जाता है। कभी सुजाता की मासूमियत दिल को छूती है तो कभी बंदनी की भावनाएं मन को बांध लेती हैं। अनाड़ी छलिया सौदागर और सरस्वती चंद्र जैसी फिल्मों के किरदार आज भी यादों में वैसे ही बसे हैं जैसे सावन में कन्हैया की बांसुरी की मीठी तान। वाह क्या बात है। आगे लिखा है चुनरिया के रंग राधा का प्रेम छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी और एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने जैसे गीत पुराने दौर की मोहब्बत और अपनापन फिर से महसूस करा देते हैं। तो वहीं दूसरे साथी ने भेजा है कि आज की इबारत में एक नूतन प्रयोग किया गया है जिसमें अभिनेत्री नूतन जी की फिल्मों को जोड़कर इबारत बनाई गई है। आज छैल छबीली अभिनेत्री नूतन जी की फिल्मों और उनके शानदार अभिनय और बढ़िया गीतों से सुरीले सफर को सजाया गया है। अपनी आंखों से अभिनय को जीवंत करने में माहिर नूतन जी ने एक अपनी अलग ही पहचान बनाई थी। श्वेत श्याम फिल्मों में बेहतरीन अभिनय किया और ढलती उम्र में भी माँ की भूमिका में भी अपने बेहतरीन अभिनय से वो स्थान बरकरार रखा जो वो शुरुआती दौर में था। ऐसी महान अभिनेत्री नूतन जी को विनम्र नमन। एक कमेंट आया है कि नूतन जी हिंदी सिनेमा की सबसे संजीदा और सहज अभिनेत्रियों में जानी जाती हैं। उनकी आंखें ही संवाद बोलती थीं। फिल्म बंदनी में कल्याणी की खामोशी हो या सुजाता में अछूत लड़की की पीड़ा या फिर तुलसी तेरे आंगन की मिस सौतन की जटिल भावनाएं उनकी आंखें ही बोल देती थीं। सत्यजीत रे जी ने कहा था कि नूतन की आंखों में ही स्क्रिप्ट लिखी होती है। नूतन जी ने अपने हर किरदार को जिया है। उन्होंने आदर्श नायिका की परिभाषा बदली और उनके किरदार कमजोर नहीं बल्कि हालातों से लड़ने वाले ज्यादा रहे। आज उनके जन्मदिन पर उन्हें सादर नमन। और जैसे कि बात बंदनी की चल ही रही है तो जब बात चले बंदनी फिल्म के जिक्र आए तो उस फिल्म का ये गाना ना बजे ऐसा तो हो नहीं सकता।

हाँ तो साथियों, ये गाना ना बजे ऐसा तो हो ही नहीं सकता जब बंदनी फिल्म का जिक्र हो, और आज भी ये गाना सुनो तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए देखें हमारे साथी लोग क्या कहते हैं। वैसे जब बहुत सारे साथियों ने उनकी मुस्कान और आंखों के बारे में लिखा है, तो सच में साथियों, नूतन जी की मुस्कान में मासूमियत थी, उनकी अदाकारी में गहराई थी, सादगी उनका आभूषण थी और प्रतिभा उनकी असली पहचान थी। और वो सिर्फ पर्दे का सितारा नहीं थी, बल्कि वो हैं भारतीय सिनेमा की अमर विरासत। चलिए देखते हैं हमारे साथी क्या लिख रहे हैं कि बंदनी सौदागर, मेरी जंग, कर्मा, मैं तुलसी तेरे आंगन की और सुजाता, मिलन और बहुत सारी फिल्में हैं जो हमारी पसंद की हैं। आगे दूसरे साथी ने लिखा है कि नूतन जी की बंदनी, अनाड़ी और सौदागर तीनों फिल्मों में उनका काम बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन काम लाजवाब है। उनकी मुस्कुराहट दिल को मोह लेती है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात। तो दूसरे साथी लिख रहे हैं फिल्म सीमा, बंदनी, सुजाता, सौदागर, मैं तुलसी तेरे आंगन की यादगार फिल्म है। वैसे बचपन में दिल्ली का ठग देखने में भी बहुत अच्छी लगती थी, उसके एक गाने के लिए। वो गाना कौन सा है जरा ये तो बता दीजिएगा। और दूसरे साथी लिखते हैं कि मैं नूतन जी के सब फिल्में तो मैंने देखी नहीं है, मुझे नूतन जी अभिनीत बंदनी और सौदागर फिल्म में उनका अभिनय बहुत अच्छा लगा। तो वहीं वैसे दूसरे साथी ने लिखा है कि नूतन जी की 1973 की सौदागर फिल्म बहुत अच्छी लगती है, बहुत पसंद है, जो नरेंद्र नाथ मित्रा की बंगाली कहानी रस पर आधारित है। ये फिल्म कल्ट क्लासिक साबित हुई। रविंद्र जैन का जादुई संगीत बेहद शानदार, गीत है तेरा मेरा साथ रहे में भी शामिल हो। इंतजार कीजिए ना। एक कमेंट में लिखते हैं कि नूतन जी उन दुर्लभ अभिनेत्रियों में से थीं जिन्होंने ये साबित किया कि एक महान कलाकार को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए चिल्लाने या तेज संवादों की आवश्यकता नहीं होती। सीमा, सुजाता और तेरे घर के सामने जैसी फिल्मों में उन्होंने जो रेंज दिखाई वो आश्चर्यजनक थी। बिल्कुल करेक्ट आपने लिखा है ये बात। और दूसरे साथी लिखते हैं कि नूतन जी बहुत सुंदर अभिनय करती थी। उनकी कुछ फिल्में जो हमें पसंद हैं, सरस्वती चंद्र, बंदिनी, सुजाता, सीमा वगैरह वगैरह। एक कमेंट में सुजाता फिल्म के लिए लिखा है कि ये फिल्म समाज में फैली छुआछूत और जातिवाद जैसी गंभीर रूढ़ियों पर चोट करती है। नूतन ने इसमें एक अछूत लड़की सुजाता की मुख्य भूमिका निभाई थी। विशेषतः नूतन के अभिनय की सादगी और उनके द्वारा झेले गए सामाजिक दर्द को दर्शकों ने बेहद करीब से महसूस किया। समीक्षकों के अनुसार इस फिल्म ने नूतन को एक गंभीर और संजीदा अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया। और दूसरे साथी ने लिखा है कि आज का सुरीला सफर संजीदा अभिनेत्री नूतन जी के जन्मदिन पर उन्हीं को समर्पित है। ये जानकर अच्छा लगा, शोभना समर्थ की बेटी ने अपने अभिनय से मां का नाम ही नहीं ऊंचा किया। उन्होंने जिन भी फिल्मों में अभिनय किया, एक आदर्श पत्नी, बहन, प्रेमिका, मां के रूप में जो स्थान पाया वो किसी अभिनेत्री को आज तक नहीं मिला। बंदनी फिल्म के लिए लिखा है कि 1963 की बंदनी बिमल रॉय के निर्देशन में बनी इस फिल्म को भारतीय सिनेमा के मील का पत्थर माना जाता है। इसमें उनके सशक्त अभिनय के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था।

एक साथी ने अंग्रेजी में कमेंट हमें लिख भेजा है, नमस्कार करते हुए, गुड आफ्टरनून करते हुए कि सुरीला सफर के लिए कि टुडेज द टेक्स्ट इज नाइस एंड इंडिकेट्स मेनी इंटरेस्टिंग सॉन्ग्स दैट विल बी द कंपेनियन ऑफ लिसनर्स इन सुरीला सफर फ्रॉम बंदिनी छलिया सुजाता सौदागर अनाड़ी सरस्वती चंद्र खानदान पेइंग गेस्ट टू तेरे घर के सामने ओनली नूतन जी एंड नूतन जी एक्सीलेंट स्पॉन्टेनियस ब्यूटिफुल एक्ट्रेस ऑल द बेस्ट।

अच्छी शैली से दर्शकों का दिल जीता। और लिखा है आगे दूसरे साथी ने कि आज सुरीले सफर में होंगी वो बहुत खूबसूरत मगर सांवली सी बहुत खूबसूरत नूतन जी, जितनी हमारे बीच की सामान्य सी लड़की वहीं बेहद स्मार्ट नायिका छलिया अनाड़ी में एक से बढ़कर एक गीत सुनने को मिलेंगे। बहुत ही खास होगा आप सभी के साथ नूतन जी की बातें और खानदान का वो खूबसूरत गीत तुम्हें मेरी मंजिल फूल तुम्हें भेजा है। ढेर सारे गाने इन्होंने लिखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। और अब जो बातें चल रही हैं और इसमें जिक्र आ चुका है फिल्म सुजाता का, जो कि सभी साथियों ने लिखा है, तो फिल्म सुजाता का वो गीत जिसका आप सबको है इंतजार और मुझे लगता है कि ये गाना निश्चित रूप से आप सभी की लिस्ट में जरूर होगा। बताइएगा जरा कि इस गाने में इनके साथ कौन है।

एक कमेंट में लिखते हैं कि आज के सुरीला सफर की हम सफर बन रही हैं अपने जमाने के दिग्गज अभिनेत्री और गायिका नूतन, जिनका आज जन्मदिन है, उन्हें मैं पुष्पांजलि अर्पित करता हूं। आज के इस कार्यक्रम के सारे गीत उन्हीं की फिल्मों से होंगे और उनके नाम की इबारत में बड़ी खूबसूरती के साथ शामिल किए गए। नूतन हिंदी सिनेमा की एक दिग्गज और बहुमुखी कलाकार थी, जिन्होंने अपनी सादगी, सशक्त अभिनय और

सुजाता फिल्म का ये गाना जलते हैं जिसके लिए। इस गाने को जितनी बार चाहो रेडियो पर सुनो या पर्दे पर देखो बहुत कम लगता है। कितना

सहज है ये गाना, और अभिनेता अभिनेत्री कितनी सहज अभिनय इसमें इन दोनों कर बैठे हैं। जैसा कि हमने पूछा था आपसे कि इस गाने में अभिनेता कौन है, तो हमारे सभी साथियों ने इसका बिल्कुल सटीक आंसर दिया। साथियों ने लिखा है कि सुनील दत्त टेलीफोन पर यह गाना उन पर फिल्माया गया है, और इस गाने में नूतन भी टेलीफोन पर ही हैं जो सुनील दत्त के दिल की बातें सुन रही हैं। हमारे एक साथी ने लिखा है कि फिल्म खानदान का तुम ही मेरी मंदिर तुम ही मेरी पूजा ये गाना जो है बहुत से संगीत कार्यक्रमों में गाया है मैंने, और एक प्रतियोगिता में इस गाने के लिए पुरस्कार भी जीता है। वाह भाई क्या बात है, तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। तो आगे एक हमारी सखी लिखती हैं कि बंदिनी सुजाता और सीमा, आगे लिखा है कि नूतन जी की किसी एक फिल्म को चुनना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। मैंने मेरी सबसे ज़्यादातर तीन फिल्मों का अलग अलग फिल्मों के बारे में जो इन्होंने लिखा है, ये फिल्में इन्हें बहुत पसंद है। एक कमेंट है जिन्होंने लिखा है कि मैंने रेडियो थोड़ा देर से चालू किया और जैसे ही चालू किया मोरा गोरा रंग गाना आया, मन खुशी से झूम उठा। मुझे लगा शायद ये गाना बच चुका है। मैं जब छोटी थी दूरदर्शन पर सुजाता पिक्चर देखी, हर पिक्चर देखकर मन रो देता था। हमेशा अपने ऊपर होने वाले अन्याय के लिए चुपचाप सहती रहती नूतन जी। वैसे तो हमारी मम्मी के ज़माने की हीरोइन थी, लेकिन जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो जो सीधी और शांत सहेलियाँ रहती थी उनको हम सब कहते थे ये नूतन है और बाकी सब तनुजा। तो बताइएगा जरा कि नूतन जी और तनुजा जी में रिश्ता क्या है। एक साथी ने लिखा है कि फिल्म सुजाता का गाना हमने सुना, सुनील दत्त साहब टेलीफोन पर नूतन जी को अपने दिल की बात कह रहे हैं, आवाज तलत महमूद साहब की है। और एक ने लिखा है कि फिल्म सुजाता में सुनील दत्त जी हैं और बहुत अच्छा फिल्म अंकन है ये। दूसरे साथी लिखते हैं कि श्वेत श्याम फिल्मों का दौर भारतीय सिनेमा का स्वर्णिम अध्याय था, जहां अभिनेत्री नूतन ने अपने स्वाभाविक अभिनय से दर्शकों के दिलों में एक खास स्थान बनाया। इन्हीं स्मृतियों में सुजाता का भोला चेहरा, गहरी आंखें और मासूम अदाएं जीवंत होती हैं। कहीं वो बंदिनी है, कहीं अनाड़ी की नायिका, तो कहीं प्रेम और विरह के गीतों में डूबी एक संवेदनशील स्त्री। उनकी फिल्मों में के अनेक गीतों को के साथ प्रेम, प्रतीक्षा तथा सपनों से भरे इस अमर श्वेत श्याम गीत को आज भी जब रेडियो पर सुनते हैं, एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, तब श्वेत श्याम दौर की फिल्में और गाने सुनहरी यादें बनकर मन को छू जाते हैं। एक साथ ही लिखते हैं कि आज की भारत में शब्द ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, उस शख्सियत की फिल्मों से गीत ढूंढना है जिनका नाम नूतन है। आज उनका जन्म स्मृति दिन है, उस छबीली अभिनेत्री को विनम्र नमन करते हैं। उनके द्वारा निभाए गए हर किरदार में नूतनता भरी होती थी, क्योंकि नूतन एक अभिनेत्री ही नहीं भावनाओं की सशक्त अभिव्यक्ति थी। हर कोई एक कार्य की सीमा होती है, लेकिन उनके द्वारा निभाए गए किरदारों की कोई सीमा नहीं होती, चाहे वो कन्हैया अनाड़ी या छलिया राज कपूर के साथ हो, या सौदागर अमिताभ बच्चन के साथ हो, या धर्मेंद्र के साथ अनेक रात की बनकर चुनरिया रंग ली हो, या हैंडीकैप सुनील दत्त की पत्नी राधा बनकर उनकी सेवा करते हुए खानदान का नाम रोशन किया हो, या पेइंग गेस्ट देवानंद को तेरे घर के सामने घर बनाने और दुनिया बसाने की हामी भरती हो, उस छोटी सी गुड़िया की कहानी का सुनने का इंतजार रहेगा। और इन्होंने अपना उनको विनम्र नमन भेजा है। तो चलिए, जब अनाड़ी फिल्म का भी जिक्र आ चुका है राज कपूर जी के साथ, तो अब हम अनाड़ी फिल्म के गाने की ओर बढ़ते हैं। आपको ये बताना है कि ये गाना जैसे ही शुरू होता है तो नायिका कौन सा वाद्य बजा रही हैं।

तेरा जाना, दिल के अरमानों का लुट जाना, अनाड़ी फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज और फिल्म आया गया नूतन जी पर। जैसा कि हमने पूछा था कि इस गाने में जैसे ही शुरुआत होती है तो नायिका कौन सा वाद्य बजा रही हैं, तो हमारे सभी साथी लिखते हैं कि पियानो बजा रही हैं अभिनेत्री, तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना। और हमने ये भी पूछा था कि नूतन जी और तनुजा जी में आपस में क्या रिश्ता है, तो उसको लेकर भी बहुत सारे हमारे पास कमेंट्स आए हैं। उससे पहले हम नूतन जी की फिल्मों से लेकर एक याद साझा की है हमारे एक साथी ने कि एक घर बनाऊंगा जी, मैं बताना चाहूंगा कि शादी से पहले मैंने होने वाली धर्म अपनी धर्मपत्नी के घर के सामने तो घर नहीं बनाया, लेकिन एक बड़ा घर बनाया उनके घर के सामने वाली सड़क पर, और अजमेर की उसी कॉलोनी में फिर ब्याह कर अपनी धर्मपत्नी को उसी घर में स्वागत किया। एक ये प्यारी सी याद इनकी बड़ी ही मीठी सी रही, बहुत अच्छी लगी। और वहीं जहां पर हमने पूछा था कि नूतन जी और तनुजा जी का रिश्ता, तो लिखते हैं साथी कि नूतन और तनुजा आपस में सगी बहनें हैं, लेकिन दोनों का फेस बिल्कुल नहीं मिलता। तो दूसरे साथी ने लिखा है कि नूतन की छोटी बहन है तनुजा, दोनों शोभना समर्थ जी की बेटियां हैं जो स्वयं अपने दौर में नायिका रही हैं। फिल्म सुजाता के लिए लिखते हैं कि ये सदाबहार गीत जलते हैं जिसके लिए तलत महमूद की मखमली आवाज में गाए गए, मजरू सुल्तानपुरी के सबसे खूबसूरत रोमांटिक गीतों में से एक है, एस डी बर्मन के संगीत और सुनील दत्त के फोन पर अभिनय से मधुर बनाया है इसे। और एक साथी ने कुछ अपनी यादें साझा की हैं कि नूतन बुआ जी की तो सभी फिल्में देखी हैं, पर अब आप लोग कहेंगे कि इसकी बुआ कैसी, तो बताती हूँ, जब हम ठाणे में थे और बाबा पिताजी के दोस्त पर्सनल सेक्रेटरी थे नूतन बुआ जी के, तब वो मुमरा में रहा करती थी, बाबा को बालू चाचा ने एक बार नूतन बुआ जी के घर में ले गए थे, तो वो बाबा की वो अनमोल याद मिली जो बहुत कम लोगों को मिलती है। तब नूतन जी ने खाना खुद बनाया और इन दोनों को खिलाया, बहुत सिंपल सा, और नूतन बुआ मराठी में बहुत सुंदर बातचीत करते हुए खुद को परोसा, गेट तक छोड़ने आई और मराठी में कहा, ये तरहा भाऊ कधी कधी वेल मिलाला तर बालू दादा सोबत। बाबा नतमस्तक हो गए कि इतनी बड़ी हीरोइन खुद खाना बनाती है, परोसती है, ऊपर से गेट तक आती है, भाव कह के ऐसी हीरोइन कहीं नहीं मिलेगी। बहुत यादगार बात है। नूतन जी के लिए कुछ और हमारे पास कमेंट्स हैं, लिखते हैं कि नूतन हिंदी फिल्म जगत की एक नामचीन अदाकारा रही हैं, उनके अभिनय का लोहा हर किसी

ने माना है। गूगल ने हिंदी सिनेमा की इस दिग्गज अभिनेत्री को उनके 81वें जन्मदिन पर एक विशेष गूगल डूडल के माध्यम से याद किया था। उनकी बेजोड़ अभिनय क्षमता को श्रद्धांजलि देते हुए डूडल में उनके निभाए गए सबसे प्रतिष्ठित किरदारों के भावों को दर्शाया गया। नूतन की बहुमुखी प्रतिभा को केवल एक चित्र में समेटना मुश्किल था, इसलिए डूडल में उनके चेहरे के 4 अलग अलग भावों को चित्रित किया गया था। ये भाव बंदिनी की संघर्षरत कल्याणी, सुजाता की व्यथित और सीमा की एक उपद्रवी अनाथ लड़की के रूप में उनके उत्कृष्ट अभिनय को दर्शाते हैं। नूतन की एक विशिष्ट अभिनय शैली थी जिसमें वे चेहरे की न्यूनतम भाव भंगिमाओं और आवाज के मॉड्यूलेशन से गहरा भाव प्रवण अभिनय किया करती थी। बिल्कुल, और इस गाने में भी जो अब आप सुनेंगे उनका जो आंखों का और जो फेशियल एक्सप्रेशन हैं वो भी कुछ कम तो नहीं है। अब आपको ये बताना है कि इस गाने में उनके नायक कौन है, और हमारे मुझे ऐसा लगता है कि ये गाने का भी इंतज़ार आप सबको है। वैसे आप सब अपनी अपनी लिस्ट के गाने नोट कर रहे हैं ना, हम तक भेजिए ज़रूर कि आपके अब तक कितने गाने टिक हो चुके हैं।

सौदागर फिल्म का ये गाना था और हमारे सभी साथियों ने लिखा कि इस गाने में नायक थे अमिताभ बच्चन। एक साथी लिखते हैं कि रविंद्र जैन जी का जादुई संगीत, तो वहीं दूसरे साथी ने लिखा कि वह बेहतरीन मधुर और भावपूर्ण गीत। बेचारी का इस गाने के बाद अमिताभ द्वारा तलाक देना दर्शकों को झकझोर गया था। दूसरे साथी ने लिखा है कि विविध भारती के लिए भी हम यही कह रहे हैं कि तेरा मेरा साथ रहे, दिन हो के रात सदा बना रहे ये साथ। तो दूसरे साथी ने लिखा कि भाई मेरा तो पांचवा गीत हीरो अमिताभ बच्चन रहे एक फिल्म नूतन जी के साथ, इनका पांचवा गीत शामिल हुआ। और दूसरे साथी ने लिखा कि फिल्म अनाड़ी नूतन पियानो बजा रही है, मेरा वाला गाना आ गया। और दूसरे साथी ने लिखा है कि वो पियानो बजा रही है, वैसे गाने में बांसुरी का भी खूबसूरत प्रयोग किया गया है, अनाड़ी तेरा जाना हाई पिच पर विशेष गायकी। तो दूसरे साथी ने लिखा कि मेरी लिस्ट का तीसरा गीत भी शामिल हो चुका है। और एक साथी लिखते हैं कि गुड आफ्टरनून, आज प्रोग्राम सुनने के लिए बहुत लेट हो गई, मेरी तबीयत कुछ ख़राब है और ये अभी हॉस्पिटल से आई हैं, तो जैसे ही आपकी आवाज़ सुनी प्रोग्राम नूतन जी पर है उनके जन्मदिन पर उन्हें नमन करते हैं और उनके बारे में क्या कहें, उनकी फिल्मों में से कोई एक फिल्म चुननी बहुत मुश्किल है, मुझे तो उनकी सारी फिल्में बहुत पसंद हैं, उनकी बंदनी सीमा ये दोनों फिल्में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और अब वक्त हो चला है कि आज के इस कार्यक्रम का आखिरी मोस्ट अवेटेड सॉन्ग आप सबकी नजर।

एक साथ ही लिखते हैं कि आज महान अभिनेत्री न्यूटन जी को श्रद्धांजलि स्वरूप सुरीला सफर में सम्मान दिया जा रहा है। बेहद पसंद आया ये आपका जेस्चर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

आप सभी एक दूसरे को बधाई देते हुए हमारे एक साथी लिखते हैं कि अनेक साथियों के कमेंट शामिल हुए, उन सभी को बधाई और इन्हें प्रस्तुति अच्छी लगी। दूसरे साथी ने लिखा, शानदार लाजवाब सफर रहा आपके साथ, गति में और संगीत में कार्यक्रम का धन्यवाद, प्रश्नों ने बांधे रखा। तो अब साथियों वक्त हो चला है कि आपसे ले लें इजाजत। तो आप सभी का दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, विविध भारती के इस कार्यक्रम सुरीला सफर को सुरीला और खूबसूरत बनाने के लिए। मैं मिलूंगी आपसे कुछ देर बाद, फिलहाल आप जुड़े रहिए, सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

श्रोताओं नमस्कार। आज की त्रिवेणी का विषय है मुलाकातें। दोस्तों, मुलाकातें क्यों जरूरी होती हैं? इंसान एक सामाजिक प्राणी है। हमारे विचार, भावनाएं और पहचान दूसरों के साथ संबंधों से आकार लेती हैं। जब हम किसी से मिलते हैं तो सिर्फ बातें नहीं होती, हाव भाव, आंखों का संपर्क, आवाज का उतार चढ़ाव, वे सब मिलकर सच्चा जुड़ाव बनाते हैं। यही वजह है कि आमने सामने की मुलाकातें रिश्तों में जान डालती हैं। मिलने जुलने से रिश्तों में मिठास आती है। इन मुलाकातों का असर मस्तिष्क पर गहरी छाप छोड़ देता है।

खबर। दोस्तों, मुलाकातें हमें सुना हुआ और समझा हुआ महसूस कराती हैं। दुख बांटने से हल्का लगता है और खुशी बांटने से बढ़ती है। अकेलेपन में इंसान अपने ही विचारों में उलझ सकता है। लोगों से मिलना उस घेरे को तोड़ता है और मन को संतुलन और सुकून देता है। हम एक दूसरे से बात किए बिना रह नहीं सकते। कितनी परेशानियों का हल किसी न किसी के साथ होने से, बात होने से चुटकियों में दूर चली जाती है। एक छोटी सी मुलाकात जिंदगी की तमाम समस्याओं से लड़ने की हिम्मत दे जाती है, जिसमें सही राय और विचारों के आदान प्रदान में स्पष्टता और सच्चाई हो।

दोस्तों, हर व्यक्ति की एक अलग कहानी होती है। उनसे मिलने जुलने से हमारी सोच व्यापक होती है, पूर्वाग्रह कम होते हैं और सहानुभूति बढ़ती है। हम दूसरों की गलतियों और सफलताओं दोनों से सीखते हैं, जो किताबों से हमेशा नहीं मिल पाती। रिश्ते अपने आप मजबूत नहीं रहते, उन्हें समय और मौजूदगी चाहिए। साथ बैठना, चाय पीना, खामोशी साझा करना, ये छोटे पल भरोसा बनाते हैं। मुश्किल वक्त में वही रिश्ते काम आते हैं जिनमें नियमित मुलाकातें होती रहती हों। अच्छी मुलाकातें यादें बनाती हैं, सालों बाद भी वही हंसी, वही बातचीत दिल को गर्म रखती है। जिंदगी सिर्फ कामों की सूची नहीं, बल्कि साझा अनुभवों का संग्रह है, और मुलाकातें ही उन्हें जन्म देती हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता, ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलांग में जारी। पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा। दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का निधन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में एकजुट। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित किया। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून शुरू और पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप अहमदाबाद में शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ व्यापक चर्चा की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा, ऑटोमोबाइल आदि क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते तलाशे। मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने तथा वैश्विक दक्षिण के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। इससे पहले सुश्री रोड्रिगेज ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़े कई स्थलों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं का जायजा लेना तथा सहयोग के अवसरों का पता लगाना है। भारत ऊर्जा और निवेश के क्षेत्रों में वेनेजुएला का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगी। वे 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। उत्तर पूर्वी परिषद NEC का 73वां पूर्ण सत्र मेघालय के शिलंग में चल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक है। बैठक में पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे के विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर

0: चर्चा हो रही है। बैठक में क्षेत्रीय विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए गठित मुख्यमंत्री उच्च स्तरीय कार्यबलों द्वारा की गई प्रगति पर चर्चा प्रमुखता से शामिल है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने कहा कि इन विचार विमर्शों से राज्यों और हितधारकों के बीच समन्वित कार्रवाई को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे साझा विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री श्रीकांतो मजूमदार, गृह सचिव गोविंद मोहन और मंत्रालय के सचिव संजय जाजू उपस्थित हैं। इसके अलावा मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड तथा सिक्किम के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बैठक को महत्वपूर्ण बताया।
1: ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है नॉर्थ ईस्ट के लिए। इसके द्वारा है बहुत सारे स्कीम के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर डिसाइड होता है। और 2014 के बाद तो नॉर्थ ईस्ट का जो भी फंड है, डेवलपमेंट फंड है, इसके द्वारा बहुत सारे योजना शुरू हो चुका है, काम हो रहा है।
0: उत्तर पूर्वी परिषद पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सर्वोच्च क्षेत्रीय योजना निकाय के रूप में कार्य करती है। ये क्षेत्र में समन्वित विकास को बढ़ावा देने और सहकारी संघवाद को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने कहा है कि वैश्विक व्यवधानों और आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत वैश्विक बाजार में अन्य देशों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। श्री प्रसाद ने नई दिल्ली में ग्लोबल बिजनेस रिसर्च कॉन्फ्रेंस GBRC के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने हाल ही में कई देशों के साथ सम्पन्न हुए मुक्त व्यापार समझौतों की सराहना भी की। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा आयोजित GBRC का उद्देश्य वैश्विक व्यापार से जुड़े विषयों और चुनौतियों पर शोध के लिए चर्चा का अवसर प्रदान करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात पुलिस ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन डेल्टा हंट की शुरुआत की है। इसके तहत पिछले 24 वर्षों में गुजरात में अवैध रूप से रह रहे 424 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 782 से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ जारी है। ये अभियान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ शुरू किया गया था। गांधीनगर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री और गृहमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले प्रत्येक घुसपैठिए का पता लगाया जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें बांग्लादेश वापस भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासियों को आश्रय, रोजगार या सहायता प्रदान करके कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
2: 6,200 से ज्यादा लोगों की तहकीकात की जा रही है, इनमें से 362 लोग अभी तक बांग्लादेशी पाए गए हैं। साथ ही जिन लोगों ने उनको रहने के लिए घर दिया होगा और जिन्होंने उनको नौकरी दी है लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे होंगे, उन पे भी एक कड़े कदम उठाने के लिए एक पूरी टीम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। गुजरात पुलिस घर घर और गांव गांव तक ये तहकीकात चालू रखेगी।
0: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए हैं। ये घटना कल रात ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में हुई। गंभीर मरीजों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। मुजफ्फरपुर के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना की जांच जारी है।
3: ICU 14 फ्लोर पर है, उसी में आग लगने की बात है, शॉर्ट सर्किट से। कुल 13 से 15 लोग भर्ती थे, लेकिन 3 लोगों की मृत्यु कंफर्म है, बाकी लोग अन्य जगह भेजा गया अलग अलग अस्पताल में इलाज के लिए। तो मृत्यु का आंकड़ा बढ़ सकता है हालांकि, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, हम लोग जाँच कर रहे हैं।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मालवीय नगर अग्निकांड के घायलों से मिलने आज साकेत के निजी अस्पताल पहुंची। मुख्यमंत्री ने घायलों तथा उनके परिजनों से बातचीत की और अधिकारियों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। श्रीमती गुप्ता ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 10-10 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायलों को 5-5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि घायलों के चिकित्सा खर्च की व्यवस्था की जाएगी। मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मृत्यु हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। वयोवृद्ध

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीबीएफसी के पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहलानी का आज मुंबई में निधन हो गया। वे 76 वर्ष के थे। 10 जनवरी 1950 को जन्मे निहलानी ने 1982 में आई फिल्म हथकड़ी से निर्माता के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। उन्हें 1986 में आई फिल्म इल्जाम से अभिनेता गोविंदा को पहला बड़ा ब्रेक देने का श्रेय दिया जाता है। जनवरी 2015 में निहलानी को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सख्त नए दिशा निर्देश लागू किए।

0: दिया जाता है। जनवरी 2015 में निहलानी को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सख्त नए दिशा निर्देश लागू किए, जिनके तहत ए रेटिंग वाली फिल्मों में भी कुछ अपशब्दों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने या हिंसा दर्शाने वाली सामग्री को सीमित करने का प्रयास किया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ आगे की सैन्य कार्रवाई से रोकने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। ये चौथी बार है जब प्रतिनिधि सभा ने ट्रंप की युद्ध संबंधी शक्तियों को सीमित करने की कोशिश की है। आलोचकों का कहना है कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को अमरीकी संसद की मंजूरी मौसम विभाग ने आज केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन की पुष्टि की है। मॉनसून 3 दिन देर से आया है। 1 जून से केरलम में मॉनसून के आने की संभावना थी। विभाग ने 9 जून तक केरलम और माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में तेज बारिश हो रही है।
1: केरलम के 6 जिलों में आज कुछ जगहों पर तेज बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो रही है और आज केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के पहुंचने की संभावना है। केरलम में कई जगहों पर रात से अब तक लगभग 5 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। केरलम से स्मिथ एम पलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के दौरान उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराकल में भी भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों के दौरान लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी इसी तरह की स्थिति का अनुमान व्यक्त किया है। दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर आंधी की प्रबल संभावना है। गुजरात के अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के पहले संस्करण का शुभारंभ हुआ, जो वैश्विक खेलों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को इस भव्य आयोजन में वर्चुअल रूप से शामिल होकर अपनी शुभकामनाएं देंगे। पूरे विश्व से योग प्रेमी और एथलीट प्रतियोगिता के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि चैंपियनशिप का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिताओं को योग में शामिल करना है।
2: वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: इस बीच प्रधानमंत्री ने देशवासियों से नियमित रूप से योग करने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए उन्होंने कहा कि योग के नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर संतुलित, स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन जिया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और लाओस के बीच गहरे सभ्यतागत संबंध हैं और ये बौद्ध धर्म तथा रामायण की साझा विरासत में दिखाई देते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में लाओस के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री थोंग सावन फोम विहाने से भेंट की। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि इस वर्ष दोनों देश राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जो द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में आज गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 149 अंक गिरकर 74,197 पर, जबकि निफ्टी 34 अंक फिसलकर 23,372 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता। ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलांग में जारी। पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे

कार्य का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा। दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का निधन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में एकजुट। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित किया। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून शुरू और अहमदाबाद में पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। विविध भारती पर हमले कर हाजिर जमाने के कुछ सदाबहार नगमे।

0: दिल ने फिर याद किया फिल्म का ये दो गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और आशा भोसले के युगल स्वर, जीएल रावल के बोल थे सोनी कोमी का संगीत। रोशन के संगीत से सजा होगा अगला गाना, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
2: मैं और मेरी तन्हाई,
1: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: चलिए साथियों, अब सुना जाए रोशन के संगीत से सजा और साहिद लुधियानवी का लिखा गाना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। क्या कहता है ये गाना, दिल ही तो है।

मिलन फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर के स्वर में। आनंद बख्शी के बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। अब आपको सुनवाते हैं नौशाद की तर्ज पर शकील बदायूनी के बोल, लता मंगेशकर की आवाज़, फिल्म का नाम शबाब।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: ये रातें, ये मौसम।

आशा भोसले और किशोर कुमार के युगल स्वर दिल्ली का ठग फिल्म के इस गाने में आप सुन रहे थे। SH बिहारी के बोलों को सुरों में ढाला था संगीतकार रवि ने। सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। साथियों, इन सदाबहार नगमों की सुंदरता, इनका सौंदर्य, इनका हुस्न कल भी तरोताज़ा था, खूबसूरत था, आज भी है और हमेशा रहेगा। चलिए अब आज के इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश की ओर बढ़ा जाएं। शंकर जयकिशन की तर्ज पर शैलेंद्र की रचना है, लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों के स्वर। क्या कहता है कन्हैया फिल्म का ये गाना, चलिए सुनते हैं साथ साथ।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। सोनाली जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी आपको और सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। और ममता जी क्या बात है, आप थोड़ी बुझी बुझी सी, थोड़ी सी खामोश सी, थोड़ी सी नाराज सी नजर आ रही है।
1: अब कहाँ नाराज तो बिल्कुल थी नहीं पहले भी, लेकिन जो बुझा बुझा चेहरा आपको लगा और आपके हाथों का स्पर्श मिला तो उदासी तो मेरी चली गई वैसे ही। और जिंदगी में क्या होता है कि थोड़ा गम थोड़ी खुशी सबको मिलती है, कई बार हम यूं ही बेवजह चुपचाप बैठ जाते हैं तो लोग उसको उदासी समझते हैं। तो ऐसे ही कुछ आपके साथ हुआ, तो आपने जब स्पर्श किया और हाथ मिलाया मुझसे और कहा कि क्या बात है, क्यों थोड़ी सी उदास लग रही, बस मैं मुस्कुरा उठी
2: और वो छू मंतर हो गया सारा दर्द। क्योंकि देखिए ना, हर किसी की जीवन में थोड़ी ना थोड़ी परेशानी होती है, और हम ऐसे है ना कि अगर हमारे मन से थोड़ा भी अलग हुआ ना तो हम भी परेशान हो उठते हैं। भले ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा परेशानियां होती है, पर हम उसे बहुत ज्यादा मान भी लेते हैं कि अरे ऐसे क्यों हो गया मेरे साथ में।
1: बिल्कुल,
2: तो हर किसी के साथ ऐसा होता है, और उम्र बढ़ने के साथ साथ तो होता ही है कि थोड़ी सी तबीयत नासाज हो गई तो परेशान हो जाते हैं,
1: किसी ने कुछ कह दिया
2: किया तो नाराज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे में हमारी जो घर की दादी माँ, नानी माँ या फिर पिताजी माँ, जिनसे हमारा स्पर्श कम होते जाता, उनका हाथ में हाथ थाम लिया और बस उनको एक झप्पी दे दी, प्यार भाई गले से लगा लिया, तो वे खुश हो जाते हैं।
1: बिल्कुल सही बात है। तो जो उदास बैठा है उसके पास जाकर एक जादू की झप्पी दे दे और प्यार से उसके कंधे पर उसके सिर पर हाथ रखे कि चलो सब ठीक हो जाएगा। भले ही आपको कारण पता हो ना हो, लेकिन इतने से कोई बहुत बड़ा दुख या अवसाद होता है तो दूर हो जाता है। और कई बार ये घटनाएं भी इससे घटित होती हैं कि लोग दुनिया अपनी जिंदगी से अपने हालात से बहुत परेशान हाल होते हैं और वो कोई बड़ा कदम आत्महत्या जैसे कर रहे हों तो भी वो वक्त टल जाता है। और ये कहा जाता है कि आत्महत्या का बस कुछ लम्हा होता है, वो लम्हा अगर कुछ सेकंड टल गया तो वो टल गया, फिर उसके बाद मन ठीक हो जाता है। तो इसलिए जब भी कोई

0: उदास चेहरा दिखाई पड़े तो बस उसके सिर पर हाथ रखे, एक स्पर्श से किसी की उदासी, किसी की नाराजगी, किसी का दुख दूर हो जाता है।
1: और साथ में आज हम कहानी पद्मश्री की इस सेगमेंट के अंतर्गत दुलारी देवी, जो मधुबनी पेंटिंग के लिए जानी जाती है, उन्होंने मधुबनी पेंटिंग इस क्षेत्र में बहुत नाम कमाया है, तो उनके बारे में भी हम जानकारी देंगे। और साथ ही मुझे कुछ कहना है तो इसमें गर्मी की छुट्टियों में आम खाने का आनंद,
0: बिल्कुल,
1: यानी बचपन याद आ गया, नॉस्टैल्जिया हो गया ना,
0: मतलब आम के बाग में जाकर वो ढेला जो होता था, पत्थर कंकड़, उससे फेंका और आम जो टूटता था और उस आम को लेने की पकड़ने की होड़ होती थी, कई लोग झुंड होता था बच्चों का, तो वो झुंड दौड़ता था कि हम लेंगे हम लेंगे, और उसमें जो आनंद था वो तो जो इकट्ठा आम मिल जाए, और अब जो आम मैंगो शेक बना के पीने का आनंद है, या फिर पेटी में जो आम आता है जिसे आप खोलते हैं, वो आनंद कहाँ है।
1: वो जो आनंद था उसकी तुलना ही नहीं हो सकती, भले उसमें पंछी ने भी अगर उसमें थोड़ा सा
0: खासतौर से खा लिया
1: तो भी हम उसे धोखे खा लेते थे।
0: तो कहा जाता है कि तोते ने अगर जूठा किया है तो वो मीठा
1: और भी मीठा होगा
0: और वो देसी आम तरह तरह के आम। तो हम अपने श्रोताओं से जानना चाहते हैं कि वो आम खाने का क्या सुख था वो बचपन वाला, और साथ में किस तरह के आम आपने खाए हैं, कौन कौन सी प्रजाति होती है आम की,
1: आपके क्षेत्र में कौन सी प्रजातियां होती है,
0: लिख भेजें।
1: हाँ, और साथ ही उपयोगी टिप्स, यानी आम खा लिया, बहुत सारा आम खा लिया और व्यायाम नहीं किया तो वजन तो बढ़ ही जाएगा, तो वजन कैसे घटाए इस विषय पर भी हम बातचीत करेंगे। और बहुत सारे श्रोताओं ने इस विषय पर कमेंट्स लिखना शुरू भी कर दिया है, तो आप कितना आम खाते हैं और वजन घटाने के लिए क्या करते हैं, इस बारे में हमें लिखकर
0: विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर टिप्पणी करें और कोई अपना अनुभव भी साझा कर सकते हैं आम खाने से जुड़ा हुआ। और ये जो हमने विषय दिया है, बढ़ती उम्र के साथ पीछे छूटता स्नेहिल स्पर्श, कि आज मोबाइल का जमाना है तो वो टाइम ही नहीं है लोगों के पास, पता ही नहीं चलता कि कमरे में बैठा हुआ कोई रो रहा है, लोग अपने मोबाइल में, अपने कंप्यूटर में, अपने काम में बिजी रहते हैं, बहुत देर बाद पता चलता है। तो ये जो ऐसा कोई अनुभव है, वाक्या है, तो आप जरूर साझा करें। और हम अब साझा करते हैं ये गीत।

0: मेहनत से अपने जीवन में सफलता के रंग भरे। दुलारी देवी कहती है कि मैंने जीवन में बहुत गरीबी देखी, मुझे पेंटिंग बनाना पसंद है और आज इसी के बदौलत उन्हें इज्जत और सम्मान मिल रहा है।
1: और आज जब हम कहीं किसी शॉप में कहीं शॉपिंग करने जाते हैं, कपड़ों की शॉपिंग खासतौर से, तो मधुबनी पेंटिंग ढूंढते हैं कि मधुबनी पेंटिंग वाली डिजाइन का कुर्ता हमें मिल जाए, ड्रेस मिल जाए, तो वो

0: और एक आम लड़की की तरह गरीब परिवार में हुई उनकी। परिवार में शिक्षा को लेकर बहुत कम जागरूकता थी और आर्थिक स्थिति कमजोर थी। वो कभी स्कूल नहीं गए इस वजह से। उनका परिवार मजदूरी करके जीवन बिताता था। दुलारी देवी बचपन से ही माँ के साथ काम पर जाती और घर में भाई बहनों की देखभाल करती थी और उनके पिता मछुआरे थे।
1: देखिए
0: तो वैवाहिक जीवन में भी बहुत सारी तकलीफें हुई उन्हें, इस कारण दुलारी देवी मायके वापस आ गई थी।
1: और मायके वापस आने के बाद उन्होंने मिथिला पेंटिंग की प्रख्यात कलाकार कर्पूरी देवी और महासुंदरी देवी के यहाँ झाड़ू पोछे का काम करना शुरू कर दिया।
0: जी कितनी अजीब बात है ना कि कितने छोटे काम करती थी और उसके बाद और कहाँ तक पहुँची।
1: और आगे चलकर यहीं से उन्होंने मधुबनी पेंटिंग बनाना भी सीखा। दुलारी देवी ने तकरीबन 25 साल तक कर्पूरी देवी के घर पर काम किया। दोनों मिथिला आर्ट्स आर्टिस्ट कर्पूरी देवी और महासुंदरी देवी को पेंटिंग बनाते देख दुलारी देवी को भी मैथिली पेंटिंग सीखने की चाहत हुई। और दुलारी देवी को मिथिला पेंटिंग का शौक तो था ही, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे रंग कागज और कपड़े खरीद पाती। इसी दौरान उनके लगन को देखते हुए कर्पूरी देवी ने उनकी मदद की और पेंटिंग की बारीकियाँ उन्हें सिखाई। और 1983 में प्रख्यात पेंटर गौरी मिश्रा ने महिलाओं को मिथिला पेंटिंग सिखाने और उनके काम को प्रमोट करने के लिए एक संस्था बनाई और कर्पूरी देवी की मदद से दुलारी देवी को वहाँ पर सीखने का मौका भी मिला।
0: और उनकी पहली पेंटिंग सिर्फ 5 रुपए में बिकी थी। सोचिए 5 रुपए, आज के जमाने में उसकी तो कोई कीमत ही नहीं है। उस समय भी इतनी 5 रुपए की बहुत ज्यादा कीमत नहीं थी। इस संस्था से जुड़ने के बाद उनकी कुछ पेंटिंग बिकने लगी। चूंकि बिहार का मधुबनी जिला मिथिला पेंटिंग के लिए पूरे विश्व में मशहूर है, इसलिए कई विदेशी लोग यहाँ के कलाकारों से मिलने और पेंटिंग खरीदने आते रहते हैं। पेंटिंग से जुड़ी अपनी पहली कमाई के बारे में वो बात करते हुए कहती हैं कि जापान से आए कुछ मेहमानों ने उनसे पेंटिंग वाले 7 पोस्टकार्ड्स खरीदे थे और एक कार्ड की कीमत 5 रुपए थी।
1: और जो फॉरेनर होते हैं, विदेशी लोग होते हैं, इन कलाओं को बहुत महत्व देते हैं और स्थानीय लोगों से जब चीजें खरीदते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है और उन्हें पैसा भी मिला होगा उससे। और गौरी मिश्रा की संस्था से जुड़कर उन्होंने 16 साल तक काम किया। वहीं अपने सबसे महंगी पेंटिंग के बारे में बात करते हुए कहती है कि मैंने अपनी एक पेंटिंग 3 लाख रुपए में बेची थी, जिसे बिहार सरकार ने खरीदा था। आज भी वो पेंटिंग पटना के बिहार म्यूजियम में लगी हुई है।
0: क्या बात है।
1: और दुलारी देवी को पढ़ना लिखना भी नहीं आता था, लेकिन कर्पूरी देवी ने उन्हें मधुबनी पेंटिंग के साथ साथ खुद का नाम लिखना भी सिखाया। कला के प्रति अपनी रुचि और मेहनत के दम पर दुलारी देवी ने आगे चलकर कई सारे अवार्ड जीते। और दुलारी देवी के पेंटिंग को इग्नू के लिए मैथिली में तैयार पाठ्यक्रम के होम पेज के लिए भी चुना गया था। कितनी कितनी गौरव की बात है।
0: बिल्कुल। और आज भी वो सुबह 4 बजे उठकर पेंटिंग बनाने का काम करती हैं और कहती हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में किया गया काम हमेशा अच्छा होता है, इसलिए वो जल्दी उठकर पेंटिंग बनाती हैं आज भी। साथ ही वो कोशिश करती हैं कि अपनी कला के माध्यम से लोक कथा और संस्कृति से लोगों को जोड़ सकें।
1: और पिछले 8 सालों से वे मिथिला आर्ट इंस्टीट्यूट में पेंटिंग सिखाने का काम भी कर रही है। इसके अलावा मिथिला पेंटिंग के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए उन्हें राज्य सरकार से भी मिथिला अस्मिता का सम्मान मिल चुका है।
0: और
1: पद्मश्री से नवाजे जाने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने बताया कि जब दाई जी यानी महासुंदरी देवी को पद्मश्री मिला था, तब मैंने पहली बार इस विशेष सम्मान के बारे में सुना था। आज अगर मेरी गुरु जीवित होती तो मुझे इस मिले सम्मान को देखकर बेहद खुश होती। तो सचमुच कितनी खुशी होती है ना ऐसी बात सुनकर।
0: बिल्कुल। और प्रेरणा की स्रोत है। तो अब एक गाना सुन लेते हैं और फिर बातें करते हैं।

0: तो सोनाली जी, के गाना हमने सखियों और सखाओं को सुनाया और बात कर रहे थे शुरुआत में स्पर्श की कि एक जरा से स्पर्श से आपका मन कितना हल्का हो जाता है। कई बार बहुत बड़ा हादसा टल जाता है सिर्फ स्पर्श से। तो पहले जो दादी नानी के आंचल का स्पर्श होता था वो एक वटवृक्ष की तरह था,
1: सचमुच
0: कि जैसे हम तपती धूप से निकल कर कहीं पेड़ की छांव में बैठ जाए, इतना सुकून मिलता था माँ और दादी नानी के आंचल तले, है ना। लेकिन अब वो सब खत्म होता जा रहा है, वो जैसे समय ही खत्म हो गया, अब वक्त ही नहीं है। अब परिवार में जितने सदस्य हैं सब लोग वर्किंग होते हैं अमूमन, और फटाफट तैयार होकर बाहर जाने की हड़बड़ी होती है, होड़ होती है, तो कहाँ वक्त रह गया। लेकिन इसी में, इसी भागदौड़ की जिंदगी में थोड़ा सा समय निकालें

0: एक साथ परिवार के साथ बैठे थोड़ा टच थेरेपी का इस्तेमाल करें।
1: और हम लोग है ना, हम लोग भारतीय, खासकर हम लोग ना बस हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ते चरण स्पर्श में भी ना हम लोग ऐसे पैर को छूते नहीं है, बस जमीन में ऐसा झुक गए और जमीन में बस ऐसे आप घुटने तक ही कर दिया,
0: अब तो घुटने तक
1: बस इतना करते हैं। पर जब हम किसी को छूते हैं ना तो उसको भी बहुत खुशी मिलती है, और हमें जो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद उस स्पर्श मिलता है उसकी कोई तुलना ही नहीं है। इसे स्नेह का सबसे सुंदर जो है ना, स्नेह सबसे सुंदर और सहज रूप होता है स्नेहिल स्पर्श। ये स्पर्श कभी माँ की उंगली पकड़ कर चलने में महसूस होता है, कभी पिता के कंधे पर हाथ रखकर मिली हिम्मत में मिलता है, कभी दादा दादी के आशीर्वाद में, तो कभी मित्रों के आत्मीय आलिंगन में। ये स्पर्श शब्दों से कहीं अधिक प्रभावशाली होता है ममता जी, और इसमें प्रेम की भाषा होती है, विश्वास का संदेश होता है और सुरक्षा का आश्वासन होता है।
0: और इन स्पर्श में ऐसी जादुई शक्ति होती है जो मन की व्याकुलता को शांत कर देती है। बच्चा या बड़े शायद शब्दों को भूल जाएं जो उन्हें सुनाए गए थे, लेकिन प्रेम से भरा वो स्पर्श जीवन भर उनकी स्मृतियों में अंकित होता है। वो स्पर्श दो दोस्तों का भी होता है, माता पिता का होता है, पति पत्नी का होता है, भाई बहन का होता है, कि आप जब गले लग जाते हैं तो जैसे प्रेम की धारा प्रस्फुटित हो जाती है। हमारे एक श्रोता ने लिखा भी है कि जब कोई माँ अपने बच्चे के चेहरे पर हाथ रखती है तो बच्चा खुद ब खुद रोता हुआ शांत हो जाता है। जब कोई प्रियजन के कंधे पर हाथ रखता है तो उसे मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यही है स्पर्श की शक्ति, और इसी सिद्धांत पर आधारित है स्पर्श चिकित्सा यानी टच थेरेपी। और ये प्राचीन भारतीय वैदिक परंपरा का हिस्सा रही है। आज विज्ञान में भी ये बात मानी जा रही है कि स्पर्श से मानव शरीर में ऊर्जा प्रवाहित होती है, और वो केवल मानसिक और शारीरिक पोषण से भी राहत दे सकती है। सोनाली, आप ये देखिए ना कि जब कोई कहीं जब घर छोड़ता है, बाहर जा रहा होता है, तो आप क्या करते, गले लगते हैं, तो उसका क्या मतलब है कि आप प्रेम का इजहार कर रहे हैं, और वो जो अंतिम मुलाकात होती है एक दूसरे से बिछड़ने की, वो आपके जहन में बस जाती है, या आप हाथ पकड़ के सिर पर हाथ रख देते हैं। जैसे कोई दुखद घटना घटित हो जाती है तो कहीं जाते हैं और उसके पीठ थपथपा देते हैं, या बच्चे को पीठ थपथपा के कह देते हैं कि देखो तुम तो विजेता होकर लौटोगे, तो ये बातें याद रह जाती है, और इसमें बहुत शक्ति होती है।
1: पर समय के साथ साथ ये सब हम चीजें भूलने भी लग गए। एक हमारे साथी ने लिखा है, ममता जी, बढ़ती उम्र में भी एक आत्मीय मुस्कान, कंधे पर रखा विश्वास भरा हाथ या हालचाल पूछने वाला अपनापन मन को नई ऊर्जा दे जाता है। इसलिए जीवन की व्यस्तताओं के बीच हमें अपने प्रियजनों के लिए समय निकालना चाहिए, क्योंकि स्नेहिल स्पर्श केवल शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी सुकून देता है।
0: बिल्कुल सही बात है। जो परिवार कभी एक साथ बैठ कर सभी भोजन किया करते थे, अलग अलग शहरों और देशों में अब बट गया है। दूरी केवल भौगोलिक नहीं होती है, वो भावनात्मक भी होने लगी है। फोन और वीडियो कॉल से बातचीत तो हो जाती है, लेकिन माँ के हाथों की वो जो ममता, पिता के कंधे का वो जो सहारा, और अपनों की निकटता का वो अनुभव कहीं ना कहीं पीछे छूटता जा रहा। वो थकान थक के लौटे स्कूल कॉलेज से तो माँ के कंधे पे सिर टिका लिया, भाई से भाई के गले लग गए, तो जैसे थकान कहीं दूर हो जाती है। लेकिन अब वो समय कहाँ है, और अब समय एक गाना सुनाने का,
1: सुनते हैं कि

0: दी
1: हाँ?
0: ये देख कैसे
1: हैप्पी बर्थडे भाई
0: दिखा हाँ मेरा फेवरेट कलर
1: हमेशा शॉपिंग
2: आई नो माँ बट खर्चा करने की भी यही उम्र है राइट
3: सेविंग करने की भी यही उम्र है
4: आई नो पा सेव करो सही जगह निवेश करो रकम पर ब्याज मिलेगा जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा
2: आई नो ना
4: RBI कहता है
5: तरो से ही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट

0: सारा प्यार तुम्हारा मैंने बांध लिया है आंचल में। सचमुच प्यार आंचल में बांधा जा सकता है क्या?
1: सचमुच उसे
0: स्पर्श के माध्यम से
1: उसे समेट कर रखा जा सकता है और बहुत दिनों तक सहेज कर भी रखा जा सकता है। ममता जी,
0: हमारे नीबर ने लिखा था ये गाना और आशा भोसले किशोर कुमार की आवाज से, आनंद आश्रम फिल्म का गीत था।
1: और एक हमारे साथी ने लिखा है ममता जी कि हमारी तीन सासू माए, तीनों देवरानी जेठानी की उम्र 80 के ऊपर है और ये चाहती है कि बहुएं हमारे पास बैठे, बातें करें और अपना समय दें। हम सभी कोशिश तो करते हैं पर उनकी इच्छाएं पूरी तरह से पूरी नहीं कर पाते क्योंकि हमारी अपनी निजी जिम्मेदारियां भी है, वो हमारा प्यार स्नेह समय और स्पर्श ही चाहती है।
0: बिल्कुल सही बात है। तो अब हम एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा, फिर और सखियों और सखाओं के कमेंट्स शामिल करते हैं।

0: दोस्तों विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली और श्रोताओं की बहुत सारी टिप्पणियां सोनाली जी यहां आ चुकी हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर। देखिए एक श्रोता ने लिखा है कि बढ़ती उम्र में भी एक आत्मीय मुस्कान, कंधे पर रखा विश्वास भरा हाथ या हालचाल पूछने वाला अपनापन मन को नई ऊर्जा दे देता है। इसलिए जीवन की व्यस्तताओं के बीच हमें अपने प्रियजनों के लिए समय निकालना चाहिए क्योंकि स्नेहिल स्पर्श केवल शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी सुकून देता है।
1: एक सखी ने लिखा है कि दुनिया भर में माँ अमृतानंदमय इसलिए मशहूर है कि वे अपने से मिलने वालों को गले लगाती है। डॉक्टर इसे स्पर्श थेरेपी कहते हैं। बच्चे हो या बुजुर्ग, जरा सा स्नेह स्पर्श उनके मन की जिजीविषा को दोगुना कर एक नई ऊर्जा से भर देता है। मौका खुशी का हो या दुख का, दिल से किया हुआ आपका प्रेमिल स्पर्श किसी चमत्कार से कम न होगा। अगर आपस के कुछ मतभेद होंगे तो वे भी सुधरेंगे और रिश्तों में मजबूती देने का सुखद और सकारात्मक माहौल बनेगा।
0: और एक कह रहे हैं कि ये विषय आधुनिक समाज में बुजुर्गों के अकेलेपन, बिखरते संयुक्त परिवारों और मानवीय संवेदनाओं में आ रही कमी को दर्शाता है। स्नेहिल स्पर्श केवल शारीरिक स्पर्श नहीं बल्कि ये अपनों का प्यार, सम्मान, परवाह और मानसिक संबल है। समस्या का मूल मानव जीवन में बचपन और जवानी जिस चकाचौंध और सामाजिक सक्रियता में बीतती है, बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखते ही वो सब बदलने लगता है।
1: बहुत सही बात इन्होंने कही। और एक हमारे साथी ने लिखा है कि बढ़ती उम्र के साथ पीछे छूटता स्नेहिल स्पर्श, हाँ मुझे भी ऐसा कभी कभी महसूस होता है कि जब हमारे बच्चे छोटे छोटे होते थे तो हम हर पल उन्हें प्यार दुलार देते थे, उनके सुबह उठने से लेकर रात के बुलाने तक। लेकिन बड़े होने पर हम उस तरह से देखभाल नहीं कर सकते क्योंकि वे कुछ काम अपने हाथों से करने लगते हैं, परंतु प्यार तो हम आज भी बचपन जैसा ही करते हैं पर जताते नहीं है।
0: और फिर यही इसी वजह से बच्चे भी सीख हैं क्योंकि जब आप बचपन में उन्हें दुलराते थे, गोद में लेके टहलाते थे, या फिर जब बड़े हो गए तो भी आप गले से लगाते थे, अपने छाती से चिपकाते थे, बड़े होने पर वो दूरी आपने मेंटेन कर ली, तो बच्चों को वो बचपन वाली बात तो याद नहीं रहती, वो बड़े होने के बाद याद रहती है। तो बच्चे भी वही सीख रहे हैं। तो इसलिए जो आपके घर में जो माहौल होता है कि अगर पति पत्नी आपस में एक दूसरे से दूरी मेंटेन रखते हैं या सास बहू के बीच एक दीवार खड़ी है, ननद भाभी के बीच, भाई बहन के बीच एक दीवार खड़ी है, तो बच्चे भी वही सीखते हैं, फिर बच्चे भी वो नहीं कर पाते हैं जो आप उम्मीद करते हैं जिसकी।
1: और एक साथी ने लिखा है कि जब कोई माँ अपने बच्चे के चेहरे पर हाथ रखती है तो बच्चा खुद ब खुद शांत हो जाता है। जब कोई प्रियजन के कंधे पर हाथ रखता है तो उसे मन पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। यही है स्पर्श की शक्ति और इसी सिद्धांत पर आधारित है स्पर्श चिकित्सा। स्पर्श चिकित्सा यानी टच थेरेपी कोई आधुनिक आविष्कार नहीं बल्कि प्राचीन भारतीय और वैदिक परंपरा का हिस्सा रही है। आज विज्ञान भी यही बात मानी जा रही है कि स्पर्श से मानव जीवन में ऊर्जा प्रभावित होती है। ये केवल मानसिक और शारीरिक पोषण से भी राहत दे सकती है। स्पर्श थेरेपी का जादू इस बात का प्रमाण है कि प्रकृति ने हमारे हाथों में ही इलाज की शक्ति दी है। व्यस्त दिनचर्या में अपनों को गले लगाना या छोटी सी मालिश देना आपके जीवन को सेहतमंद और खुशहाल बना सकता है।
0: क्या बात है, बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी है। अमूमन क्या होता है कि कुछ व्यस्तता के कारण, कुछ आप कुछ टकराव के और कुछ ईगो के कारण भी हम छोड़ते हैं। घर में जब कई बार तकरार होती है जहाँ पे 10-4 बर्तन होते हैं तो खटखट की आवाज होती है, टकराहट होती है, तो ऐसे रिश्तों में भी टकराव होते हैं। तो आजकल क्या होता है कि सबके सेल्फ रिस्पेक्ट ईगो का रूप ले लेता है, अहम का, तो वहाँ पे टकराव ज़्यादा होते हैं। अहम छोड़कर अगर एक स्पर्श से कह दिया जाए कि हाँ छोड़ो, जाने दो, हो गया, जो बीत गई सो बात गई, तो बस इतने में झगड़ा खत्म हो जाता है। लेकिन 2-3 लोग जब घर में होते हैं तो अपने अपने ईगो को लेके बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि अरे हाथ बढ़ाते हैं हमने तो, अभी फिल्मों में ये सीन भी दिखाया जाता है कि हाथ बढ़ रहे और फिर पीछे ले लिया। तो ऐसे ही घरों में भी होता है कि आपका मन करता है कि हम जाए अपने बच्चे को गले लगाएं, लेकिन अरे उसने तो पलट के जवाब दे दिया, नहीं हम नहीं जाएंगे,
1: हम नहीं बोलेंगे, तो वो पहले शुरुआत करें, हम क्यों करें।
0: तो ऐसे में टकराव और बढ़ता है और दूरी और बढ़ती जाती है।
1: एक साथी ने लिखा है ममता जी कि मेरे विचार से माता पिता को अपने बच्चों को स्नेहिल स्पर्श से वंचित नहीं रखना चाहिए। हम अभी भी अपने बेटे बेटियों को उनके किसी भी अचीवमेंट पर स्नेहिल स्पर्श भी करते हैं और प्यार की झप्पी भी देते हैं, चाहे

0: अभी पढ़ रहे हैं, बेटियां जॉब में हैं। हाँ, मेरे से ज्यादा मेरे धर्म पति इस मामले में 2 कदम आगे
1: क्या बात है
0: हैं।
1: भाई, बहुत
0: महिलाएं
1: बढ़िया
0: हर क्षेत्र में
1: जी।
0: आगे।
1: तो वैसे भी ये कहा जाता है, महिलाओं के हिस्से में ये जोड़ दिया जाता है कि सहनशीलता आपके हिस्से में है, सहनशील बनो। तो ये दोनों तरफ होना चाहिए। अब जमाना बदल चुका है कि अब सिर्फ सहनशीलता महिलाओं के हिस्से में नहीं, पुरुषों को भी उतना ही सहनशील होना चाहिए।
0: और जैसे आपने कहा ईगो की बात है, तो उस ईगो को झाड़ दीजिए। जैसे हम घर में झाड़ू लगाते हैं, वैसे ही हमारे ऊपर से झाड़ू फेरा के उस ईगो को फेंक दीजिए। क्योंकि रिश्ते जो होते हैं ना, उसकी मिठास ही कुछ और होती है और अपने अपने ही होते हैं। बस ये अहंकार को हमें आड़े नहीं आने देना चाहिए।
1: बिल्कुल। और अपने रिश्तों को छोड़कर कई बार बाहर प्यार जब तलाशा जाए, प्यार तलाशा जाने लगता है, तो स्थिति और बिगड़ जाती है। तो इसलिए ये जो स्पर्श वाली चिकित्सा है, इसको मेंटेन रखें। एक श्रोता ने एक अनुभव साझा किया है, लिखा है कि वैसे स्पर्श बहुत फायदेमंद होता है, खासकर बुजुर्गों की सेवा और बच्चों, जानवर वगैरह। एक बार पिताजी की बुरी हालत थी, उनकी निरंतर सेवा कर स्पर्श ध्यान द्वारा भी जल्दी ठीक हो गए थे। और अन्य ध्यान आप करते हैं जिसमें जिससे मन शांत होता है, ये स्पर्श के बहुत अच्छा होता है। स्पर्श से बच्चों का दिमाग और उनका स्पर्श हमेशा फायदेमंद होता है। मतलब ये कहना चाहते हैं, बच्चों के साथ अगर आप उन्हें टच करके छू कर बात करते हैं तो ये बहुत फायदेमंद होता है। हालांकि ये बीच में एक दौर आया था जहाँ पर एक दूरी मेंटेन कर दी गई थी, वो था कोरोना समय कि छूना नहीं है, कितनी विपरीत और विषम स्थिति थी। तो ये घर में तो ठीक है, अपनों को छू कर बात करना अच्छी बात है, लेकिन कई लोगों की आदत इतनी ज्यादा होती है टच करके बात करने की, बाहर अजनबियों से टच करके बात करते हैं, तो वहां पे हालत स्थिति बिगड़ भी सकती है। इसका भी ध्यान रखें आप।
0: बस हमें संतुलन बनाए रखना है उस स्पर्श में भी, कि कहाँ जरूरी है और कहाँ नहीं है।
1: बिल्कुल।
0: कहाँ हद से ज्यादा नहीं आगे बढ़ना है और कहाँ हमें गलत।
1: खासतौर से अगर कोई लड़की चली जा रही है और कोई लड़का आकर उसे छू कर बात करे कि हाँ एक्सक्यूज मी मुझे कुछ कहना तो निश्चित रूप से थप्पड़ पड़ जाएगा। और इस समय आप गाना सुनवा दें।
0: सुनते हैं गीत।

0: तो सोनाली जी, मुझे लगा कि आम खाने की तैयारी में लग गई हैं।
1: आम अभी पढ़ना है ममता जी,
0: आम, आम बहुत खास है,
1: कहने को आम खास हो गए।
0: बिल्कुल, क्योंकि आम जब आम की बाहर आती है गर्मी के मौसम में तो वो खास हो जाता है। फिर सबसे पहला सवाल ये होता है कि आम है कि नहीं खाने में।
1: हाँ।
0: फिर नाश्ते में, खाने में, दोनों टाइप, मतलब लंच डिनर सब जगह आम शामिल हो जाता है। और उसको कभी आम का रस बना के पूड़ी के साथ, और आम का रस पराठे के साथ, मैंगो शेक बना के कभी काट के। तो आप बताइए आप को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मतलब मुझे तो, काट के?
1: मुझे तो वैसे ही पसंद है ममता जी, बस मैं काट के खाना ज्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि ना जो आम रस होता है ना वो थोड़ा पचने में भारी होता है, क्योंकि हमने उसे बनाया फिर ऐसा लगा कि अरे ये तो थोड़ा सा फीका लग रहा है, उसमें थोड़ी सी शक्कर डाल दी। फिर माँ बोलेगी कि भाई वो थोड़ा गरिष्ठ होता है, उसमें थोड़ा दूध डाल दो, इलायची डाल दो, ऐसे करते करते करते थोड़ी बादाम की कतरन डाल दो, ऐसे करते करते वो थोड़ा भारी हो जाता है। और फिर है ना खाने में तो बहुत अच्छा लगता है, एक कटोरी से समाधान नहीं होता, ऐसा लगे और थोड़ा सा ले ले। फिर खाने में दूसरे भी आइटम होते हैं, सब्जी भी है, दाल चावल है, रोटी है, और भी है, सलाद है, पापड़ है, फिर वो बहुत भारी हो जाता है। तो मैंने अभी शुरू कर दिया है कि बस दो तीन फाक खा लो
0: बस। हाँ, मतलब एक आम जैसे तैसे, हाँ, उससे ज्यादा नहीं खाना।
1: और
0: है,
1: फिर अगर तो ये आम जी भर के खाना है तो फिर थोड़ा सा खाने को कम कर दो, कि जैसे रात में थोड़ा सा हल्का सा कुछ लिया, और उसके साथ में फिर अगर मैंगो शेक लिया है या फिर घर में बनी हुई मैंगो की आइसक्रीम ली है, तो फिर हम इस तरह से अगर करें ना तो फिर आम का भी आनंद ले सकते हैं और हमारी सेहत का भी ध्यान।
0: अच्छा, तो मतलब सत्तू के पराठे के साथ और पूरी के साथ आम का रस नहीं खा सकते?
1: खा सकते हैं ना, बिल्कुल खा सकते हैं,
0: लेकिन हमारे बहुत सारे श्रोता है जो इनके शौकीन होंगे, क्योंकि अमूमन ये कहा जाता है अरे क्या बना है, आम का रस और पूरी, तो ये तो बहुत, और साथ में आलू की भुजिया।
1: हाँ,
0: तो हमारे श्रोता बता सकते हैं कि कौन कौन लोग अभी इन दिनों में कितनी बार आम का रस पूरी खा चुके हैं,
1: और लोग बुलाते भी हैं, चलो हमारे घर आज आम रस पूरी का आयोजन है तो आप आइए खाने के लिए, उसके साथ में सूखी आलू की सब्जी भी रख देते हैं, तो बहुत बहुत आनंद आता है सब खाने।
0: तो हमारे कौन से श्रोता हैं जिन्होंने बाग में जाकर आम तोड़ कर खाया है, और कौन कौन से आम? हमारे कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि हमने तो ये देसी आम बहुत सारे खाए हैं, और तोता परी एक ने लिखा है चौसा, लंगड़ा, ये आम हमने खाए हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि हमने तो रत्नागिरी आम खाया है बहुत सारा, इधर महाराष्ट्र में और कोंकण साइड में खास तौर से ये अल्फांजो जो आम होता है, हापुस आम, ये बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन जो लोग लंगड़ा और चौसा खा चुके हैं उन्हें इनमें स्वाद नहीं आता है। उनको तो फिर लंगड़ा आम तो ऐसे है कि कच्चा आम भी आपको मीठा ही लगता
1: है, बहुत अच्छा लगता है वो आम, तो उसमें जो भी बहुत अच्छा लगता है।
0: हाँ, तो उसमें जो शक्कर मिलाने वाली बात है ना, जरूरत नहीं,
1: जरूरत ही नहीं है उसमें। और वो तो हम लोग ना बारिश होती है ना उसके बाद भी खाते हैं, यानी रक्षाबंधन आता तब तक वो आम आता है।
0: अभी लेकिन महाराष्ट्र में मुंबई में खासतौर से केसर आम,
1: हाँ,
0: बहुत मीठा आ रहा
1: है, केसर आम है। फिर उसके बाद में जो बैगन फल्ली आम जो आता है, वो जो साउथ का आम है वो भी खाते हैं। एक हमारे साथी ने लिखा है ममता जी, हमारी तो गर्मियों की छुट्टियां नहीं होती तो क्या हम आम खाने का आनंद ना उठाएं? वैसे तो आम खाने का आनंद उठाएंगे, आम का नाम सुनते ही हरे पीले रसीले आम आंखों के आगे घूमने लगते हैं, मार्केट जाओ तो हर तरफ आम ही आम दिखते हैं, घर घर में आम के चर्चे, किसने कितने बॉक्स आम के मंगवाया। पर मेरा तो कुछ खास ही अनुभव रहता है, घर का बगीचा है, आम का पेड़ है, सच मानिए एक आम का पेड़ ही कितने सारे आम दे देता है कि आपने जान पहचान के लोगों को खिलाने के बाद भी काफी सारा आम रह जाता है, बिल्कुल शुद्ध बिना रसायन वाला आम। आम के अचार बनाए, आम रस बनाए, मिल्क शेक, आम लस्सी, स्मूदी, सब कुछ, और गर्मियों का आनंद आम के साथ ले रही हूँ।
0: बिल्कुल, और यहाँ आम के बगीचे से याद आया कि हमने भी बचपन में आम का बगीचा, बड़े बड़े बाग देखे हैं
1: जी।
0: और

0: हाँ पेड़ से तोड़कर आम खाए हैं और गिरे हुए आम बटोरे हैं, भले ही खाए नहीं लेकिन वो अजीब सा शौक होता था। तो वो जो पिता और दादा के लगाए हुए बाग हैं
1: जी
0: उनको बढ़ाने के लिए, पीढ़ी दर पीढ़ी चलाने के लिए आपको नए नए आम के पेड़ भी लगाना चाहिए। वो चाहे कलमी आम हो, लंगड़ा चौसा या
1: जी
0: रत्नागिरी, जो भी आम लगाया जाता है वो सीख कर आपको आम के पेड़ ज़रूर लगाने चाहिए। और बड़ा आसान होता है, कई कई कुछ आम तो गुठलियों से ही
1: अपने आप उग
0: पनप जाते हैं, उग जाते हैं। जैसे यहाँ विविध भारती के परिसर में भी हमने कुछ गुठलियों से आम लगाए हैं और वो बड़ा पेड़ हो गया, तो हमें देखकर बड़ा अच्छा लगता है। एक श्रोता ने लिखा है कि गर्मियों में आम खाने का आनंद, आहा बस पूछिए मत। एक दो हो तो कुछ बात भी बने, मगर इतनी वैरायटी के आम की पूछो मत। जहाँ गए वहीं खा लिया, यदि नहीं गए तो अपना लंगड़ा आम तो है ही है, फिर दशहरी का क्या कहना। हापुस वाह वाह, ये तो इधर मिलता ही नहीं है, जबकि दक्षिण का तोता परी, अरे यही तो दक्षिण भारत से इधर सबसे पहले आता है। मगर हापुस जी हाँ, सब खाया जाता है और जी भर के खाया जाता है। अब रोग भी लगाए तो कैसे भाई, स्वाद का मामला है। और भी बहुत सारा इन्होंने लिखा है, तो इनकी बात से हमें याद आ गया कि गांव में बाल्टी में आम भिगो दिया जाता
1: हाँ।
0: था और लोग बाल्टी पूरी की पूरी बाल्टी आम खा लेते
1: थे। छोटे छोटे चूसने वाले आम थे ममता
0: हाँ,
1: जी
0: हाँ,
1: वो आते
0: और
1: थे।
0: आप तो कह रही कि एक आम दो फाक
1: अब तो ओ ममता जी वो जमाने में तो 10 आम भी खा लो तो कुछ नहीं होता था,
0: उसमें
1: पर अब एक आम भी खाया तो भारीपन लगता है ना।
0: और उसमें केमिकल नहीं होता
1: हाँ,
0: था, कोई भी
1: केमिकल नहीं,
0: कोई दवा मिला के नहीं, वो सीधे देसी आम।
1: खेलते कितने थे ममता जी हम उस वक्त, कि आम खाए और फिर खेलने चले गए, दिन भर वो बाल्टी में भिगोए हुए आम, आते जाते 20 भी खा लिए 25 भी खा लिए तो पता नहीं चलता था। अभी तो एक आम खाते खाते परेशान हो जाते। एक हमारे साथी ने लिखा ममता जी की, गर्मियों की चिलचिलाती धूप में जब फ्रिज से निकला हुआ ठंडा आम खाने को मिलता है तो मन और तन दोनों तृप्त हो जाते हैं। पारिवारिक जुड़ाव, आम खाने का असली मजा अकेले नहीं बल्कि परिवार के साथ बैठकर हाथ सरो सरो कर आम निकाल कर खाना और रस निकालना परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है। और बहुत सारी किस्में हैं भारत में आम की, जैसे दशहरी, लंगड़ा, चौसा, हाफुस, केसर, हर किसी को पसंद होते हैं। और इसके व्यंजन भी जैसे आमरस है, मैंगो शेक है, आइसक्रीम और अचार भी थालियों की शान बढ़ाते हैं।
0: और एक श्रोता ने लिखा है कि जब हम गांव जाते थे तो पेड़ से आम टूट के आते थे, तो पहले उसे अनाज की भूसी में रखा जाता था, जब पक जाते थे तो उसे निकाला जाता था और बड़ी बड़ी बाल्टी में मिट्टी के नाद में उसे पानी में डाल दिया जाता था और फिर उसे बाल्टी में ही रख कर खाते थे। तब होड़ लगता था कि किसके सामने गुठलियों की ढेर ज्यादा होती है। इन गर्मियों में आम के चलते हमें बचपन में फोड़े फुंसी आम के रस से चेहरे पर भी कई तरह के दाग निशान हो जाते थे।
1: हाँ, और आम का के यहाँ पे
0: और आम का पना भी बनता था।
1: हाँ।
0: और साथ में गांव में तो आम के आम को भून कर आग में उसका रस निकाल कर उससे बाल भी धोए जाते थे।
1: ओहो।
0: तो ये कितने तरह के आम के कितने तरह के गुण, और आम के अचार की तो बात ही निराली।
1: और आम की जो रोटी भी बनाते थे,
0: हाँ।
1: आम का रस बच गया तो उसको थाली में थोड़ा सा
0: आम पापड़,
1: लगा के, आम पापड़ उसमें डाल के और उसको सूखा दिया, वो साल भर खाते थे।
0: अमावट भी कहा जाता है जिसे। तो और बोलिए,
1: एक साथी ने लिखा है कि भाई आम जो है सब साथ में बैठकर खाते हैं, और आम बैगन फली खाएं, परिवार के साथ बैठकर खाएं, आम खाने का मज़ा ना अलग होता है। सब बैठकर आम के छिलकों को चूसने लगते हैं, आम की तारीफें कहना और क्या कहना, तुमने उसको ज़्यादा आम दे दिया, मुझे नहीं दिया, इसका तो मज़ा ही कुछ अलग होता था। आज भी आता है, आज आम का जो स्वाद होता है ना, मैं कहूँगी सारे दिन की थकान मिटाने में सक्षम होता है। इसलिए गर्मी में आम नहीं खाया तो क्या खाया, और वो भी परिवार के साथ कर बैठ कर खाया तो उसका आनंद दुगना हो गया।
0: और एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन की गर्मी की छुट्टियों की बात याद आती है तो सबसे पहले नानी का गांव याद आता है। नानी के गांव के उन देसी आमों की बात ही कुछ और थी। बाजार में मिलने वाले हाइब्रिड या बड़े बड़े आमों में वो स्वाद कहाँ जो उन छोटे रेशेदार आमों में होता था। तो अब क्या इरादा है,
1: आप एक गीत सुन ले।
0: सुनते हैं।

0: वजन कैसे कम करना है इस बारे में हमारे एक साथी लिखते हैं कि मैं सुबह 5 बजे विविध भारती पर जागो, सुबह हो गई सुनते प्राणायाम व्यायाम कर लेता हूँ, फिर हमें राही प्यार के तक दोपहर तक बाजार बैंक से जुड़े काम निपटा लेता हूँ, सखी सहनी सुनने के बाद आराम कर लेता हूँ, शाम को इवनिंग वॉक करने जाता हूँ जिसके कारण दोपहर का खाना भी आसानी से पच जाता है, और जब आपका पेट साफ सुथरा रहेगा तो कोई बीमारी नहीं आएगी, चलने के कारण आपके हाथ पैर में दर्द भी शिकायत नहीं होगी, ये मेरा निजी अनुभव है। वही एक साथी कहते कि मैं और मेरी श्रीमती सुबह 4 बजे योग, शाम 6 बजे 5 किलोमीटर जाकर वापस घर पैदल आते हैं, रात का भोजन सिर्फ दाल और मूंग की दाल और 2 रोटी लेते हैं, दिन में संतुलित आहार दलिया दूध हरी सब्जी पालक लौकी करेला ग्वारफली 2 रोटी पर्याप्त और 1 कटोरी आम का रस, हर 1 घंटे 1 गिलास पानी। क्या बात है,
1: बिल्कुल। दरअसल होता क्या है कि अगर नियमित रूप से व्यायाम करते रहें और जितनी कैलोरी ले रहे हैं उतना आप शारीरिक श्रम करते रहें तो वजन बढ़ेगा नहीं। व्यायाम शरीर की अतिरिक्त कैलोरी जलाने में सहायता करता है, इसलिए रोजाना कम से कम 30 से 45 मिनट तेज चाल से पैदल चलना चाहिए। इसके अलावा योगा, साइकिलिंग, तैराकी और नृत्य भी अच्छे विकल्प हैं।
0: और सबसे जरूरी बात है ममता जी, नींद पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे ना भोजन छोड़ने लगते हैं कि कुछ लोग ये खाना बंद कर देते हैं, वो खाना बंद कर देते हैं और उसके बाद में अचानक से खाना शुरू कर देते हैं, उससे भी हमारा वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। साथ ही तनाव कम करें, जो लोग तनाव लेते हैं तो उन्हें भी उनका भी वजन बढ़ता है। और मीठे और जंक फूड पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है, पिज्जा बर्गर चिप्स केक और मिठाइयों में कैलोरी ज्यादा होती है, तो पूरी तरह से छोड़ना जरूरी नहीं लेकिन इसे सीमित मात्रा में लेना चाहिए, और घर के बने भोजन को, पौष्टिक भोजन को हमें प्राथमिकता देना चाहिए।
1: मतलब आम के रस में शक्कर नहीं मिलाना चाहिए, आपने जैसे बताया था।
0: हाँ, आम के रस में शक्कर बिल्कुल नहीं मिलाना है,
1: बिल्कुल मीठी चीज में शक्कर मिला के ना खाएं।
0: अब कुछ लोग चाय में भी इतनी सारी शक्कर डाल के पीते हैं, तो जहां तक हो सके अगर मिठाई खाना है तो चाय फीकी पी सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: वही हमारे एक साथी ने भी लिखा है कि ये जो वजन घटाने की गति तेज करने के लिए सप्ताह में कम से कम 150 मिनट मध्यम स्तर पर कार्डियो, जैसे तेज चलना, दौड़ना, साइकिल चलाना, मांसपेशियों के निर्माण के लिए कार्डियो के साथ वेट ट्रेनिंग या रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करने से भी शरीर का मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिससे आराम करते समय कैलोरी बर्न होती है।
1: और साथ में पानी ज्यादा पीते रहना चाहिए, ये जो गर्मी का मौसम है इसमें तो खास ख्याल रखना चाहिए। और हमें अभी ख्याल रखना चाहिए कि एक गाना सुनवा दे, प्रोग्राम का आखिरी गाना
0: सुन।

0: छोटी बहन फिल्म का ये गाना था, लता मंगेशकर और सुबीर सेन की आवाज़ें थी। और अब सोनाली जी घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल वक्त नहीं कि हम कुछ बोलें बतियाएं या गाना सुनवाएं, तो लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और सोनाली पाठक का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: दोस्तों नमस्कार, विविध भारती के स्टूडियो नंबर एक से मैं यूनुस खान बोल रहा हूँ। स्टूडियो नंबर एक वो स्टूडियो है जहाँ हम अपने फोन इन कार्यक्रमों के लिए आपके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग करते हैं। आप जानते हैं कि हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 0222867 0288, यानी 2867 0288, और 0224002466 यानी 400-2462। सोमवार को दिन में 11 बजे से रिकॉर्डिंग होती है। देश भर के श्रोता फोन करते हैं और कई श्रोता इस बात से निराश होते हैं कि उनका फोन नहीं लगता। दरअसल फोन लाइंस की अपनी सीमाएं हैं ना। देश के कोने कोने से जब हजारों लाखों श्रोता एक साथ कॉल करते हैं तो कुछ खुशनसीब श्रोताओं का कॉल लग जाता है और उनकी हमसे बात हो जाती है। बस ये है कि आप कोशिश करते रहिए। और हाँ, जहाँ से फोन कर रहे हो वहाँ शोर नहीं होना चाहिए। नेटवर्क अच्छा हो तो आपकी रिकॉर्डिंग अच्छे से होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार सर जी।
0: नमस्कार,
1: मैं वी पूनम नायडू बोल रही हूँ, प्रेम झील धनोरा जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़ से।
0: क्या बात है, कैसी हैं आप?
1: बहुत ही अच्छे हैं, मजेदार गर्मी का मजा लेते हुए हम आपको कॉल कर रहे हैं सर जी।
0: गर्मी का मजा, ये बड़ा तंज है ये।
1: हर मौसम का अपना मजा है सर जी। यदि अपन बारिश में फिर ये गर्मी धूप ढूंढेंगे तो फिर प्राप्त नहीं हो पाएगा ना।
0: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। लेकिन इस साल की गर्मियां कहर हैं, आपको ऐसा नहीं लगता?
1: नहीं सर जी, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो सभी मौसम के आदी हैं और हमें हर मौसम में अपने उनका मजा लेना बहुत अच्छा लगता है।
0: बढ़िया बढ़िया बढ़िया, अच्छी बात है। बताइए कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आप?
1: फिल्म का नाम है हम आपके है कौन।
0: अच्छा,
1: उस फिल्म में लता मंगेशकर SP बाल सुब्रमण्यम का गाया हुआ गीत है सर जी, उस गीत को प्ले कीजिएगा
0: जी।
1: इसके बोल मैं थोड़ा गुनगुना के बता दूं क्या सर जी?
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: इससे जुदा होकर तुम्हें दूर जाना है, कुछ पल की जुदाई फिर लौट आना है, ये वाला गीत सर जी।
0: क्या बात है। अच्छा, आपने बताया कि आपका नाम पूनम नायडू है और आप बस्तर से हैं, तो बस्तर में कब से हैं आप या यहीं पैदा हुई हैं?
1: हम यहीं पर पैदा हुए सर जी। जब MP था, मेरे पापा का जॉब यहाँ आंध्रा से यहाँ हो गया तो हम लोग यहीं पे बस गए, मम्मी पापा, और हमारी पैदाइश जो है यहीं पे हुई MP में। बाद में डिवाइड हुआ ना छत्तीसगढ़ और MP।
0: अच्छा, तो आपको तेलुगु आती है?
1: हाँ, तेलुगु पूरा बोलते, घर में तो हमारी मातृभाषा है ना सर जी।
0: तो बताइए तेलुगु में इस बात को कैसे बोलेंगे कि सुनिए अपनी फरमाइश पर ये गाना।
1: हाँ, मी नचकने पाटा।
0: अरे बाप रे बाप। नहीं, इसको को थोड़ा छोटा बोलिए। वेरवंडी वीरू मी नचिंदी पाटा। सुनिए अपनी पसंद पर ये गाना। बहुत बहुत शुक्रिया।

0: शासनिक है चंडीगढ़ से।
1: राकेश जी कैसे हैं आप?
0: बढ़िया है, ठीक है।
1: क्या काम करते हैं?
0: दुकान करते हैं मोबाइल के। टाइम बहुत सुनता हूँ मैं, काफी दिनों से सुन रहा हूँ। जब हमारे जब ऐसा वो रेडियो था
1: जी,
0: बहुत काफी समय पहले से रेडियो भारती सुन रहे हैं।
1: अच्छा, बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है।
0: आशा पिक्चर का ही गाना सुनना चाहते हैं, शीशा हो या दिलो आखिर टूट जाता है।
1: क्या बात है, सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो नमस्ते सर, जगदीश चौहान पेंटर मुखर्जी नगर इंदौर से बोल रहा हूँ सर।
0: जी जी जगदीश जी, कैसे हैं?
1: बस बढ़िया सर।
0: बताइए आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: मुझे वो सुमन कल्याणपुर जी और मुकेश जी की आवाज में मेरा प्यार भी तू है, बहार भी तू है, तू ही नजारों में।
0: साथी फिल्म का गाना मजरू सुल्तानपुरी की बोल नौशाद की तर्ज। सुमन जी हमारे बीच जी नहीं रही और एक तरह से आप इस गाने के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं।
1: जी सर
0: जी, चलिए सुनते हैं ये गाना।

0: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, पता है रेलवे स्टेशन पर टिकट लेने के लिए खुले पैसों की समस्या से अब मुक्ति मिल गई है।
1: हाँ, रेलवे स्टेशन पर सभी प्रकार के पेमेंट पेटीएम, गूगल पे, फोन पे जैसे प्रमुख यूपीआई मोड से डिजिटल माध्यम द्वारा कर सकते हैं।
0: इसके लिए रेलवे स्टेशन ऊपर टिकट काउंटर, पार्सल ऑफिस, गुड्स एवं अन्य सभी स्थानों पर क्यूआर कोड स्थापित किए गए हैं।
1: डिजिटल पेमेंट के माध्यम से न सिर्फ छुट्टे पैसों की परेशानी से मुक्ति मिल रही है, बल्कि लेन देन में लगने वाले समय में भी कमी आ रही है।
0: उत्तर पश्चिम रेलवे का सभी से अनुरोध है कि डिजिटल पेमेंट का अधिक से अधिक उपयोग कर रेलवे के डिजिटल इंडिया की तरफ किए जा रहे प्रयास में सहयोग करें। ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ, उत्तर पश्चिम रेलवे।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ नमस्ते सर।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: हम अपने एमपी सागर से विक्रम सिंह और चालू राजा।
0: विक्रम सिंह, सागर में कौन से इलाके से बोल रहे?
1: सागर इलाके में तहसील बंडा, हमारा ग्राम छोटा सा गांव पड़ता है क्वायला।
0: बंडा तो समझ में आ गया हो, पर गांव का नाम समझ में नहीं आओ।
1: क्वायला।
0: अच्छा बताओ, क्या कर रहे हैं आज?
1: अब बैठे हैं सर, छोटी सी किराने की दुकान है जी।
0: अच्छा, और गर्मी अर्मी कैसी पड़ रही?
1: गर्मी तो सर बहुत है अभी, अब तो थोड़ी राहत मिल चुकी है।
0: काय बारिश हो गई का?
1: जी बारिश हो गई 2 दिन तक में।
0: अच्छा, कितनी बारिश हुई? बहुत सारी हुई या थोड़ी सी हुई?
1: थोड़ी सी हुई है सर, ज्यादा तो नहीं भाई है।
0: हाँ।
1: हाँ।
0: अभी तो 9 तपा चल रहे कि खत्म हो गए?
1: जी सर, बिल्कुल 3 दिन बाकी को
0: तनक बाकी है, 3 दिन बाद तो फिर बारिश आ जाए है, फिर मौज हो जाए है। काय
1: जी सर।
0: अच्छा कौन सा गाना सुनने हैं जी बताओ?
1: हमको सुनना है पगला कहीं का।
0: है पगला कहीं का? को है पगला?
1: पगला कहीं का फिल्म का नाम है, फिल्म का नाम है पगला कहीं का, और बोल है वो मन्ना डे की आवाज में है, मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा।
0: ए दद्दारे, किसी ने किसी की भैंस को डंडा मार दो का? का होगा हमें तो बताओ।
1: सर जी आपसे बात करके
0: मजा आ गया, हमसे बात करके हमें सो ही मजा आ गया, आपसे बात
1: आनंद आया सर।
0: सच्ची हमें भी बहुत ही आनंद आ गया, हमें जितने भी अपने श्रोता हरण है ना, सबसे बात करके बहुत ही मजा आता है
1: जी। आपका बिल्कुल सर बुंदेलखंड जैसा बटका है, बिल्कुल आपका
0: बुंदेलखंडी आए अपन शुद्ध वाले। हाओ तो चलो बातों का सिलसिला कर रहे खत्म, और आपको सुना रहे आपकी फरमाइश को जे गाना।
2: क्यों मारा? क्यों मारा? क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों

नाच नाचे जब मैं दिल का बजाऊं, मैं दिल का बजाऊं। एक तारा मेरे भैंस को डंडा

0: पापा
1: लाइए
0: 3,000।
1: क्यों भाई?
0: मेरी पॉकेट मनी।
1: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
0: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ।

0: है नहीं? हाँ, सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
1: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ, अपने 1000 ले जाओ,
0: अपना मोबाइल लाओ,
1: ले ले।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: हम सब तो रेल के डिब्बे हैं, वो अपनी इंजन गाड़ी है।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो,
0: हाँ जी कौन?
1: मैं ज्योति प्रजापति बोल रही हूँ।
0: ज्योति जी कहाँ से बोल रही हैं आप?
1: पीतमपुर जिला धार मध्य प्रदेश से।
0: अच्छा बताइए क्या हालचाल है पीतमपुर के?
1: जी बढ़िया है, गर्मी पड़ रही है।
0: गर्मी पड़ रही है, सब जगह गर्मी पड़ रही है और बहुत जोरदार पड़ रही है कि नहीं
1: जी?
0: अब हमें ये बताइए, हमें ये बताइए कि इस साल गर्मी से बचने के क्या उपाय किए आपने?
1: गर्मी के से बचने के लिए बाहर जाए तो तावील लेके जाए, छाता लेके जाए, पानी अपने साथ लेके जाए।
0: बहुत सही, बिल्कुल,
1: ज्यादा से ज्यादा धूप में कहीं ना निकले।
0: सही बात है। अच्छा बताइए आज किस गाने की फरमाइश है?
1: गाना फिल्म का नाम है सूरज तुमसे इतना प्यार है।
0: क्या बात है, चलिए बातें करते हैं पूरी और आपको सुनवाते हैं ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार।
0: अच्छा बताइए कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: अनिल नाइक बोरोली मुंबई से बात कर रहा हूँ।
0: जी बोलिए बोलिए, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया हूँ।
0: क्या सुनना चाहते हैं आज?
1: पैसा फिल्म का गाना सुनना चाहते। पैसा
0: गाने के बोल बताइए।
1: जिन्हें ना रहे इन लोग पर वो कहाँ है।
0: क्या बात है, साहिर लुधियानवी के बोल, शानदार गाना, SD बर्मन का संगीत। जी कुछ कहना चाहते हैं इस गाने के बारे में?
1: बहुत बढ़िया गाना है
0: जी।
1: कितना भी सुने तो मन भरता नहीं है।
0: बिल्कुल, कितना भी सुने इस गाने को मन नहीं भरता।
1: और मोहम्मद रफी की आवाज में तो क्या गर्व था।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया इस गाने की फरमाइश के लिए। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश जी, कौन बोल रहे हैं?
1: जी सर, मैं दुल गोविंद मिश्रा, उड़ीसा से, डिस्ट्रिक्ट झारसुगड़ा। हमारा गांव का नाम सुल्हाई है।
0: अच्छा, बताइए कैसे हैं आप?
1: जी सर, बहुत बढ़िया है। एक साल के बाद आपसे बात हो रहा है। मैंने दिल्ली हर सोमवार को हम फोन लगाता है, लेकिन आपका नंबर नहीं लगता है सर।
0: जी
1: बिजी बताता है।
0: देश भर के श्रोता फोन कर रहे होते हैं, तो इस वजह से मुश्किल होती है फोन लगने में।
1: आप बोलते हैं कि महीना में एक बार लगाने के लिए, मैं तो हर सोमवार को लगाता हूँ, लेकिन मेरा नंबर एक साल हो गया, कभी नहीं लगा सर।
0: तो आज लगा है, ये बहुत खुशी की बात है।
1: बहुत खुशी बात है, मेरे को बहुत खुश लग रहा है, अच्छा लग रहा है। मैं तो ये सोच रहा था कि उड़ीसा का नंबर नहीं लगता है, क्या सोच रहा था मैं।
0: नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देश के कोने कोने से लोगों के फोन आते हैं और सबके नंबर बारी बारी से लगते हैं। इतने लोग लगा रहे होते हैं कि फोन लाइन की भी अपनी सीमाएं हैं।
1: जी
0: बताइए, क्या हालचाल है आपके इलाके के, उड़ीसा के?
1: जी हालचाल तो सिर्फ गर्मी के लिए तो बहुत, हर आदमी परेशान है, बहुत गर्मी हो रहा है। ये 3 दिन से थोड़ा सा, मैंने बारिश हो रहा था, थोड़ा सा राहत मिला है।
0: जी जी, बारिश होने से वाकई राहत मिल गई है। देश के अलग अलग हिस्सों से बारिश की खबरें हमें मिल रही हैं।
1: जी जी,
0: कौन कौन से कार्यक्रम अच्छे लगते हैं विविध भारती के आपको?
1: जी हमको तो ज्यादा हेलो फरमाइश, और जो आप जो सुनाते हैं, जो मैंने संदेश टू सोल्जर, वो वाला फनकार जो सुनाते हैं वो वाला, और अभी जो नया एक जो शुरुआत किए है, 1 बजे जो सुनता हूँ, वो अच्छा लगता है।
0: अच्छा अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया इन कार्यक्रमों को पसंद करने के लिए। बताइए कौन से गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: जी दोस्ती फिल्म का राही मनवा, दुख क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है।
0: अरे वाह, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया गाने की फरमाइश की है। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गाना है, सुनते हैं ये गाना।
2: दुख हो या सुख, जब सदा संग रहे ना को फिर।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश यूनिस साहब, कैसे हैं आप?
0: जी मैं अच्छा हूँ।
1: मैं तो आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ कि पूछे में नहीं। आप तो मैं कितने आपके इंटरव्यू सुने, कितने आपके शब्दों में बोले तो मजा आ गया। क्या बात है
0: मजा आ गया, क्या बात है। कौन बोल रही हैं आप?
1: मैं आशा बोल रही हूँ बेंगलुरु से, और मैं आपकी बड़ी फैन हूँ। आपके बड़े सारे प्रोग्राम मैं सुनती हूँ, और मैं 3 हफ्ते 5 हफ्ते से ट्राई कर रही हूँ आपका। जब सुनती हूँ लोग बात कर रहे, बड़ी जलन होती थी।
0: अरे बाप रे,
1: मैं भी बात कर रही हूँ। यस,
0: क्या बात है। देखिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है ना।
1: यस, पहले बात तो मैं कहना चाहूंगी कि आपके पुराने प्रोग्राम में आपने एक राइटर से बात की थी, तब वो राइटर ने आपसे कहा था, आपसे या किसी और से, यूनिस खान से बात करने से ऐसा लगता है जैसे मैं किसी अपने देवर से बात।
0: ओहो, क्या बात है।
1: वो राइटर ने ऐसे बोला था कि मेरे मतलब जहन में है, वैसे ही मैं, आप भी मेरे जहन में हो
0: जी।
1: आप लोगों से तो मेरा ऐसा रिश्ता है कि पूछो मत, सारा दिन मैं सुनती रहती हूँ, सारे प्रोग्राम सुनती रहती हूँ
0: जी।
1: लोग मेरे से तंग आ गए, कितना बजाओगी करके।
0: अच्छा विविध भारती का साथ इसी तरह से बना रहे हैं आपके साथ, है ना?
1: मैं बस जिंदगी भर अंत तक सुनती रहूं, जीवन का यही लक्ष्य है बस।
0: क्या बात है जी। तो बताइए, कौन कौन से कार्यक्रमों का जिक्र करना चाहेंगी जो आपके दिल के करीब रहे हैं?
1: सभी कार्यक्रम, ज्यादातर पिटारा के सारे प्रोग्राम
0: जी,
1: वो बहुत अच्छे रहते हैं
0: जी।
1: और हेलो फरमाइश, हेलो सहेली, और सब आप अभी तो एकदम से मैं एक्साइट हो गई हूँ, प्रोग्राम के नाम ही याद नहीं रहे आपसे बात करते हैं।
0: जी, जी, जी।
1: सबसे ज्यादा तो आज के फनकार मैं सुबह जरूर सुनती हूँ
0: जी,
1: सुबह 8 बजे से लेके मेरा विविध भारती शुरू हो जाता है न्यूज से लेके, और जब तक हो सके तब, और रात को भी जब भी टाइम मिले तब।
0: अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। तो आज कौन सा गाना चुन रखा है आपने?
1: मैंने राम तेरी गंगा मैली का, सुनो तो गंगा ये क्या सुनाए, तुम्हारे पथ पर जो भी आए, उन्होंने ऐसे नियम बनाए के प्राण जाए पर वचन न जाए।
0: क्या बात है भाई, इतने सारे बोल भी याद है आपको?
1: अरे अरे, मेरे को तो कुछ कुछ गानों के पूरे पूरे बोले, पूरा गाना सुना सकती हूँ।
0: वाह वाह वाह, ये जानकर बहुत अच्छा लगा। मतलब वो जो आप कहती है ना कि मैं हमेशा कहता हूँ, क्या बात है,
1: क्या बात।

0: जी शुक्रिया।
1: बचपन से आई बिलीव नहीं करूंगा, आई एम 57 नाउ और मैं कम से कम 5-6 साल से विविध भारती सुन रही हूँ।
0: ये लंबा सफर तय किया आपने विविध भारती सुनते हुए।
1: सब आप लोग पुराने गाने सब, मतलब जो चीजें कहीं नहीं बचती वो विविध भारती पे बचती।
0: क्या बात है जी, शुक्रिया, ये जान के बहुत अच्छा लगा।
1: मैं आपसे बात करके गदगद हो गई हूँ, लाइफ टाइम अचीवमेंट हो गया मेरा आपसे बात। थैंक यू
0: शुक्रिया। हम ये दुआ करेंगे कि आगे भी आपका फोन लगे और बातें हों। बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर बातों का सिलसिला यहीं करते हैं खत्म और आपको सुनवाते हैं राम तेरी गंगा मैली फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ भैया जी, नमस्कार
0: नमस्कार नमस्कार
1: जी। हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: जी जी बताइए,
1: एकदम बढ़िया है भैया।
0: क्या करते हैं आप?
1: हमारा मूल काम खेती बाड़ी का है भैया।
0: अच्छा।
1: हाँ जी, और अभी तो फिलहाल गर्मी में आराम करना ज्यादा होता है, और बरसात जैसे लगेगा धान की बुआई करेंगे।
0: और छत्तीसगढ़ तो धान का कटोरा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अच्छा मुझे ये बताइए कि छत्तीसगढ़ के इलाके में गर्मियों के मौसम में वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको बहुत लुभाती हैं, जैसे कि आम?
1: आम और अमरूद तो इधर बहुत मिलता है भैया। मतलब आम तो बाहर से ही आते हैं,
0: जी जी जी बिल्कुल।
1: लेकिन जो अमरूद वगैरह होते हैं वो प्रायः घर में अमरूद है, पपीता हो गया, बेर का पेड़ हो गया, ये मतलब बहुतायत सबके घर में मिल जाते हैं।
0: सही है सही है। अच्छा बताइए कि इस साल क्या गर्मियां बीते कई सालों की तुलना में ज्यादा पड़ी?
1: बिल्कुल ज्यादा पड़ा है भैया, 44 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच गया है, और कई इसके कारण होंगे भैया। सबसे ज्यादा तो यही अपन जो देखते हैं, पर्यावरण में हस्तक्षेप करना, और हम मानव समाज के लिए बेहद जरूरी है कि हम प्रकृति से निकटतम प्रेम करें और वो सामंजस्य बना के रखें।
0: बहुत प्यारी बात कही आपने। अब मुझे ये बताइए कौन से गाने की फरमाइश है?
1: फिल्म है राजा और रंग के, गीत के बोल है ओ फिरकी वाली तू कल फिर आना, ये प्यारा सा गीत सुनना है।
0: बहुत ही बढ़िया, सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: दोस्तों ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के लिए हम आपके टेलीफोन कॉल्स रिकॉर्ड करते हैं सोमवार को दिन में 11 बजे से। हमारे दो टेलीफोन नंबर हैं, एक है 2867-0288, दूसरा है 400-24662। अंग्रेजी में बता दें 2867-0288 और 4002-4662। मुंबई का एसटीडी कोड 022 है। रिकॉर्डिंग सोमवार को दिन में 11 बजे से होती है। जिन श्रोताओं के कॉल्स आज शामिल हो गए वो कृपया 2 महीने तक हमें फोन ना करें ताकि नए श्रोताओं को हम मौका दे सकें। और हाँ, हेलो फरमाइश कार्यक्रम के जरिए जब आप बातें करें तो अपने इलाके के बारे में कुछ बताएं, कुछ दिलचस्प बातें करें, कुछ गाने सुनाएं तो इस कार्यक्रम को हम अच्छी तरह से सजा सकते हैं। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर मंगेश सांगले और इस कार्यक्रम को विविध भारती की ओर से प्रस्तुत किया राघवेंद्र सिंह नेगी ने। अब अपने दोस्त यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश। विविध भारती की फोन इन सर्विस के इस प्रोग्राम का पिटारा आज के लिए हुआ पूरा। पिटारा हर रोज पेश होता है, रोजाना सुनिए पिटारा।

मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। शाम 5 बज रहे हैं। आइए अब सुनते हैं युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: सपनों को दे नई उड़ान, विचारों को दे नई पहचान, युवाओं की शक्ति और भारत का सम्मान।
1: ज्ञान की रोशनी, उम्मीदों का आसमान, लेकर आए हैं हम एक नया अभिमान।
0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं युववाणी, जहां युवा सोच बनती है नई दिशा और नए भारत की।

0: परिभाषा
1: और मैं हूँ आपकी दोस्त दिव्या।
0: और मैं हूँ गार्गी।
1: स्वागत है आपका युवाणी में। आज की इस खास प्रस्तुति में बात होगी इंडिया एट द रेट 2047 के सपनों और संकल्पों की, जल संरक्षण और रेजुविनेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज जैसे महत्वपूर्ण विषयों की।
0: मुलाकात होगी उन प्रेरणादायक लोगों से जिन्होंने अपने कार्यों से समाज में अलग पहचान बनाई, और जानेंगे देश के उभरते हुए यंग टेक्नोक्रेट्स के बारे में।
1: साथ ही नज़र डालेंगे आज के इतिहास के पन्नों पर, जानेंगे आज के जन्मदिवसों की खासियत।
0: मिलेगी आपको खेल जगत की ताज़ा खबरें और शेयर मार्केट की महत्वपूर्ण हलचलें भी। तो अगले कुछ मिनटों मिनट हमारे साथ रहिए, क्योंकि युवाणी में मिलेगी जानकारी, प्रेरणा और नए भारत की कहानी।

0: तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो हमारे वर्तमान और भविष्य दोनों से जुड़ा है। विषय है हमारा भारत 2047, जल संसाधनों का पुनर्जीवन।
1: दोस्तों, जब हम भारत एट द रेट 2047 की बात करते हैं तो हमारे मन में विकसित भारत की तस्वीर उभरती है। एक ऐसा भारत जो तकनीक, शिक्षा, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था में आगे हो। लेकिन इन सब के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, पानी।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, जल ही जीवन है। यह सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि सच्चाई है। बिना पानी के न खेती हो सकती है, न उद्योग चल सकते और न ही हमारा दैनिक जीवन।
1: आज स्थिति यह है कि कहीं शहरों और गांवों में पानी की कमी महसूस की जा रही है, कहीं भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है तो कहीं नदियां प्रदूषण का शिकार हो रही हैं।
0: ऐसे में भारत 2047 का सपना तभी पूरा होगा जब हम अपने जल संसाधनों को बचाने और पुनर्जीवित करने के लिए अभी से गंभीर प्रयास करें।
1: जी हाँ दोस्तों, भारत नदियों, झीलों, तालाबों और भूजल जैसे अनेक जल स्रोतों में समृद्ध देश है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मद, गोदावरी और कावेरी जैसी नदियाँ करोड़ों लोगों की जीवन रेखा है।
0: बिल्कुल, लेकिन बढ़ती आबादी, शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन के कारण इस संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। इसलिए अब सिर्फ पानी का उपयोग ही नहीं बल्कि उसका संरक्षण भी बहुत ज़रूरी हो गया है।
1: तो दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं कि हमारे सामने मुख्य चुनौतियाँ क्या है। सबसे बड़ी चुनौती है भूजल का अत्यधिक दोहन। कई क्षेत्रों में लोग ज़रूरत से ज़्यादा पानी निकाल रहे हैं। दूसरी चुनौती है जल प्रदूषण। उद्योगों का अपशिष्ट, प्लास्टिक कचरा और घरेलू गंदगी नदियाँ और तालाबों को प्रभावित कर रही है।
0: बिल्कुल, तीसरी चुनौती है वर्षा जल का उचित संग्रह न होना। बारिश का बहुत बड़ा हिस्सा बहकर निकल जाता है। और चौथी चुनौती है जलवायु परिवर्तन। कभी अत्यधिक बारिश होती है तो कभी सूखे जैसी स्थिति बन जाती है।
1: जी हाँ दोस्तों, पुनर्जीवन का अर्थ केवल पुराने तालाबों की सफाई नहीं, इसका अर्थ है जल स्रोतों को फिर से जीवंत बनाना।
0: जब किसी

0: आप सभी जानते होंगे कि भारत में सदियों से तालाब, कुएं, बावड़ियां और झीलें जल संरक्षण का माध्यम रही हैं। राजस्थान की बावड़िया और उत्तराखंड के पारंपरिक जल स्रोत इसका शानदार उदाहरण रहे हैं। आज आवश्यकता है कि इन पारंपरिक प्रणालियों को आधुनिक तकनीक से जोड़ा जाए।
1: बिल्कुल, अब सवाल यह उठता है कि युवा क्या कर सकते हैं इसके लिए?
0: बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले पानी की बर्बादी को रोकें, घर में नल खुला ना छोड़ना, जरूरत के अनुसार पानी का उपयोग करना और दूसरों को जागरूक करना छोटी लेकिन महत्वपूर्ण शुरुआत हो सकती है। युवा जल संरक्षण अभिनियमों में भाग लेकर समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।
1: बिल्कुल, आज तकनीक भी जल संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
0: स्मार्ट सेंसर, ड्रोन, सैटेलाइट और डेटा एनालिटिक्स की मदद से जल स्रोतों की निगरानी की जा रही है।
1: और तो और किसानों के लिए ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम जैसी तकनीकें पानी की बचत में मददगार साबित हो रही है।
0: कल्पना कीजिए 2047 का भारत, एक ऐसा भारत जहां हर नागरिक को स्वच्छ जल उपलब्ध हो,
1: जहां नदियां स्वच्छ और आविरल बह रही हो, जहां हर गांव और शहर जल संरक्षण को अपनी जिम्मेदारी समझता हो,
0: जहां तकनीक और जन भागीदारी मिलकर जल संकट को अवसर में बदल चुकी हो।
1: दोस्तों, जल संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, हम सभी का कर्तव्य है।
0: यदि आज हम पानी की हर बूंद का महत्व समझेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को जल संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: तो दोस्तों अब हम बात करेंगे भारतीय सिनेमा की दो ऐसी हस्तियों की जिन्होंने अपनी प्रतिभा और मेहनत से दर्शकों के दिलों में एक अलग ही पहचान बनाई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अभिनेता अशोक सराफ और प्रसिद्ध अभिनेत्री बीना राय के बारे में।
3: दो अलग अलग दौर, दो अलग अलग शैलियाँ, लेकिन दोनों का भारतीय सिनेमा में योगदान बेहद महत्वपूर्ण रहा।
2: दोस्तों जब भी मराठी सिनेमा और रंगमंच की बात होती है तो एक नाम बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है, अशोक सराफ।
3: जी हाँ दोस्तों, अशोक सराफ, इनका जन्म 4 जून 1947 को मुंबई में हुआ था। उन्होंने अपने अभिनय का सफर की शुरुआत रंगमंच से की थी और धीरे धीरे फिल्मों की दुनिया में अपनी पहचान बनाई।
2: बिल्कुल, उनकी खास बात यह रही कि उन्होंने हास्य अभिनय को एक नई ऊंचाई दी। उनका अंदाज इतना सहज और स्वाभाविक था कि दर्शक खुद को उनमें जुड़ा हुआ और महसूस करते थे।
3: जी हाँ दोस्तों, कई बार कॉमेडी को इतना आसान माना जाता है लेकिन वास्तव में लोगों को हंसाना सबसे कठिन कामों में से एक है और अशोक सराफ ने यह काम दशकों से बहुत खूबसूरती से करते आ रहे हैं।
2: बिल्कुल, उन्होंने मराठी फिल्मों के साथ साथ हिंदी फिल्मों में भी काम किया है। उनकी कॉमिक टाइमिंग इतनी शानदार थी कि कई फिल्मों में उनकी मौजूदगी ही मनोरंजन की गारंटी बन जाती है।
3: उनकी लोकप्रियता सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं थी बल्कि टेलीविजन पर भी उन्होंने दर्शकों तक खूब मनोरंजन किया।
2: हर सफल व्यक्ति की तरह अशोक सराफ की यात्रा भी संघर्षों से भरी रही। उन्होंने छोटे छोटे अवसरों से शुरुआत की और धीरे धीरे अपनी मेहनत के दम पर एक बड़ा मुकाम हासिल किया।
3: उनकी कहानी हमें सिखाती है कि प्रतिभा के साथ धैर्य और निरंतर प्रयास भी जरूरी है। अशोक सराफ को उनके विनम्र स्वभाव और जमीन से जुड़ी व्यक्तित्व के लिए जाना जाता है।
2: बिल्कुल, कई कलाकार सफलता मिलने के बाद बदल जाते हैं लेकिन अशोक सराफ हमेशा सफल और सहज बने रहे।
3: शायद यही कारण है कि उन्हें केवल एक अभिनेता नहीं बल्कि एक प्रेरणादायक व्यक्ति के रूप में देखा जाता है।
2: युवाओं के लिए अशोक सराफ की कहानी एक महत्वपूर्ण संदेश देती है।

0: यदि आप अपने काम से प्रेम करते हैं और लगातार मेहनत करते हैं तो सफलता देर से सही लेकिन जरूर मिलती है।
1: बिल्कुल। अब बात करते हैं हिंदी सिनेमा की एक ऐसी अभिनेत्री की जिन्होंने अपने सौम्य व्यक्तित्व और प्रभावशाली अभिनय से दर्शकों के दिलों में विशेष स्थान बनाया है।
0: हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री बीना राय की।
1: जी हाँ, बीना राय भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम दौर की उन अभिनेत्रियों में शामिल है जिनकी स्क्रीन उपस्थिति बेहद प्रभावशाली मानी जाती थी।
0: बीना राय का जन्म 1930 के दशक में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत उस समय की जब भारतीय सिनेमा तेजी से विकसित हो रहा था।
1: बिल्कुल, उनकी सुंदरता, आत्मविश्वास और अभिनय क्षमता ने उन्हें जल्दी ही दर्शकों के बीच लोकप्रिय बना दिया।
0: बीना राय ने अपने कई यादगार फिल्मों में काम किया। उनकी सबसे चर्चित फिल्मों में ऐतिहासिक और सामाजिक विषयों पर आधारित फिल्में रही हैं।
1: बिल्कुल, विशेष रूप से ऐतिहासिक किरदारों को निभाने में उनकी अदाकारी का काफ़ी प्रशंसा हुई है। वे पर्दे पे जब भी आती थी तो दर्शक उनके अभिनय और व्यक्तित्व से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते थे।
0: बीना राय की अभिनय शैली बहुत संतुलित और प्रभावशाली थी। वह अपने भावों और संवाद अदाकारी के माध्यम से पात्रों में जीवंत बना देती थी। आज भी उनकी फिल्मों को देखकर उस दौर के सिनेमा की गरिमा और खूबसूरती का अनुभव किया जा सकता है।
1: बिल्कुल, बीना राय का जीवन केवल अभिनय तक सीमित नहीं था। उन्होंने उस दौर में अपनी पहचान बनाई जब फिल्म उद्योग में महिलाओं के लिए अवसर और चुनौतियां दोनों अलग प्रकार की थी। उन्होंने अपने अपनी प्रतिभा और आत्मविश्वास से यह साबित किया कि महिलाएं हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकती हैं।
0: आज की युवा पीढ़ी बीना राय के जीवन से आत्मविश्वास, समर्पण और मेहनत की सीख ले सकती है। सफलता केवल प्रतिभा से नहीं मिलती बल्कि अनुशासन और निरंतर प्रयास से मिलती है।
1: दोस्तों, अगर हम अशोक सराफ और बीना राय के जीवन को देखें तो दोनों में एक बात समान दिखाई देती है, वह है अपने काम के प्रति समर्पण। एक ने हास्य अभिनय के माध्यम से लोगों को मुस्कुराना सिखाया
0: तो दूसरी ने अपने अभिनय से भारतीय सिनेमा को गरिमा और गहराई प्रदान की। दोनों ने अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल की और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बने।
1: बिल्कुल दोस्तों, किसी भी महान व्यक्ति की पहचान केवल उसकी उपलब्धियों से नहीं होती बल्कि उससे भी होती है कि वह समाज को क्या संदेश देकर जाता है। अशोक सराफ और बीना राय दोनों ने ही हमें यह सिखाया है कि मेहनत, लगन और सादगी सफलता की असली कुंजी है।

0: दोस्तों, आज के दौर में युवा केवल नौकरी तलाशने वाले नहीं हैं, बल्कि रोजगार देने वाले भी बन रहे हैं। नई सोच, नई तकनीक और बड़े सपनों के साथ भारत के युवा दुनिया में अपनी पहचान बना रहे हैं। अब हम बात करेंगे ऐसे ही दो युवा उद्यमियों के बारे में जिन्होंने संघर्षों को अपनी ताकत बनाया और एक सफल स्टार्टअप खड़ा किया।
1: जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करेंगे संयम जैन और सनी जैन की, जिन्हें देश भर के लोगों ने शार्क टैंक इंडिया में देखा और सराहा।
0: बिल्कुल दोस्तों, हर सफलता के पीछे एक कहानी होती है। कुछ कहानियाँ आसान होती है और कुछ संघर्षों से भरी होती है।
1: जी हाँ दोस्तों, संयम और सनी जैन की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। दोनों सौतेले भाई हैं, लेकिन उनके रिश्तों में अपनापन और भरोसा हमेशा बना रहा।
0: बिल्कुल, जीवन में उन्होंने कई कठिन परिस्थितियों का सामना किया। कम उम्र में पारिवारिक चुनौतियाँ आईं, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय आगे बढ़ने का रास्ता चुना।
1: एक दिलचस्प बात यह है कि संयम जैन की पढ़ाई में काफ़ी अच्छे थे, लेकिन उनका मन व्यवसाय और डिजिटल दुनिया में लगता था।
0: बहुत कम उम्र में उन्होंने ऑनलाइन बिजनेस और डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सीखना शुरू किया। जहां ज़्यादातर युवा केवल नौकरी के बारे में सोचते, वहीं उन्होंने खुद का व्यवसाय खड़ा करने का सपना देखा।
1: दोस्तों, सफलता की राह कभी सीधी नहीं होती।
0: संयम को शुरुआती दौर में धोखाधड़ी का सामना भी करना पड़ा था। उनके कुछ ऑनलाइन बिजनेस प्रयास असफल हुए और आर्थिक नुकसान भी हुआ,
1: लेकिन यही वह मोड़ था जहां उन्होंने हार मानने की बजाय सीखने का फैसला किया।
0: अक्सर लोग पहली असफलता के बाद रुक जाते हैं, लेकिन सफल लोग उसी असफलता को अगली सफलता की सीढ़ी बना लेते हैं।
1: इसके बाद दोनों भाइयों ने एक नया विचार सोचा। उन्होंने स्किन केयर और पर्सनल केयर के क्षेत्र में काम करने का निर्णय लिया और गर सोप नाम का एक ब्रांड शुरू किया।
0: बिल्कुल, उनका उद्देश्य था ऐसे उत्पाद बनाना जो आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों का संतुलन प्रस्तुत करे। शुरुआत छोटी थी, लेकिन सोच बड़ी थी।
1: दोस्तों, आज के समय में तकनीक का सही उपयोग किसी भी व्यवसाय को नई ऊंचाई तक पहुँचा सकता है।
0: बिल्कुल, संयम और सनी ने डिजिटल मार्केटिंग की शक्ति को समझा।
1: उन्होंने सोशल मीडिया, ऑनलाइन विज्ञापन और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अपने ब्रांड को लोगों तक पहुंचाया,
0: और यही वजह रही कि उनका स्टार्टअप तेजी से आगे बढ़ने लगा।
1: इसके बाद आया वह अवसर जिन्हें उन्हें राष्ट्रीय पहचान दिलाई। उन्होंने शार्क टैंक इंडिया में अपनी कंपनी प्रस्तुत की। शार्क्स ने उनके बिजनेस को समझा। मार्केटिंग रणनीति और आत्मविश्वास में काफ़ी सराहना मिली।
0: बिल्कुल, उनकी कहानी सुनकर कई लोग भावुक भी हुए, क्योंकि इसमें संघर्ष, मेहनत और दृढ़ संकल्प तीनों दिखाई देते थे। शार्क टैंक में उन्हें निवेश का प्रस्ताव भी मिला। आखिरकार उन्होंने निवेश स्वीकार किया और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने का अवसर प्राप्त किया।
1: लेकिन दोस्तों, केवल निवेश ही सफलता नहीं देता। सफलता मिलती है सही दिशा, मेहनत और लगातार सीखते रहने से। आज भारत स्टार्टअप्स का देश बनता जा रहा है।
0: देश के युवा नए नए विचार लेकर सामने आ रहे हैं। संयम और सनी जैन इसी नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे बताते हैं कि सफलता के लिए हमेशा बड़ी डिग्री ज़रूरी नहीं होती, लेकिन सीखने की इच्छा और मेहनत ज़रूरी होती है।
1: दोस्तों, आज तकनीक केवल इंजीनियरों तक सीमित नहीं है। जो व्यक्ति तकनीक को समझता है और उसका सही उपयोग करता है, वह किसी भी क्षेत्र में सफलता पा सकता है।
0: बिल्कुल, चाहे वह स्किन केयर हो, शिक्षा हो, कृषि हो या स्वास्थ्य। यही कारण है कि आज के युवाओं को तकनीक के साथ साथ उद्यमिता की भी समझ विकसित करनी ज़रूरी है।
1: तो दोस्तों, आपके पास कोई नया आइडिया है तो उससे डरिए मत। छोटी शुरुआत भी बड़े परिणाम ला सकती है।
0: बिल्कुल, गलतियाँ होंगी, असफलताएँ आएंगी, लेकिन सीखना नहीं छोड़ना चाहिए। यही बात संयम और सनी जैन की यात्रा हमें सिखाती है।
1: दोस्तों, हर पीढ़ी में अपने नायक होते हैं। आज के दौर में ऐसे युवा उद्यमी ही हमारे नायक हैं, जो नए अवसर पैदा कर रहे हैं और दूसरों को प्रेरित कर रहे हैं।
0: संयम और सनी जैन की कहानी हमें बताती है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, अगर इरादे मजबूत हो तो मंजिल ज़रूर मिलती है।

0: दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं भारतीय सिनेमा की एक ऐसी अभिनेत्री की जिन्होंने अपनी मेहनत, प्रतिभा और दमदार अभिनय से साउथ फिल्म इंडस्ट्री से लेकर बॉलीवुड तक अपनी अलग पहचान बनाई। हम बात कर रहे हैं प्रिया मणि की।
1: बिल्कुल, प्रिया मणि का जन्म 1984 को बेंगलुरु, कर्नाटक में हुआ था। बचपन से ही वे पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और अन्य गतिविधियों में भी काफ़ी सक्रिय थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि फिल्मों में आने से पहले वे मॉडलिंग भी किया करती थी।
0: बिल्कुल, स्कूल के दिनों में ही उन्होंने कई प्रसिद्ध सिल्क ब्रांड्स के लिए विज्ञापन किए। उनकी प्रतिभा को देखकर मशहूर निर्देशक भारती राज ने उन्हें फिल्मों में आने का अवसर दिया। हालांकि उस समय प्रिया मणि अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती थी, लेकिन किस्मत उन्हें अभिनय की दुनिया में ले आई।
1: बिल्कुल, प्रिया मणि ने अपनी पढ़ाई बेंगलुरु के श्री अरविंदो मेमोरियल स्कूल और बाद में बिशप कॉटन विमेंस क्रिश्चियन कॉलेज से पूरी की। वे अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम समेत कई भाषाएं धाराप्रवाह बोल सकती हैं।
0: उनके फिल्मी सफ़र की शुरुआत साल 2003 में तेलुगु फिल्म एवरे अटागांडू से हुई। शुरुआती फिल्मों में उन्हें संघर्ष का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, लगातार अपने अभिनय को निखारती रहीं।
1: फिर आया साल 2007 और फिल्म परुथीविरन। इस फिल्म ने प्रिया मणि की ज़िंदगी बदल दी। ग्रामीण परिवेश पर आधारित इस फिल्म में उनके अभिनय ने दर्शकों को भावुक कर दिया और समीक्षकों को भी प्रभावित किया।
0: इस शानदार प्रदर्शन के लिए प्रिया मणि को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान मिला। इसके साथ ही उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड और तमिलनाडु स्टेट फिल्म अवार्ड भी प्रदान हुए। यह उपलब्धि किसी भी कलाकार के लिए बेहद खास होती है।
1: बिल्कुल, इसके बाद प्रिया मणि ने कई भाषाओं की फिल्मों में लगातार शानदार प्रदर्शन किया। थिरकथा, राम पुथिया मुखम, रावणम, प्राचीयट्टम एंड द सेंट, विष्णुवर्धन और चारुलता जैसी फिल्मों में उनके करियर को नई ऊंचाइयां दी।
0: खास बात यह है कि प्रिया मणि ने हर तरह के किरदार निभाने का साहस दिखाया, चाहे भावनात्मक भूमिका हो, एक्शन हो या गंभीर सामाजिक विषय, उन्होंने हर किरदार को पूरी ईमानदारी से निभाया।
1: साल 2012 में आई कन्नड़ फिल्म चारुलता के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इस फिल्म में उन्होंने दोहरी भूमिका निभाई थी, जिसे दर्शकों और समीक्षकों ने खूब सराहा।
0: प्रिया मणि ने बड़े पर्दे के साथ साथ डिजिटल दुनिया में भी अपनी पहचान बनाई। वेब सीरीज द फैमिली मैन में उनके अभिनय के एक बार फिर साबित कर दिया कि किसी भी माध्यम से वह अपनी छाप छोड़ सकती हैं।
1: इसके अलावा वे नारप्पा, विराट पर्वम, जवान, आर्टिकल 370 और जवान ऑफिसर ऑन ड्यूटी जैसी चर्चित फिल्मों में भी नज़र आ चुकी हैं। आज भी वे भारतीय सिनेमा की सबसे सम्मानित अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं।
0: आपको एक और दिलचस्प बात बताएं कि प्रिया मणि प्रसिद्ध अभिनेत्री विद्या बालन के रिश्तेदार हैं। कला और संगीत का वातावरण उन्हें अपने परिवार से मिला है।
1: बिल्कुल, निजी जीवन की बात करें तो साल 2016 में उन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइजर मुस्तफ़ा राज से सगाई की और 2017 में दोनों ने विवाह कर लिया। अलग अलग धर्मों से होने के बावजूद दोनों ने अपने रिश्ते को मजबूती से निभाया और समाज के सामने खूबसूरत उदाहरण पेश किया है।
0: प्रिया मणि केवल एक सफल अभिनेत्री ही नहीं, बल्कि पशु संरक्षण और सामाजिक जागरूकता से जुड़ी अभिनयों में भी सक्रिय रूप से भाग लेती है। उन्होंने कई सामाजिक मुद्दों पर अपनी पहचान बुलंद की है।
1: राष्ट्रीय पुरस्कार, 3 फिल्मफेयर पुरस्कार और कई अन्य सम्मानों से सम्मानित प्रिया मणि का सफ़र यह सिखाता है कि अगर मेहनत और समर्पण सच्चा हो तो सफलता ज़रूर मिलती है।
0: और यही कारण है कि प्रिया मणि आज लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुकी हैं।

0: ये वो भी ऐप से, वाह।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: आरबीआई कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: हॉलीवुड की दुनिया से कई सितारे आए और गए, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपनी कहानी की वजह से नहीं बल्कि अपनी पूरी शख्सियत की वजह से इतिहास का हिस्सा बन जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी अद्भुत कलाकार की जिनका नाम है एंजेलिना जॉली।
4: बिल्कुल, एक ऐसी एक्ट्रेस, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और ह्यूमैनिटेरियन जिन्होंने अपने काम से करोड़ों लोगों को प्रभावित किया। उनकी फिल्में दुनिया भर में अरबों डॉलर की कमाई कर चुकी हैं। उन्हें कई बार हॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस भी माना गया है।
3: एंजेलिना जॉली का जन्म आज ही के दिन 1975 में कैलिफोर्निया में हुआ था। उनके पिता जॉन वाइट एक प्रसिद्ध अभिनेता थे, लेकिन एंजेलिना का बचपन संघर्षों से भरा रहा। माता पिता के अलग होने के बाद उनकी परवरिश उनकी माँ मार्केलाइन बेंटन ने की थी।
4: बिल्कुल, बचपन से ही उन्हें अभिनय में रुचि थी। उन्होंने ली स्ट्रेबर्ग्स थिएटर इंस्टीट्यूट में एक्टिंग सीखी और धीरे धीरे अपने सपनों को की ओर बढ़ने लगी।
3: उनके फिल्मी करियर की शुरुआत 1993 में साइबर 2 में हुई। इसके बाद हैकर्स फिल्म में उनकी भूमिका में लोगों का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन उनकी असली पहचान बनी जॉर्ज वैलेस और जिया जैसी फिल्मों से, जिसमें उनके अभिनय को क्रिटिक्स ने खूब सराहा।
4: फिर आया साल 1999 और फिल्म गर्ल इंटरप्टेड। फिर इस फिल्म में लीजा रो का उनका किरदार आज भी याद किया जाता है। इसी भूमिका के लिए एंजेलिना जॉली ने एकेडमिक अवार्ड ऑफ बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, गोल्डन ग्लोब अवार्ड और स्क्रीन एक्ट्रेस गाइड अवार्ड जीता।
3: जी हाँ दोस्तों, यह उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद वह हॉलीवुड की सबसे चर्चित अभिनेत्रियों में शामिल हो गई। साल 2001 में लारा क्रॉफ्ट टॉम राइडर रिलीज हुई और देखते ही देखते एंजेलिना जॉली दुनिया भर की एक्शन एक्टर्स में शामिल हो गई।
4: इस फिल्म की सफलता ने उन्होंने इंटरनेशनल सुपरस्टार बना दिया। उन्होंने इस किरदार के लिए

0: मार्शल आर्ट ट्रेनिंग ली और अपनी फिजिकल परफॉर्मेंस से दर्शकों को प्रभावित किया।
1: इसके बाद मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ, वांटेड, सॉल्ट, द टूरिस्ट जैसी फिल्मों में उनका एक्शन अवतार देखने को मिला। खास बात यह है कि उस समय में प्रति फिल्म 15 से 20 मिलियन डॉलर तक फीस लेने के वाली हॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली अभिनेत्रियों में ये शामिल हुई थी।
0: बिल्कुल, लेकिन एंजेलिना सिर्फ एक्शन रोल्स तक सीमित नहीं रही। उन्होंने माइटी हार्ट और चैंगलिंग जैसी फिल्मों में बेहद गंभीर और भावनात्मक भूमिकाएं निभाई है।
1: फिल्म में क्रिस्टिन कॉलिंस के किरदार के लिए उन्हें एकेडमिक अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्ट्रेस, बाफ्टा अवार्ड्स, गोल्डन ग्लोब अवार्ड, स्क्रीन एक्टर गाइड अवार्ड्स के लिए नॉमिनेशन मिला था। यह उनके अभिनय कौशल का बड़ा प्रमाण था।
0: एनिमेशन की दुनिया में भी उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है। शार्क टेल और कुंग फू पैंडा सीरीज में उनकी वॉइस एक्टिंग को भी काफ़ी पसंद किया गया है। कुंग फू पैंडा में उन्होंने टाइग्रेस नामक किरदार को अपनी आवाज़ दी थी।
1: साल 2014 में डिज्नी की फिल्म मेलिफिसेंट आई, जिसमें उन्होंने एक शक्तिशाली और रहस्यमय परी का किरदार निभाया। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफल साबित हुई और एंजेलिना की लोकप्रियता एक बार फिर नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई।
0: बिल्कुल, बाद में उन्होंने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की फिल्म एटर्नल्स में थेना का किरदार निभाया, जिससे वे मार्वल यूनिवर्स का भी हिस्सा बन गई।
1: दोस्तों, अब बात करते हैं उनके अवार्ड्स और अचीवमेंट्स की। एंजेलिना जोली को अपने करियर में कई अवार्ड्स मिले। एक अवार्ड एकेडमी का, एक अवार्ड ग्लोबल, 3 अवार्ड्स उनको गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स जीते। स्क्रीन एक्टर गाइड अवार्ड्स उन्हें 2 मिले थे और टोनी अवार्ड्स उन्होंने 1 जीता था।
0: तो दोस्तों, अब हम बात करते जा रहे हैं एक ऐसे शख्स की जिन्होंने कॉमेडी, फिल्मों, रेडियो, पॉडकास्टिंग और सामाजिक मुद्दों पर अपनी बेबाक राय से पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। ये है रसेल ब्रांड।
1: 4 जून 1947 को इंग्लैंड के एक्सेस में जन्मे रसेल ब्रांड का बचपन आसान नहीं था। छोटी उम्र में ही उन्होंने कई व्यक्तिगत और पारिवारिक चुनौतियों का सामना किया, लेकिन इन्हीं अनुभवों से उनके व्यक्तित्व को मजबूत बनाया।
0: अभिनय और मनोरंजन की दुनिया में उनकी रुचि बचपन से ही थी। स्कूल के नाटकों में हिस्सा लेने के बाद उन्होंने इटालिया कैंटी एकेडमी में प्रशिक्षण लिया। हालांकि उनका सफ़र कई मुश्किलों से भरा रहा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी।
1: साल 2000 में स्टैंड अप कॉमेडी के मंच पर कदम रखने के बाद रसेल ब्रांड ने धीरे धीरे अपनी अलग पहचान बनाना शुरू कर दी। उनकी बोलने की शैली, आत्मविश्वास और अलग तरह का हास्य लोगों को बेहद पसंद आने लगा।
0: टेलीविजन की दुनिया में उन्हें बड़ी सफलता मिली। बिग ब्रदर बिग माउथ के होस्ट के रूप में इस शो ने उन्हें ब्रिटेन के सबसे चर्चित टीवी चेहरों में शामिल किया।
1: कॉमेडी की दुनिया में भी उनका योगदान काफ़ी बड़ा रहा। उन्होंने कई स्टैंड अप कॉमेडी शोज किए थे।
0: रसेल ब्रांड का जीवन सफलता, संघर्ष, लोकप्रियता, विवाद और लगातार बदलावों से भरा हुआ है। इस स्टैंड अप कॉमेडियन से लेकर अभिनेता, लेखक, पॉडकास्ट और सामाजिक टिप्पणीकार बनने तक का उनका सफर बेहद दिलचस्प रहा है।
1: और यही वजह है कि रसेल ब्रांड आज भी दुनिया में सबसे चर्चित मीडिया व्यक्तित्वों में गिने जाते हैं, जिनकी कहानी लोगों को सोचने, सीखने और चर्चा करने का अवसर प्रदान करती है।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे,
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: हौसलों की उड़ान जब आसमान छू जाती है तो मंजिलों भी कदमों में झुक जाती है। कुछ कहानियाँ सिर्फ जीत की नहीं होती, वो जज्बे की पहचान बन जाती है। आज बात एक ऐसे खिलाड़ी की जिसने मुश्किलों को अपनी ताकत बनाया और दुनिया को दिखा दिया कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती।
5: बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं भारत के स्टार पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत की। 1988 को ओडिशा के बरगढ़ जिले में जन्मे प्रमोद भगत ने महज 5 साल की उम्र में पोलियो का सामना किया, जिससे उनके बाएं पैर का असर पड़ा। लेकिन जिस उम्र में कई लोग हार मान लेते हैं, उस उम्र में प्रमोद ने अपने सपनों को और मजबूत बना लिया।
4: 13 साल की उम्र में जब उन्होंने पहली बार बैडमिंटन मैच देखा तो इस खेल में उनका एक ऐसा रिश्ता बन गया जो उनको आज तक खास बनाए हुए है। सिर्फ 15 साल की उम्र में उन्होंने सामान्य खिलाड़ी के खिलाफ अपना पहला टूर्नामेंट खेला और वहीं से शुरू हुआ एक शानदार सफ़र।
5: लेकिन यह सफलता एक दिन में नहीं मिली। 2009 से लेकर 2026 तक उन्होंने पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में कई स्वर्ण पदक अपने नाम किए। सियोल, स्टॉक, मैंडविल, बेसल, टोक्यो, पाटाया और मनामा जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारतीय तिरंगे को ऊंचा लहराया है।
4: एशियन पैरा गेम्स में प्रमोद भगत का प्रदर्शन शानदार रहा। जाकर्ता 2018 और हांगझोऊ 2022 में उनको स्वर्ण पदक मिला। उन्होंने यह साबित किया कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पैरा बैडमिंटन खिलाड़ियों में से एक है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं क्रिकेट की दुनिया के कुछ ऐसे खिलाड़ी की जिन्होंने हमें काफ़ी प्रेरणा दी है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे एक शानदार ऑलराउंडर की जिन्होंने अपनी बल्लेबाजी, गेंदबाजी और जज्बे से पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड के टेस्ट कैप्टन बेन स्टोक्स की।
5: 4 जून 1991 को न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में जन्मे बेन स्टोक्स बचपन में अपने परिवार के साथ इंग्लैंड आए थे। यहीं से शुरू हुआ उनका क्रिकेट सफ़र। बेहद कम उम्र में ही उन्होंने अपने खेल से सबका ध्यान आकर्षित शुरू कर दिया।
4: बेन स्टोक्स ने 2011 में इंग्लैंड के लिए वनडे और टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था, जबकि 2013 में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में कदम रखा। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।
5: अगर उनके करियर का सबसे यादगार पल चुना जाए तो शायद 2019 क्रिकेट विश्व कप फाइनल सबसे ऊपर होगा।
4: उस ऐतिहासिक प्रदर्शन के लिए उन्हें फाइनल का मैन ऑफ द मैन चुना गया। यही नहीं, उसी साल उन्हें ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर और प्रतिष्ठित BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2019 का अवार्ड भी मिला था।
5: 2022 में उन्हें इंग्लैंड टेस्ट टीम का कप्तान बनाया गया और उनकी कप्तानी में टीम ने नया आत्मविश्वास और नई सोच हासिल की। मैदान पर उनका जुझारूपन और नेतृत्व क्षमता उन्हें दुनिया के सबसे प्रभावशाली क्रिकेटरों में शामिल करती है।
4: तो दोस्तों, अब बात करते हैं आज के इतिहास की। 1896 में आज के दिन दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनी के संस्थापक हेनरी फोर्ड ने अमेरिका के डेट्रॉइट शहर में अपना पहला मॉडल प्रशिक्षण के लिए उतारा था। 1993 में क्रिकेट इतिहास में ऑस्ट्रेलिया के महान स्पिनर शेन वॉन द्वारा फेंकी गई करिश्माई गेंद को बॉल ऑफ द सेंचुरी नाम दिया गया था। साथ ही आपको बता दें, 1936 हिंदी सिनेमा के दिग्गज को और सदाबहार अभिनेत्री नूतन शर्मा का जन्म आज ही के दिन हुआ था, जिन्होंने बंदनी और सुजाता जैसी फिल्मों के लिए याद किया जाता है।

तो दोस्तों अब समय है शेयर मार्केट की बात करने का। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 लगभग 23,416 अंकों के स्तर तक बंद हुआ और इसे करीब 11 अंकों की बढ़त दर्ज की गई है। वहीं सेंसेक्स ने भी सकारात्मक रुख दिखाया और लगभग 74,360 अंकों के स्तर पर कारोबार दिखाई दिया है।

0: दोस्तों, जीवन में सीखने और आगे बढ़ने का सफर कभी रुकना नहीं चाहिए। हर नया दिन हमें कुछ नया जानने, समझने और बेहतर बनाने का अवसर देता है। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। मैं थी आपकी दोस्त दिव्या, मेरे साथ है
1: गार्गी। नमस्कार।

0: युवाणी युवा साथियों सुना अभियान का हत्याने कार्यक्रम एफएम इंडेक्स 101.99 MHz पर ये विद भारतीय राष्ट्रीय सेवा का उदयपुर केंद्र है। आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, सुनते हैं हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा कि वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार हैं। उन्होंने बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
2: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
1: श्री टंडन ने कहा कि दोनों नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने भारत वेनेजुएला संबंधों को और मजबूत बनाने तथा विकासशील देशों के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची थीं। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त

0: विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसक के युग का अंत किया है और इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। सत्र में भाग लेने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सभी नेता मजबूत और अधिक समृद्ध पूर्वोत्तर के निर्माण के अपने संकल्प में एकजुट हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए फील्ड कमांडरों के वित्तीय अधिकार दोगुना करने को मंजूरी दे दी। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इन उपायों से 1,25,000 करोड़ रुपए से अधिक की खरीद में सुविधा होगी। मंत्रालय ने कहा कि वित्तीय शक्तियों में वृद्धि 100% तक की गई है और कुछ मामलों में ये दोगुने से भी अधिक है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूअल यात्री कार का लोकार्पण किया। इसका निर्माण मारुति सुजुकी ने किया है। इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि यात्री वाहनों में फ्लेक्स फ्यूअल तकनीक की शुरुआत केवल एक नए वाहन की शुरुआत नहीं है, बल्कि भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का एक नया अध्याय है। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि फ्लेक्स फ्यूअल वाहनों से प्रदूषण कम करने, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद मिलेगी। इससे देश को लगभग 1.5 लाख करोड़ रूपये की विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है और गैर जीवाश्म ईंधन उत्पादन क्षमता के मामले में विश्व के शीर्ष उत्पादकों में से एक बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस योजना की सफलता का मुख्य कारण यह है कि देश के नागरिकों ने ये समझ लिया है कि वे अपनी छतों पर बिजली खुद पैदा कर सकते हैं और बिजली बिल शून्य हो सकता है। इसके अलावा श्री जोशी ने आज विभिन्न मंत्रालयों और संस्थानों के अधिकारियों के साथ बैठक में सरकारी भवनों के छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली लगाने की प्रगति की भी समीक्षा की। भारत सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। गोवा के मडगांव में कल भारत ने सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराया। भारतीय टीम 6 साल बाद सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची है। फाइनल शनिवार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। 5 बार की विजेता भारतीय टीम और मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश आमने सामने होंगे। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज का दिन भारत के लिए मिलाजुला रहा। पुरुष डबल्स में एमआर अर्जुन और हरिहरन की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने मलेशियाई जोड़ी एरोन ताई और कैंग खाई रिंग को कड़े मुकाबले में हराया, लेकिन पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी कड़े संघर्ष के बावजूद पराजित हो गए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम 101.9 मेगाहर्ट्ज पर ये विविध भारती राष्ट्रीय सेवा का उदयपुर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं राजस्थानी गीतों का कार्यक्रम झूम को।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें,
2: मेल कीजिए salesairjc@gmail.com यानी salesairjc@gmail.com पर। हमारे चैनल हमेशा तत्पर, हमेशा सुरीले सफर पर।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: असली नोट से क्यों खेल रहा है?
1: ब्रो, ये फटा है।
2: सुन, कते फटे हैं पुराने नोट को?
3: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
1: वाओ, नया नोट मिलेगा?
2: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
3: RBI कहता है, स्मार्ट बनो,
4: कूल रहो।

0: राजस्थानी लोकगीतों का कार्यक्रम झूम को अभी आप सुन रहे हैं। अगला लोकगीत आपको सुनवाए उससे पहले ये संदेश।
1: 10 लाख की लॉटरी मुझे,
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से, वाह।
4: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।
7: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, पता है रेलवे स्टेशन पर टिकट लेने के लिए खुले पैसों की समस्या से अब मुक्ति मिल गई है।
8: हाँ, रेलवे स्टेशन पर सभी प्रकार के पेमेंट पेटीएम, गूगल पे, फोन पे जैसे प्रमुख UPI मोड से डिजिटल माध्यम द्वारा कर सकते हैं।
7: इसके लिए रेलवे स्टेशनों पर टिकट काउंटर, पार्सल ऑफिस, गुड्स एवं अन्य सभी स्थानों पर

0: QR कोड स्थापित किए गए हैं।
1: डिजिटल पेमेंट के माध्यम से न सिर्फ छुट्टे पैसों की परेशानी से मुक्ति मिल रही है बल्कि लेन देन में लगने वाले समय में भी कमी आ रही है।
0: उत्तर पश्चिम रेलवे का सभी से अनुरोध है कि डिजिटल पेमेंट का अधिक से अधिक उपयोग कर रेलवे के डिजिटल इंडिया की तरफ किए जा रहे प्रयास में सहयोग करें। ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ उत्तर पश्चिम रेलवे।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

राजस्थानी लोकगीतों का कार्यक्रम झूम को अभी आप सुन रहे हैं। कार्यक्रम में अगला लोकगीत आपको सुनवा रहे हैं माल्या दास और बद्री व्यास की आवाज़ में।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ।
2: हमें मेल कीजिए salesairjc@gmail.com यानी salesairjc@gmail.com पर। हमारे चैनल हमेशा तत्पर, हमेशा सुरीले सफर पर।

0: राजस्थानी लोकगीतों का कार्यक्रम झूम को अभी आपने सुना। ये है 101.9 FM। आइए जुड़ते हैं विद भारतीय राष्ट्रीय सेवा से, जहां से फौजी भाई सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम जय माला। कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।
1: कुछ ही पलों में फौजी भाई सुनेंगे जयमाला कार्यक्रम।
2: पापा लाइए 3,000।
3: क्यों भाई?
2: मेरी पॉकेट मनी।
3: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
2: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
3: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
2: अपना मोबाइल लाओ।
3: ले ले।
4: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
5: हर लेन देन अब है आसान।

प्रीति मिश्रा का नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं नया दौर फिल्म के गीत से, आवाज मोहम्मद रफी और बलबीर की, संगीत ओपी नैयर का, बोल साहिर लुधियानवी के।

0: अब सुनिए सेना पर आधारित गीत, स्वर गीत संगीत कैलाश खेर का।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

0: भारतीय सेना।
1: अभी आपने सेना पर आधारित गीत सुना, स्वर गीत संगीत कैलाश खेर का था। अब हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में कभी कभी फिल्म का गीत। साहिर लुधियानवी के लिखे इस गीत की धुन बनाई है खयाम ने।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: लीजिए सुनिए परदेस फिल्म का गीत कुमार सानू की आवाज में। नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने। फिल्म का नाम है परदेस।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज।

0: एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर. ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी.
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने.
0: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है. और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें, तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं.
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर.

0: अभी आपने शक्ति फिल्म में लता मंगेशकर को सुना। आर डी बर्मन के संगीत निर्देशन में गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने।
1: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली, बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
2: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
1: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
2: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
1: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
2: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। अब समय है एक छोटे से अंतराल का और वापस आते हैं अपने कार्यक्रम जयमाला में।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, पता है रेलवे स्टेशन पर टिकट लेने के लिए खुले पैसों की समस्या से अब मुक्ति मिल गई है।
4: हाँ, रेलवे स्टेशन पर सभी प्रकार के पेमेंट पेटीएम, गूगल पे, फोन पे जैसे प्रमुख यूपीआई मोड से डिजिटल माध्यम द्वारा कर सकते हैं।
3: इसके लिए रेलवे स्टेशनों पर टिकट काउंटर, पार्सल ऑफिस, गुड्स एवं अन्य सभी स्थानों पर QR कोड स्थापित किए गए हैं।
4: डिजिटल पेमेंट के माध्यम से न सिर्फ छुट्टे पैसों की परेशानी से मुक्ति मिल रही है बल्कि लेन देन में लगने वाले समय में भी कमी आ रही है।
3: उत्तर पश्चिम रेलवे का सभी से अनुरोध है कि डिजिटल पेमेंट का अधिक से अधिक उपयोग कर रेलवे के डिजिटल इंडिया की तरफ किए जा रहे प्रयास में सहयोग करें। ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ, उत्तर पश्चिम रेलवे।

जयमाला कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी फौजी साथियों का स्वागत है। लीजिए सुनिए लता मंगेशकर को फिल्म इम्तिहान में। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत की धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

लीजिए अब सुनिए सिलसिला फिल्म में लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों को। हसन कमल ने इस गीत को लिखा है और संगीत से सजाया है शिव हरी ने।

ये थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर फिल्म सिलसिला में। किशोर कुमार और लता मंगेशकर का ही गाया एक युगल गीत हम आपको और सुनवा रहे हैं कामचोर फिल्म से। इंदिवर के लिखे इस गीत की धुन बनाई है राजेश रोशन ने।

0: आप हैं विविध भारती के संग। इनसे मिलिए। इनसे मिलिए इस कार्यक्रम में
1: ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता।
0: आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं फिल्म निर्देशक इकबाल अली से। इनसे बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने।
1: दिल के लिए दिल का कोई पैगाम तो बता।
0: आज सुनिए पहला भाग।
1: कल के लिए अपना कोई प्रोग्राम तो बता।
0: दोस्तों नमस्कार, विविध भारती के स्टूडियो में आज हमारे साथ इकबाल अली साहब हैं, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अलग अलग तरह के काम किए हैं। तो आइए शुरू करते हैं इनसे दिलचस्प बातचीत का सिलसिला। बहुत बहुत स्वागत इकबाल अली साहब।
2: शुक्रिया, धन्यवाद।
0: आपका ताल्लुक तो फाइटर्स की फैमिली से रहा है ना?
2: जी जी।
0: जरा मुझे इस बारे में बताइए।
2: देखिए, ये उन दिनों की बात है, 80 और 90 के दशक की, जब ही मशहूर फाइट मास्टर अजीम भाई का नाम तो सुना होगा आपने।
0: बिल्कुल,
2: बहुत फेमस थे। उनके सहायक थे मेरे अंकल मंसूर अली, उस दौर के काफी चर्चित फाइटर थे और बहुत दिलेर थे। और उस दौर में सब ज्यादातर घोड़सवारी वगैरह और इसके ऊपर फिल्में ज्यादा बनती थी, तो वो बहुत अच्छे राइटर थे, मतलब बहुत अच्छे घोड़सवार थे।
0: बिल्कुल, और ये बहुत मुश्किल काम है घोड़सवारी फिल्मों में शूटिंग के दौरान,
2: बहुत मुश्किल है
0: जी।
2: लेकिन उनके लिए मुश्किल इसलिए नहीं था कि उनकी पिछली कुछ कहानी है, थोड़ा सा अगर बताना।
0: जरूर।
2: वो फिल्मों में आने से पहले जू चौपाटी के ऊपर घोड़े वगैरह चलाते थे।
0: अच्छा।
2: तो सेठी साहब, रोहित सेठी के पिता,
0: जो बहुत बड़े विलेन भी हुए।
2: हाँ, आप फाइट मास्टर भी थे।
0: जी बिल्कुल।
2: तो सेठी साहब अक्सर जो है वो जू चौपाटी पे आया करते थे, तो वो देखते थे कि ये लड़का जो है, ये मतलब जब फ्री वक्त होता था तो वो जो जितने भी घोड़सवार लोग थे वो सब अपने घोड़े को दौड़ाते थे आपस में, तो ये लड़का बहुत तेज दौड़ता है, बहुत आगे बढ़ता है। एक बार उन्होंने उनको बुलाया।
0: जी।
2: अब सेठी साहब तो बहुत फेमस थे भाई, क्योंकि वो एक्टर भी थे, तो मेरे अंकल को बहुत शौक था फिल्म के अंदर ये स्टंट वगैरह करने का, लेकिन कोई जरिया नहीं था, कोई रास्ता नहीं था, एंट्री नहीं थी वहां जाने की। तो जब सेठी साहब से मिले तो बहुत मतलब वो इमोशनल हो गए। तो सेठी साहब ने उनसे कहा कि भाई आप तो बहुत अच्छे घोड़सवार हो, फिल्मों में क्यों नहीं ट्राई करते हो? तो उन्होंने कहा सर अगर आपकी सब कृपा हो जाए तो मैं बिल्कुल ये सब करूंगा। सेठी साहब के वजह से ही इंडस्ट्री में उनकी एंट्री हुई हकीकत में देखा जाए तो। उसके बाद में उन्होंने अजीम भाई के साथ में काम किया, क्योंकि अजीम भाई घोड़े के स्पेशल थे, मतलब घोड़े वगैरह का जो सीन होता था, डाकू वगैरह की जो फिल्में होती थी पहले, तो वही सब चलता था ना। तो उसके जो स्पेशलिस्ट फाइट मास्टर थे वो अजीम खान थे। अब अजीम भाई ने इनको अपना सहायक रख लिया और ये स्टंट बहुत करते थे, बहुत दिलेर थे सब। मैं एक छोटा सा वाक्य आपको बताना चाहता हूँ,
0: जरूर,
2: मेरे खुद की नजरों के सामने का वाक्य है।
0: जी।
2: मेरे अंकल के साथ, मंसूर अली के साथ अक्सर शूटिंगों पे जाया आया करता था, मुझे बड़ा शौक था तो मैं जाता था। तो ये घोड़बंदर की बात है, यहीं मुंबई में घोड़बंदर है, घोड़बंदर में फिल्म गंगा की सौगंध, सुल्तान अहमद साहब उसको डायरेक्ट कर रहे थे। तो गंगा की सौगंध का क्लाइमेक्स शूट हो रहा था, अमित जी भी थे और स्वर्गीय अमजद खान साहब। तो

0: साहब एक सीन था चार्टर प्लेन वाला, यानी अमजद खान साहब जो है चार्टर प्लेन में रहते हैं और अमित जी जो है नीचे घोड़ा दौड़ा रहे हैं, और बहुत ही करीबी मामला उस फिल्म में आप देखिएगा, बहुत ही करीबी मामला है। अब उस टाइम तो साहब इतनी हिफाजत वगैरह होती नहीं थी जैसा आजकल है कि आदमी मतलब अगर कोई स्टैंड वगैरह करता है तो कुछ सिक्योरिटी मिल जाती है, उस टाइम तो इतना कुछ था नहीं, तो ये तो बिंदास करते थे अपने कॉन्फिडेंस से, अपने भरोसे से और दिलेरी से। तो साहब इन्होंने इतना खतरनाक वो सीन किया, अमजद खान साहब इतना इम्प्रेस हुए, मैं आपको क्या बताऊं, मेरी नज़रों की बात है, अमजद खान साहब ने इनको गले से लगा लिया, गले से लगा के साहब इनको उस टाइम अमजद खान साहब ने 1000 रुपया इनको इनाम दिया।
1: जी
0: देखिए सवाल पैसे का नहीं है, सवाल बख्शिश का है। उन्होंने बख्शिश दी और उन्होंने कहा कि वाकई में आप बहुत अच्छे घुड़सवार हैं, मतलब उन्होंने काफी तारीफ की। तो वहां से फिर मेरा जो था मतलब रुझान और बढ़ गया। पहले तो मैं सोचता था मैं करूं क्या, मुझे इस फील्ड में तो आना है लेकिन मैं एक्टिंग में आऊं या मैं एक्शन में आऊं या मैं किस में आऊं, मतलब मैं थोड़ा कंफ्यूज था। लेकिन जब मैं जाने आने लगा हमारे अंकल के साथ, तो मैं देखता था कि जो निर्देशक है, जो डायरेक्टर है, वही फिल्म का मेन होता है। वो कट बोलता है तो कट हो जाता है, वो रिटेक बोलता है तो रिटेक हो जाता है। उसके इशारों के ऊपर, उसके उंगलियों के ऊपर और उसके बोलचाल के ऊपर आर्टिस्ट जो है अपना काम करता है।
1: यस,
0: पूरा डिपार्टमेंट उसके इशारों पर नाचता है। तो मैंने बोला नहीं, ये काम सही है, ये करना चाहिए। तो मैं वहां पर आकर्षित हुआ, उस तरफ मैंने अपना फोकस किया। बस ये देखिए कि कहते हैं ना कि जो ईश्वर को, अल्लाह को जो मंजूर है वही होता है। एक वाकया ऐसा हो गया
1: जी,
0: एक फिल्म बन रही थी ब्रिज सदाना साहब की। ब्रिज सदाना साहब काफी बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर रह चुके हैं,
1: बिल्कुल,
0: विक्टोरिया लेम्बर 203 और बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं उन्होंने, कमल सदाना के पिताजी। ब्रिज सदाना साहब जो है वो एक फिल्म बना रहे थे, बॉम्बे 405 माइल्स फिल्म का नाम था,
1: मशहूर नाम है ये फिल्म का।
0: फिल्म अच्छी भी अच्छी चली भी थी वो। उस फिल्म के अंदर विनोद खन्ना साहब थे, शत्रुघ्न सिन्हा साहब थे, अमजद खान साहब, प्राण साहब, जीना तमान वगैरह उसमें थी। तो उस फिल्म का क्लाइमेक्स जो है वो महाकाली, यहाँ पर मुंबई के अंदर महाकाली गुफा है, वहां पर उसका क्लाइमेक्स फिल्माया जा रहा था। उस टाइम मैं नहीं था वहां पर मौजूद, वरना मैं हमेशा अपने अंकल के सेट पे जब मुंबई में शूटिंग होती थी तो मैं हमेशा रहता था, लेकिन उस टाइम मैं नहीं था। शूट हो रहा था और कुछ ब्लास्टिंग का सीन था, सेट्टी साहब, रोहित सेट्टी के पिता, आप फाइट मास्टर थे उसके, सेट्टी साहब से कुछ टाइमिंग मिस हो गई, उनको जंप मारना था और उसके बाद सेट्टी साहब को ऑर्डर देना था कि ब्लास्ट करो, और पेट्रोल ब्लास्ट था, क्योंकि पेट्रोल ब्लास्ट तो आप जानते हैं कि पेट्रोल की बहुत बड़ी थ्योरी वगैरह रखी जाती है और वो बहुत खतरनाक ब्लास्ट होता है, उसकी चपेट में अगर कोई आदमी आ जाए तो टोटल लॉस, बचता ही नहीं है। सर ऐसा था कि उनको जंप मारना था और यहाँ से इनको ऑर्डर देना था,
1: जी जी,
0: लेकिन वो थोड़ा सा टाइमिंग मिस हो गई।
1: ओहो हो,
0: उन्होंने जैसे ही किया इन्होंने ऑर्डर दे दिया सेट्टी साहब ने,
1: फिर
0: क्या, आग की चपेट में आ गए
1: जी
0: और 100% जल गए। वहां से बहुत बड़ा धक्का लगा हमको और कुछ दिनों के बाद, 2-4, 10 दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। काफी इंडस्ट्री ने शोक प्रकट किया, लेकिन सर हमारा तो मतलब सब कुछ चला गया और ये समझ लो कि मेरा वक्त थम्स आ गया। अब हमारे परिवार को फिल्म लाइन से नफरत होने लगी,
1: जी जी,
0: भाई उनका एक जवान चला गया, अब मैं संघर्ष करूं तो कैसा करूं। लेकिन मुझे तो मतलब एक नशा था फिल्म लाइन का और मैं तो मतलब निर्देशक ही बनना चाहता था,
1: जी जी,
0: तो मैं चोरी चोरी छुपे छुपे जो है फिल्म लाइन में जाना लगा। लेकिन मेरे अंकल का नाम था और मैं उनके साथ जाता था तो मेरी थोड़ी बहुत जान पहचान थी और लोग मुझे जो है इज्जत की नज़र से देखते थे। उसके बाद में सर ऐसा हुआ कि मुझे काम मिलने लगा, काम ये मिलने लगा कि प्रोडक्शन में मैं लग गया। अब जो मुझे काम सीखना है, जो मिलेगा वो करूंगा,
1: बिल्कुल।
0: तो मैं प्रोडक्शन के अंदर, मैंने कई फिल्में जो है वो प्रोडक्शन में, असिस्टेंट प्रोडक्शन और प्रोडक्शन मैनेजर में मैंने की।
1: हाँ,
0: एक्चुअली मेरा फिल्म दुनिया से काफी पुराना संबंध है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे पिता बहुत पहले, मतलब तकरीबन 35-40 साल पहले, 50 साल पहले बोल सकते हैं आप, क्योंकि हम लोगों का घोड़ों का कारोबार था तो घोड़े वगैरह भी फिल्मों में देते थे, वो चीज मेरे दिमाग में थी। मैंने बड़ी बड़ी फिल्में की, मैंने उफिये मोहब्बत, विपिन हांडा जी, जिसमें ट्विंकल खन्ना, अभिषेक कपूर, गट्टू जी जो कायपो 6 के बाद में जो है निर्देशन किया था और काफी अच्छे इंसान है, अनुपम खेर जी थे। अच्छा देखिए सर, इसके पीछे भी एक मैं आपको छोटा सा बताना चाहता हूँ कि पहलाज नहलानी जी के साथ में मैंने आके फिल्म की थी।
1: अरे वो तो बहुत बड़ी फिल्म थी।
0: हाँ, पहलाज जी बहुत अच्छे इंसान हैं और मैं पहलाज जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उनकी बदौलत मुझे फिल्म इंडस्ट्री में काफी काम मिला। पहलाज जी जो थे उन्होंने कहीं से पहलाज जी का नंबर मिला, पहलाज जी ने मुझे बुलाया, पहलाज जी से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि मैं आके फिल्म बना रहा हूँ गोविंदा को लेके, चीची को लेके। पहलाज जी बोले नहीं इकबाल, तू बंदा अच्छा है, तू एक काम कर प्रोडक्शन में आ जा। तो मतलब सर इससे बड़ी बात क्या है, मैं उनके साथ में प्रोडक्शन में लग गया कुछ दिन के लिए, बलवन जी प्रोडक्शन मैनेजर थे, मैं उनके साथ में कुछ दिन लगा, एक बड़े काम का बंदर उस गाने के अंदर जो मेरे से हो सका वो मैंने उसमें किया। उसमें एक हादसा हो गया था सर
1: जी,
0: शायद वो हादसे की वजह से प्रहलाद जी के दिल में

0: मेरे लिए कुछ जगह बन गई हो। हादसा ये हुआ था कि हम लोग जूह चौपाटी के ऊपर गाना कर रहे थे, बड़े काम का बंदर, उसके अंदर आपने देखा होगा रस्सी पे एक लड़की चलती है, नट नट वगैरह बोलते हैं ना,
1: बिल्कुल,
0: खेल तमाशा करते हैं, तो गाने के अंदर ऐसा बताया है। तो वो लड़की चल रही थी और भाई फुल गर्मी का मौसम था, तो अचानक वो लड़की थी वो बेचारी गिर गई। अब गिरी तो सर के बल सर बेहोश हो गई। वहां गोविंदा साहब थे, चिंकी पांडे थे, पहलाज जी थे और तरुण डांस मास्टर थे, सब चौंक गए एकदम। मैंने उठाया क्योंकि उसको मैं लाया था ना, मेरी जवाबदारी थी, उठा के उसको थोड़ा सा पानी नहीं पिलाया तो सब घबरा गए कि अब क्या होगा, क्योंकि सेट के ऊपर ऐसा हो गया है भाई। दो बातें हैं, एक तो इंसान तकलीफ हुई है, दूसरी अगर शूटिंग नहीं होगी तो लाखों का नुकसान हो जाएगा, दोनों बातें हैं ना। मैं उसको तुरंत उठा के हॉस्पिटल ले गया नजदीक के, बोला सर मुझे सिर्फ एक आधा घंटा दीजिए, आप आधे घंटे तक आप अपना जो काम है दूसरा कुछ कर लीजिए, और मैं जाके उसका मतलब फटाफट जो भी ट्रीटमेंट होता था वो करवाया, तो इंजेक्शन वगैरह डॉक्टर ने दिया और कुछ किया, तो वो थोड़ा ठीक हो गई। भाई मैं तो फिल्मी आदमी हूँ, मुझे पता है कि अगर ये काम नहीं होगा तो नेचुरली नुकसान हो जाएगा। उनसे आग्रह किया वो लड़की से कि बेटा तू अभी ठीक है, तो उन्होंने बोला हाँ मैं ठीक हूँ, तो आप खाली एक शॉट, क्योंकि वो मास्टर शॉट था, अगर वो शॉट नहीं देते तो बड़ी मुश्किल हो जाती। तो मैंने बोला एक मास्टर शॉट है, आप अगर दे सकते हो तो दे दीजिए, इससे जो है प्रोड्यूसर का मतलब नुकसान होने से बच जाएगा, और हम लोग फिल्मी हैं, हम लोग जो है मतलब काम करने वाले हैं, टेक्नीशियन है, हमारा फर्ज है प्रोड्यूसर की हेल्प करना। तो उन्होंने सर वो शॉट दिया, वो शॉट ओके हो गया, इतने खुश हुए पहला जी कि मुझे गले लगा लिया, मुझे गले लगा के समुद्र के किनारे मेरे कंधे पे हाथ रख के चले गए, पैकअप बोल दिया तरुण जी ने और हम चले गए, मुझे 10,000 रुपये निकाल के पहला जी ने मेरे हाथ में रख दिया। बोला सर ये किस बात का, बोले ये आपका, आपने आज बहुत अच्छा काम किया। मैं बोला सर नहीं नहीं ये पैसे का तो सही हकदार मैं नहीं हूँ, इस पैसे के सही हकदार वो बच्ची है कि पैसा उसको मिलना चाहिए। बोले आप अपने हाथ से दो, मुझे इसमें शामिल मत करो, देखिए पहला जी का भी बड़कपन देखिए। मैंने फिर वो बच्ची को जाके मैंने वो पैसा उसको दे दिया, मैंने बोला ये रखो आप, अगर आपको कोई और कुछ तकलीफ है तो बताइएगा, वैसे तो वो नॉर्मल थी। खैर ये हुआ तो पहला जी के दिल में शायद मेरे लिए कुछ जगह बन गई। अब मैं उफ ये मोहब्बत पे आ जाता हूँ फिर से, विपिन हांडा जी उफ ये मोहब्बत बना रहे थे, डब्लू राव जी कैमरामैन थे, खुदा गवाह वगैरह बहुत बड़ी बड़ी फिल्में की डब्लू राव जी ने। विपिन हांडा जी की ऑफिस नहीं थी तो उन्होंने होटल के अंदर अपनी ऑफिस बनाई हुई थी, मुझे वहां बुलाया पहला जी के जरिए, पहला जी ने उनको नंबर दिया, पहला जी ने बोला एक ही बंदा है इकबाल, वो सब कुछ कर देगा और उसको बहुत शौक है, और वो लड़का ऐसा है कि मतलब आपका प्रोडक्शन भी संभाल लेगा, आपका सब कुछ कर लेगा। उन्होंने मुझे बुलाया सर, तो वहाँ डब्लू राव भी थे, अब डब्लू राव इतने बड़े कैमरामैन, मैं फर्स्ट टाइम उनसे मेरी मुलाकात हुई, रूबरू हुआ मैं, तो डब्लू राव जी ने काफ़ी अच्छे इंसान है। उसमें ट्विंकल खन्ना, अभिषेक कपूर
1: जी
0: और अनुपम खेर ये आर्टिस्ट थे, वो फिल्म मैंने पूरी की, कंप्लीट की, उनके साथ में मैं जुड़ा रहा। पर मेरा तो मकसद था डायरेक्टर बनने का, तो मैं तो मतलब अपना जो डायरेक्टर जो करता था, जो डायरेक्शन देता था, जो बोलता था, मैं बस उसको ही फॉलो करता रहता था। तो सर ऐसा मैं सीखता गया, मैंने बहुत सी फिल्में की।

0: फिल्म निर्देशक इकबाल अली से बातचीत का पहला भाग अभी आपने सुना। एक तमन्ना जीवन की। इनसे बातचीत की आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। अंगना में बाबा द्वारे पे मां। रिकॉर्डिंग इंजीनियर मंगेश सांगले।
1: कैसे आए गौरी हम तोहरे घर मां।
0: प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

आज के हवा महल कार्यक्रम में प्रस्तुत है झलकी रूटीन केस, लेखक राजकुमार दाग, निर्देशक दीनानाथ।

0: पर मेरी मछली कितना पानी,
1: इतना पानी,
0: हरे समुंदर को भी जंगल पर मेरी मछली कितना पानी।
2: अबे तानसेन की औलाद बंद कर रे आग्रंग, तुम्हें मालूम है कि मैं बीमार हूँ, बिस्तर पर पड़ा हूँ, फिर भी तुमने घर सिर पर उठा रखा है। अरे जाकर पढ़ती क्यों नहीं, जाओ अपने स्कूल का काम करो।
0: एक बटे दो, दो बटे चार, छोटी छोटी बातों में बढ़ गया धंधा। एक बटे दो, दो बटे चार,
2: अबे ये स्कूल का काम है, ये पढ़ाई है।
0: एक बटे दो,
2: हो गया है दुनिया को। अबे ओ बदतमीज, तो बंद करो ये शोर, वरना मार मार के हड्डी पतली एक कर दूंगा।
0: मोहब्बत
2: कहाँ तक आ गई है, तुम मुझे जान से ही मार डालना चाहते हो। क्या जमाना आ गया है, ये कैसी फिल्में आ गई है। और मैं कहता हूँ बंद करो ये हंगामा, वरना अगर मैं सचमुच ही मर गया तो क्या करोगे, क्या कहोगे दुनिया से। क्या कौन?
3: डॉक्टर साहब बुलाई हूँ जी।
2: डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब जल्दी आइए, जल्दी आइए, और कोई ऐसा टीका निकालिए जिससे या इन्हें खामोश कर दीजिए या मुझे बेहोश कर दीजिए।
4: रूटीन केस है
2: डॉक्टर साहब, जल्दी कीजिए और इनका कुछ कीजिए वरना मैं पागल हो जाऊंगा।
5: मुझे भूख लगी है,
1: मुझे कलर मम चाहिए स्कूल के लिए,
4: रूटीन केस है,
1: पैर चाहिए,
5: मुझे पाल चाहिए,
2: रूटीन केस है, सिर चाहिए सिर। डॉक्टर साहब अभी कुछ देर पहले ये मुझे जान से मार देने की धमकी दे रहे थे, ये मेरी औलाद नहीं है, ये मेरे दुश्मन है, दुश्मन।
3: जाओ तुम अंदर जाओ, चलो चलो तुम भी जाओ। डॉक्टर साहब इसी तरह की बातें और हरकतें ये कई दिन से कर रहे हैं, कभी मुझे कोसते हैं, कभी बच्चों पर बरसते हैं, समझ में नहीं आता कि इन्हें क्या हो गया है। डॉक्टर साहब

0: इट इज अ रूटीन केस।
1: क्या रूटीन केस लगा रखी है? तुम डॉक्टर हो या होकर एक ही बात बोलते चले जा रहे हो, और तुम्हारा दवाइयों का बैग भी नहीं है तुम्हारे पास, जबकि मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है।
0: रूटीन केस है। आपके घर में आईना है? मेरा मतलब है मुंह देखने का शीशा।
2: जी हाँ है।
0: जो बड़े से बड़ा हो वो लाइए।
2: अच्छा,
1: आईना, शीशा।
3: मेरा दर्द से सिर फटा जा रहा है।
2: आईना लीजिए डॉक्टर साहब।
0: लाइए। मिस्टर कस्तूरीलाल, इस आईने को अपने दोनों हाथों से अपने सामने पकड़िए।
1: पकड़ लिया।
0: इस आईने में आपको क्या दिखाई दे रहा है?
1: क्या दिखाई दे रहा है? हाँ? अरे आईना मेरे सामने होगा तो मैं ही दिखाई दूंगा, और कि तुम दिखाई दोगे।
0: करेक्ट। अब आईने में अपने आप को देखो। हाँ? और उंगली के इशारे से समझाते हुए 5 बार बोलो। हाँ? मुझे सिर दर्द नहीं है, मुझे सिर दर्द नहीं है, मुझे सिर दर्द नहीं है, एंड सो ऑन।
1: मैं पूछता हूँ, तुम डॉक्टर हो या मरारी? मैं
0: बोलो।
1: बोलता हूँ।
2: बोलिए ना, बोलिए।
1: बोलता हूँ मुझे सिर दर्द नहीं है, मुझे सिर दर्द नहीं है, मुझे सिर दर्द नहीं है, मुझे सिर दर्द नहीं है, मुझे सिर दर्द नहीं है।
0: सिर दर्द गया?
1: हाँ, पहले से कम है।
0: इट इज ऑलवेज द केस।
1: इन्हें कहां से उठा लाई सावित्री तुम?
0: मैं बताता हूं, मैं एक साइकेट्रिस्ट हूं, मानसिक रोगों का डॉक्टर, और यहां आने के बाद मैं अच्छी तरह समझ गया हूं कि यहां बीमारी का असल कारण क्या है।
1: यकीनन आपका मतलब है बच्चे जो मुझे जान से मार देने पर उतारू हैं।
0: जी नहीं, आपके बच्चे बिल्कुल नॉर्मल हैं, बल्कि बहुत मासूम, बहुत ही प्यारे। हाँ, आपकी ये परेशानी कि वो आपकी जान के दुश्मन हैं, फकत आपकी कल्पना है, सिर्फ आपका तसव्वुर।
1: कल्पना? तसव्वुर?
0: जी हाँ, जस्ट दैट। और उसका इलाज है।
1: इसका इलाज?
0: इसका इलाज है अपने मन को समझाना।
1: यानी
0: आप अपने मन को समझाइए। हाँ। कि आपको जो फिक्र और परेशानी है, हाँ, असलियत में ऐसा कुछ नहीं है।
1: हाँ।
0: और जो है, हाँ, वो महज कल्पना है।
1: कल्पना?
0: इमेजिनेशन। ऐसा करने से आप हमेशा खुश रहेंगे, आपकी हर मुसीबत खत्म हो जाएगी। हाँ। और आपके बच्चों का ये शोर मधुर संगीत में बदल जाएगा।
1: ऐसा?
0: जी हाँ, मनोविज्ञान इसी का तो नाम है। जी हाँ। अब आप बताइए।
1: हाँ।
0: अभी कुछ देर पहले, हाँ, आपके सर में दर्द था।
1: हाँ।
0: मैंने आपका मनोवैज्ञानिक इलाज किया।
1: हाँ।
0: क्या अब आपको सिर दर्द है?
1: अरे
0: है?
1: बोलिए। वाकई डॉक्टर साहब, मुझे तो बिल्कुल सिर दर्द नहीं है। और सच तो यह है कि मैं बिल्कुल भूल ही गया हूं कि मुझे सिर दर्द था।
0: बस यही मन की साइंस है।
1: हाँ।
0: दरअसल आदमी कल्पना कर लेता है कि उस पर मुसीबतें टूट रही हैं।
1: हाँ।
0: और इस तरह वो खुद को परेशान कर लेता है।
1: अच्छा।
0: जबकि उसे इन पर हंस देना चाहिए।
1: हाँ।
0: नजरअंदाज कर देना चाहिए। इंसान की कल्पना ही।
1: कौन?
4: बाबूजी, बिजली का बिल लाया हूं।
1: अभी आया। लाओ
4: बाबूजी। हाँ। यहाँ दस्तखत कर दीजिए।
1: कहाँ?
4: यहाँ।
1: अच्छा लो। क्या इतना ज्यादा बिल?
4: अजी बाबूजी, बिल तो यही जाहिर कर रहे हैं।
1: ये इतना ज्यादा कैसे?
4: अजी आपके मीटर की खराबी होगी।
1: तो फिर मैं बिल नहीं लेता, आप इसे ठीक करवा के लाइए। जी
4: अजी बाबूजी, बिल तो आपको लेना ही पड़ेगा।
1: है?
4: हाँ, और बिल जमा भी कराना पड़ेगा, वरना आपकी बिजली कट जाएगी। हाँ, आप ऐसा कीजिए कि हमारे दफ्तर में आके मीटर की कंप्लेंट लिखवा दीजिए, मीटर चेक होने पर और गलत निकलने पर रिफंड मिल जाएगा। और हाँ, आपकी सहूलियत के लिए बता दूं कि हमारे दफ्तर के बिलिंग डिपार्टमेंट में एक दो खिड़कियां छोड़ के खिड़की नंबर 3 पे मिस कल्पना बैठे हैं। क्या कही?
1: कल्पना?
4: मिस कल्पना।
1: अरे मैं किसको चक्कर में पड़ा हुआ है? अरे ये तो सब मेरी कल्पना है कि मुझे बिल मिला है।
4: क्या कही?
1: वाह भाई वाह, दिस इज जस्ट माई इमेजिनेशन। अरे कुछ नहीं भैया, ला ला इधर, ला इधर ला बिल। मैं भी खाम खाम परेशान हो रहा हूँ।
5: बाबू कस्तूरीलाल जी, जय राम जी।
1: आइए आइए रामलाल जी, जय राम जी की।
5: कहिए।

0: जनाब क्या हो रहा है?
1: बस मजे हो रहे हैं रामलाल जी, आप सुनाइए क्या हो रहा है?
0: सत्संग हो रहा है।
1: सत्संग?
0: जी हाँ सत्संग।
1: अच्छा अच्छा।
0: उसी सिलसिले में आया हूँ।
1: मतलब?
0: बस थोड़ी आपकी श्रद्धा चाहिए।
1: मतलब?
0: ये रसीद है।
1: मगर मैं भी क्या सोच रहा हूँ, ये भी कोई परेशानी की बात है? ये लो, बोला ये भी कोई हकीकत है?
0: जी।
1: अरे सोच क्या रहे हो बाबू रामलाल, लो ये सब कल्पना के खेल हैं। और हाँ जरा ठहरिए डॉक्टर साहब, आप भी निकालिए
2: बीच।
1: मगर सुनिए तो सही, मगर अगर मत कीजिए, मगर की जान निकालिए। दान का दान और कल्पना की कल्पना।
2: अरे मगर आप मेरा कोट तो छोड़िए।
1: अरे ठहरिए, एक दो, ये रहे 20 रुपए। लो भैया रामलाल जी, डॉक्टर साहब की तरफ से भी और रसीद वसीद बाद में भेज देना है।
0: धन्यवाद।
2: मगर
1: अरे डॉक्टर साहब, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया, आपने तो मेरी काया ही पलट दी। मैंने अभी अभी कल्पना की कि मैंने रुपए दान दिए, जबकि असल में ऐसी कोई बात थी ही नहीं, यानी आम के आम और गुटलियों के दाम। कितना हल्का फुल्का महसूस कर रहा हूँ मैं डॉक्टर साहब।
2: मगर आप मेरी बात तो सुनिए।
1: जनाब सावित्री कौन है जरा?
3: जीजा जी मैं हूँ गिरधारी। जीजी नमस्ते।
4: नमस्ते। आओ भैया, क्या सीधे मेरठ से आ रहे हो?
3: जीजी और जीजा जी।
1: मगर अभी कुछ ही दिन पहले तो तुम आए थे।
3: जीजा जी बात ये है कि आज कुछ खास बात है, इसीलिए आया हुआ।
1: डॉक्टर साहब आज तो मेरी कल्पना खूब खेल खेल रही है मुझसे, एक मिनट के लिए तो मैं घबरा ही जाता हूँ जब कोई मुसीबत आती है तो। है, और अब तो सबसे बड़ी मुसीबत आई है, मगर मैं
3: मेरी समझ में तो कुछ आ ही नहीं रहा जीजा जी, कि आप मेरी बात तो सुनिए।
1: अरे ये मनोविज्ञान की बातें हैं सालिग्राम, तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी।
3: मगर मेरी बात आपकी समझ में जरूर आएगी जीजा जी। हाँ, आपका 25,000 रुपए का इनाम निकला है। हाँ दीदी, इस बार मैंने लॉटरी के 2 टिकट खरीदे थे, एक अपने नाम एक जिज्जा जी के नाम, और जिज्जा जी का इनाम निकल आया, ये देखिए टिकट।
4: अरे भैया
1: जवाब नहीं इस कल्पना देवी का भी, क्या क्या नजारे दिखाती है, पहले वो सब और अब ये 25,000 रुपए का इनाम। जवाब नहीं मनोविज्ञान का भी।
3: आप किस मूड में है जीजा जी, इसे मजाक मत समझिए। हाँ मैं ठीक कह रहा हूँ, आपका 25,000 रुपए का इनाम निकला है। हाँ
1: आज 1 अप्रैल है, कहीं मेरा 1 अप्रैल फूल तो नहीं बना रहा?
2: नो मिस्टर कस्तूरीलाल, ये सच है, आपको वाकई 25,000 रुपए का इनाम मिला है।
1: सचमुच मेरा इनाम निकला है?
2: हाँ।
1: तब तो क्या ये इमेजिनेशन नहीं है, यानी मैं अमीर हो गया, यानी मेरे कई मसले हल हो गए। वाह वाह, अजी रामू सोनू मोनू गप्पू पप्पू की माँ। अरे खड़ी क्या हो, इन लोगों का मुंह मीठा कराओ। गुड़ तो होगा ना घर में?
4: अभी
1: 25,000 रुपए का इनाम, वाह वाह। अब जरा हिसाब लगाऊं इसे कैसे इस्तेमाल करूंगा, किस तरह इसको बजट करूंगा, क्यों डॉक्टर साहब? और आपकी भी जरूरत नहीं रहेगी।
4: पिताजी, मम्मी रसोई में अचानक चक्कर खाकर गिर गई हैं, पता नहीं क्या हुआ, जल्दी चलिए।
1: डॉक्टर साहब
2: मैं अभी देखता हूँ, चलिए
1: चलिए चलिए चलिए।
4: मम्मी, डॉक्टर साहब जल्दी देखिए मम्मी को क्या हुआ है।
5: पिताजी क्या हुआ है मम्मी को?
4: मम्मी
3: जीजी जीजी,
2: आप जरा एक तरफ हो जाए, मैं देखता हूँ।
3: जिज्जा जी, शायद जिज्जी खुशी से बेहोश हो गई।
2: मिस्टर कस्तूरीलाल।
1: जी डॉक्टर साहब।
2: इट इज अ रूटीन केस।
1: रूटीन केस?
2: आपके बच्चों की माँ फिर माँ बनने वाली है।
3: क्या?
2: जी हाँ, और ये ना कल्पना है और ना 1 अप्रैल फूल वाली बात।
6: सत्यानाश।
7: हैं?
6: अरे ये तुम सबने क्या कर दिया?
8: हमने

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्रलोक।

चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए एक पहेली लीला। इस फिल्म का गीत तुलसी कुमार, आलम खां, ऐश्वर्या मजुमदार और डब्बू मलिक की आवाजों में। कुमार के लिखे इस गीत की धुन बनाई है उजैर जायसवाल ने।

लीजिए सुनिए अरिजीत सिंह और शिल्पा राव को फिल्म लाल सिंह चड्ढा में। अमिताभ भट्टाचार्य के बोल हैं और संगीत है प्रीतम का।

0: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है?
1: ब्रो, ये फटा है।
2: सुन, फटे फटे या पुराने नोट को
0: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
1: वाओ, नया नोट मिलेगा?
2: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
0: आरबीआई कहता है, स्मार्ट बनो,
3: कूल रहो।
4: दी, ये देख कैसे?
5: हैप्पी बर्थडे भाई।
4: दीका,
6: हाँ मेरा फेवरेट कलर हमेशा शॉपिंग।
7: I know ma, but खर्चा करने की भी यही उम्र है, right?
8: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
9: I know pa, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
7: I know na।
9: RBI कहता है,
10: करो सही शुरुआत, बनो financially smart।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7-8 घंटे नींद पूरी ना

0: तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का

यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, पता है रेलवे स्टेशन पर टिकट लेने के लिए खुले पैसों की समस्या से अब मुक्ति मिल गई है।
5: हाँ, रेलवे स्टेशन पर सभी प्रकार के पेमेंट पेटीएम, गूगल पे, फोन पे जैसे प्रमुख UPI मोड से डिजिटल माध्यम द्वारा कर सकते हैं।
4: इसके लिए रेलवे स्टेशनों पर टिकट काउंटर, पार्सल ऑफिस, गुड्स एवं अन्य सभी स्थानों पर QR कोड स्थापित किए गए हैं।
5: डिजिटल पेमेंट के माध्यम से न सिर्फ छुट्टे पैसों की परेशानी से मुक्ति मिल रही है बल्कि लेन देन में लगने वाले समय में भी कमी आ रही है।
4: उत्तर पश्चिम रेलवे का सभी से अनुरोध है कि डिजिटल पेमेंट का अधिक से अधिक उपयोग कर रेलवे के डिजिटल इंडिया की तरफ जा रहे प्रयास में सहयोग करें। ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ, उत्तर पश्चिम रेलवे।

0: इंग्लिश बिंग्लिश। अब सुनिए इस फिल्म का गीत सुनिधि चौहान और स्वानंद किरकिरे की आवाजों में। बोल लिखे हैं स्वानंद किरकिरे ने और संगीत से सजाया है अमित त्रिवेदी ने।
1: लाडाची लाडाची ग आवडतीला चंद्राची चंद्राची।

अब सुनिए चित्रलोक कार्यक्रम की अंतिम पेशकश। इस गीत को संयुक्त रूप से लिखा है कैसरुल जाफरी और संदीप श्रीवास्तव ने। संगीत प्रीतम का, बोल पापोन के, फिल्म का नाम मेट्रो इन दिनों।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत और वेनेजुएला ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशने पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने को कहा। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे योगासन को वैश्विक खेल पहचान मिलेगी। पेट्रोल और एथेनॉल की अलग अलग मात्रा के मिश्रित ईंधन से चलने वाली देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार लॉन्च। मानसून ने दी केरलम में दस्तक। केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में अगले 7 दिन तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लेम्बोरिया विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंची। प्रिया घंघास और विश्वनाथ सुरेश ने शीर्ष 3 में जगह बनाई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमेरिका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृहमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह

0: पुरी तथा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार का लोकार्पण किया। इसका निर्माण मारुति सुजुकी ने किया है। इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि यात्री वाहनों में फ्लेक्स फ्यूल तकनीक की शुरुआत भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का एक नया अध्याय है। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि फ्लेक्स फ्यूल वाहनों से प्रदूषण कम करने, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद मिलेगी।
1: हमारे देश से करीब 22 से 23 लाख करोड़ रुपए हम फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट के लिए खर्चा करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है। अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो हमें इंपोर्ट को कम करना पड़ेगा और एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। हमारे देश में अगर ये इंपोर्ट को कम करना है तो हमें अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल पर काफी काम करने की आवश्यकता थी, और इसलिए ये जो इंडस्ट्री है यही हमारे देश के ग्रोथ का ग्रोथ इंजिन है।
0: फ्लेक्स फ्यूल वाहन पेट्रोल और एथेनॉल के विभिन्न मिश्रणों पर चल सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: अभियान। निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम इस श्रृंखला में बात करेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों के बारे में।
4: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सकें। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
5: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर के ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। स्टेबिलिटी के लिए अप्रत्यक्ष कर के रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है। लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
4: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। जेम से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जेम की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुँच प्रदान करता है।
6: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है

0: और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जिम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं, इनका सहयोग मिलता रहता है। एमएसएमई स्टार्टअप महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
1: सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी, जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एकजुट करता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
4: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा, चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो। हम जितनी मेहनत करेंगे, सुखद परिणाम आ भी सकता है।
2: हमारी संवाददाता ने बताया कि विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, आयुष मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से किया गया है।
5: अहमदाबाद का एका एरिना आज से शुरू हुई पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप के साथ ही एक बड़े ऐतिहासिक बदलाव का गवाह बन रहा है। इस वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका, घाना, केन्या और मलेशिया सहित 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। मेजबान भारत ने 6 आयु श्रेणियों में मुकाबले के लिए अपनी 122 सदस्यों की टीम उतारी है। परणा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसाकुरणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में आज भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाईजिंग को शिकस्त दी। विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में जैस्मिन लंबोरिया ने महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर एक स्थान हासिल कर लिया है। वहीं प्रिया घांघस 60 किलोग्राम भार वर्ग और विश्वनाथ सुरेश 50 किलोग्राम भार वर्ग में शीर्ष तीन में जगह बनाने में सफल हुए हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली की शुरुआत की है। आयोग ने इस तकनीक का सफल उपयोग हाल ही में आयोजित प्रारंभिक सिविल सेवा परीक्षा और इस वर्ष हुए भारतीय वन सेवा परीक्षा में किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉक्टर अलका गुर्जर और डॉक्टर सतीश पूनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा ओडिशा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर भी उपचुनाव कराए जाएंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज एक नए डिजिटल पोर्टल की घोषणा की, जिससे अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य भारत के शोध तंत्र को मजबूत करना है। और बात मौसम की, दक्षिण पश्चिम मानसून आज केरलम पहुंच गया। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। माहे, पुदुचेरी और काराईकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और पश्चिम राजस्थान में भी कल गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज बारिश हुई। लोगों को गर्मी और उमस भरे मौसम

0: से थोड़ी राहत मिली। आज रात भी हल्की वर्षा की संभावना है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने अगस्त सितंबर सत्र के लिए अपने इंटर्नशिप कार्यक्रम में भाग लेने के लिए महिलाओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें छात्राएं, शोधकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक शामिल हो सकते हैं जो किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक गैर शैक्षणिक संस्थान से जुड़े हों। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल wcd.intern.nic.in के माध्यम से किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और वेनेजुएला ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशने पर चर्चा की। गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने को कहा। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे योगासन को वैश्विक खेल पहचान मिलेगी। पेट्रोल और एथेनॉल की अलग अलग मात्रा के मिश्रित ईंधन से चलने वाली देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार लॉन्च। और मानसून ने दी केरलम में दस्तक। केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में अगले 7 दिन तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं सुनैना फिल्म के गीत से, जिसे गाया है यशुदास ने। गीत और संगीत रविंद्र जैन का।

अभी आपने यशोदास को फिल्म सुनैना में सुना, अब सुनिए लता मंगेशकर का गाया सौदागर फिल्म का गीत। गीत और संगीत एक बार फिर से रविंद्र जैन का।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: अब सुनिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत, आवाजें लता मंगेशकर और एसपी बालासुब्रमण्यम की फिल्म का नाम एक दूजे के लिए।

0: लता मंगेशकर के बाद आइए सुनते हैं आशा भोसले को फिल्म अनामिका में।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से, वाह।
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

आशा भोसले का ही गाया एक और गीत सुनते हैं, अली बाबा 40 चोर से। धुन बनाई है आर डी बर्मन ने, बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हो, जंप कर जाती हो। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

नूतन समर्थ बहल, जी हां नूतन, इनका जन्म शोभना समर्थ और कुमार सेन समर्थ के घर सन 1936 के 4 जून को हुआ। चार भाई बहनों में नूतन सबसे बड़ी थी। पिता कुमार सेन समर्थ जाने माने कवि और निर्देशक थे तो माता शोभना समर्थ अपने जमाने की मानी हुई अभिनेत्री थी। पौराणिक फिल्मों में उनके द्वारा अभिनीत सीता के किरदार को इतना सराहा गया था कि शोभना समर्थ और सीता ये जैसे एक समीकरण ही बन गया था। आज हम बात कर रहे हैं इनकी सुपुत्री नूतन की। नूतन को अभिनय कला, संस्कृति के संस्कार धरोहर ही में मिले थे, लिहाजा उनकी माताजी ने 1950 में नूतन को ब्रेक देने के इरादे से फिल्म हमारी बेटी का निर्माण किया। तब नूतन की उम्र महज 14 साल की थी। उल्लेखनीय बात यह है कि नूतन इस छोटी सी उम्र में मिस इंडिया खिताब की विजेता रही थी। 1953 में उन्हें बड़ा ब्रेक मिला शम्मी कपूर अभिनीत फिल्म लैला मजनू में। सरदार मलिक साहब का संगीत बड़ा ही लोकप्रिय बन पड़ा था इस फिल्म का।

नूतन एक संवेदनशील अभिनेत्री थी। उनके चेहरे पर उभरने वाली भावभंगिमाएं उनकी बेहतरीन डायलॉग डिलीवरी को जैसे कॉम्प्लीमेंट करती थी। यही उनके खूबसूरत अदाकारी की खूबी थी। किसी भी चरित्र की गहराई में घुसकर उस चरित्र को जीवंत करने के लिए अधरों का कंपन, उनके भाल पर उभरती रेखाएं, आंखों की सूक्ष्म हलचल, इन बातों से वो पात्र को बिल्कुल जीवंत बना देती थी। यही वजह है कि सन 1955 में अमिया चक्रवर्ती द्वारा निर्मित और निर्देशित फिल्म सीमा के लिए उनका चुनाव हुआ। इस फिल्म में उनकी भूमिका को इतना सराहा गया कि इस साल के फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया।

दोस्तों, फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड 5 बार जीतने वाली अपने जमाने की वो पहली अभिनेत्री थी। बात सन 1959 की है। सामाजिक विषमता की विभिषिका को बिंब बनाकर फिल्मों के साथ साथ सामाजिक न्याय से सरोकार रखने वाले सुलझे हुए निर्देशक बिमल रॉय फिल्म सुजाता का निर्माण कर रहे थे। नारी प्रधान और सामाजिक विषमता के विषय वाली ये फिल्म और इसका सुजाता का किरदार बड़ा ही जटिल था। इस फिल्म के रोल के लिए नूतन का चुनाव हुआ और नूतन ने भी अपनी सशक्त अदाकारी से इस फिल्म के इस किरदार में जैसे जान फूंक दी। फिल्म जबरदस्त हिट हुई। इस फिल्म के लिए भी उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला।

नूतन अपनी अभिनय क्षमता के कारण जटिल से जटिल भूमिकाओं को साकार करने में महारत रखती थी। फिल्म सुजाता के बाद जो बहुचर्चित उनकी फिल्म आई वो थी बंदनी। सन 19

1963 में यह फिल्म रिलीज हुई थी। बिमल दा ने इस फिल्म का विषय भी बड़ा ही हटके चुना था, स्त्री का मनोविज्ञान और उसकी पेचीदगी को दर्शाने का मार्मिक चित्रण था इस फिल्म में। जैसे कि फिल्म के नाम से ही जाहिर होता है, यह फिल्म नारी प्रधान फिल्म थी। नूतन ने अपने तरल अभिनय से विषय वस्तु की जटिलताओं को समझते हुए बड़ी सहजता से उन्हें अभिनीत किया था। इस फिल्म के लिए भी उन्हें फिल्म फेयर के बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया।

1959 में एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म पेइंग गेस्ट में उन्होंने अदाकारी के कुछ रोमानी अंदाज पेश किए। इनके हीरो थे एवरग्रीन, अदाकार देवानंद।

0: जमाना क्या कहेगा।
1: कुछ ऐसी ही रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी अनाड़ी, जो आई थी सन 1959 में। इस फिल्म में नूतन के हीरो थे अपने जमाने के ग्रेट शोमैन राज कपूर।

1958 में एक फिल्म आई थी सोने की चिड़िया। इस म्यूजिकल फिल्म में भी नूतन ने अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया। दोस्तों, देवानंद साहब के साथ उनकी एक और चर्चित फिल्म आई थी 1960 में, जिसका नाम था तेरे घर के सामने।

0: इसी दौरान यानी सन 1959 के आसपास नूतन ने नेवल कमांडेंट रजनीश बहल से शादी कर ली और वो नूतन समर्थ से नूतन समर्थ बहल बन गई।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

60 से 70 के दशक में उनकी कई फिल्में आईं। बहुत कम फिल्में हैं जो नहीं चली। लगभग हर फिल्म का संगीत हिट था, चाहे 1952 की फिल्म शीशम हो या 1954 की फिल्म शबाब हो, 1956 की बारिश हो या 1957 की

फिल्म दिल्ली का ठग हो, 1958 की फिल्म आखिरी दाव हो या 1964 की फिल्म खानदान हो, 1965 की फिल्म रिश्ते नाते हो या हो 1968 की फिल्म सरस्वती चंद्र।

जहां तक फिल्म फेयर के चौथे बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड का सवाल है, वो उन्हें मिला था फिल्म मिलन के लिए, जो रिलीज हुई थी 1967 में। प्रसाद प्रोडक्शंस के बैनर तले ये फिल्म बनी थी।

करे शोर। अरे बाबा, शोर नहीं, शोर, शोर, शोर।

1978 में आई फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की, इस फिल्म में उनके सशक्त अभिनय के लिए भी उन्हें मिला था फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड। इस समय उनकी उम्र थी 42 साल।

0: दोस्तों अभिनेत्री नूतन ने मुख्य अभिनेत्री की भूमिकाएं तो कई की, साथ ही साथ चरित्र भूमिकाएं भी की हैं। इनमें जो यादगार हैं वो हैं 1986 में आई फिल्म जो कि दलीप कुमार के साथ थी, फिल्म कर्मा।
1: बड़ा कठिन है प्रश्न ये भैया, आए बारंबार इस उम्र में पूछे बीवी क्या करते हो प्यार, मुझसे क्या करते हो प्यार। अरे पूछे मेरी बीवी, डू यू लव मी, डू यू लव मी,
2: तो क्या कहा आपने?
1: अरे बरसों से तो कहता आया आई लव यू, आई लव यू, हर दिन हर पल यही कहूं मैं आई लव यू, सुबह

1985 में फिल्म मेरी जान, जिसमें उन्होंने अभिनेता अनिल कपूर की माता का रोल किया था। दोस्तों, नूतन ने कुल 70 फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। उनकी पहली फिल्म थी 1950 में आई फिल्म हमारी बेटी, और आखिरी फिल्म थी 1994 में आई फिल्म इंसानियत, जो उनके स्वर्गवास के पश्चात रिलीज हुई थी। दोस्तों, उनके बेटे मोहनीश बहल एक सफल अभिनेता हैं। नूतन की छोटी बहन अपने जमाने की जानी मानी मारूफ अदाकारा रही हैं तनुजा। इन्हीं की बेटी है काजोल भी, जो हिंदी फिल्मों में एक कामयाब अदाकारा हैं। दोस्तों, भारत सरकार ने फिल्मों में नूतन के अभिनय को सराहते हुए सन 1974 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था। हिंदुस्तानी फिल्मों में अदाकारी के शिखर को छूने वाली शोभना कुमार सेन समर्थ की ये छबीली बेटी अपने बेटे मोहनीश बहल को खानदान की अदाकारी की ये यादगार धरोहर सौंपकर 54 वर्ष की छोटी सी आयु में 21 फरवरी 1991 में हम लोग की दुनिया छोड़ परलोक सिधार गई।

0: तो ये था आज के फनकार ये कार्यक्रम, केंद्रित था अपने जमाने की जाने मानी अभिनेत्री नूतन पर। शोध आलेख और स्वर अशोक सोनावणे का, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है और या तो बिल्कुल बागी।
0: नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में।
1: साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल हो गई तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, किसे दिखाऊं।
2: कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी पिया।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: वीको टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक।

छायागीत के सुनने वालों को नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो, हर दिन पहले से ज्यादा खूबसूरत लगने लगा है। तुम्हारी बातें, तुम्हारी मुस्कान सब दिल में घर कर गई हैं। अब हर दुआ में तुम्हारा नाम शामिल होता है। शायद यही तो प्यार है, जब किसी एक इंसान में पूरी दुनिया दिखाई देने लगे और मुझे मेरी पूरी दुनिया तुम में नजर आने लगी है।

हर मुलाकात के बाद कुछ नए अल्फाज चुन लाता है, जैसे दिल की धड़कनों को सुरों में पिरोकर कोई गीत बना रहा हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती है, मानो हर धुन में सिर्फ अपनी महबूबा का ही चेहरा दिखता हो। कभी चांद की बात करता है, कभी बारिश की, पर असल में हर गीत उसी के नाम लिखा होता है। वो आशिक अपनी मोहब्बत को शब्दों और सुरों में सजाकर हर रोज एक नया नगमा लेकर आता है। जलते

अब राहें अलग नहीं रही, जिंदगी के हर मोड़ पर हमारे कदम साथ चलेंगे। खुशियों की धूप हो या मुश्किलों की छांव, हम एक दूसरे का हाथ थामे आगे बढ़ते रहेंगे, हर परिस्थिति में, हर पड़ाव पर। अब ये सफर सिर्फ मैं का नहीं, हम का होगा, समय चाहे जैसा भी हो। साथ निभाने का ये वादा अब हमारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत सच्चाई बन चुका है।

0: रिको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: आप भी अपने उत्पाद का विज्ञापन आकाशवाणी पर कीजिए और अपने व्यापार को आकाश की ऊंचाई तक पहुंचाइए। अधिक जानकारी के लिए नजदीक के आकाशवाणी केंद्र से संपर्क करें या हमें मेल कीजिए salesairjc@gmail.com यानी salesairjc@gmail.com पर। हमारे चैनल हमेशा तत्पर, हमेशा सुरीले सफर पर।
3: कार्यक्रम में स्वागत है। तुम चाहे जितनी बेरुखी कर लो, चाहे हर बात में हमें दर्द ही क्यों ना मिले, फिर भी इस दिल की धड़कनों पर बस तुम्हारा ही नाम रहेगा। हम शिकायत भी करेंगे तो तुम ही से, और दुआ भी मांगेंगे तो तुम्हारे लिए, क्योंकि इश्क ने हमें ऐसा बना दिया है कि जुल्म तुम्हारे होंगे, फिर भी गीत तुम्हारे ही गाए जाएंगे।

अब और कितना रूठोगे तुम? देखो मैं हार गई हूँ, अपने सारे गिले अपनी सारी जिद तुम्हारे कदमों में रख दी है। चलो अब मान भी जाओ, तुम्हारी खामोशी अब दिल को तकलीफ देने लगी है। आओ फिर से वैसे ही बातें करें जैसे कभी हमारे बीच दूरियां हुआ ही नहीं करती थी।

तेरी मोहब्बत में इस कदर खो गए हम कि अब दुनिया की कोई बात दिल को छूती ही नहीं। ना दिन अपने लगते हैं, ना रात में सुकून मिलता है। हर तरफ बस तेरा ही नाम, तेरा ही एहसास बसा रहता है। तेरी आंखों में ऐसे डूबे कि अपना वजूद तक भूल बैठे हैं। अब हाल ये है कि तेरे प्यार में हम सारा आलम खो बैठे हैं।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल।

म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

0: यह है 101.9 FM, आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। सुनते हैं हिंदी में समाचार और 11:05 आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। समाचार बस कुछ ही पलों में।
1: समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमरीका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
2: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृहमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल की पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
3: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा। चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो, हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
1: भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉ अलका गुर्जर और डॉ सतीश पुनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा उड़ीसा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर उपचुनाव भी कराए जाएंगे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज मिजोरम के चम्फाई जिले में 9 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई म्यांमा से अवैध रूप से लाई जा रही सुपारी की तस्करी और 970 करोड़ रुपए से अधिक की आपराधिक आय से जुड़े धन शोधन के मामले में की गई। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज केरलम पहुंच गया है। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। माहे, पुद्दुचेरी और कराईकल में भी कल तेज बारिश होने की संभावना है। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और पश्चिम राजस्थान में भी कल गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में जैस्मीन लंबोरिया ने महिलाओं की 57 किलो

0: Lamboria climbed to world number one in the women's 57 kg category, while Asian Championships Priya Gangas in 60 kg and Vishwanath Suresh in 50 kg. And that's the end of the news.
1: FM 101.9 MHz पर ये विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा का उदयपुर केंद्र है। रात्रि के 11:10 हो रहे हैं। ये वक्त हमारी इस सांध्यकालीन सभा के यहीं संपन्न होने का। प्रातः 5:53 पर प्रातःकालीन सभा में अगले कार्यक्रमों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब खैर, जय हिंद।